सुप्रभात। FM 100.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 16 मई सन 2026। इस समय सवेरे के 5:57 हो रहे हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 6 बजने को हैं। अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री तोम बेरेनसेन ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। 2 दिन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और महामहिम राजा और महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच विशेष रूप से सेमीकंडक्टर चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नीदरलैंड्स इन क्षेत्रों में विश्व का अग्रणी देश है। नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार और यूरोप में 3रा सबसे बड़ा निर्यात स्थल है। दोनों देशों के बीच 2024-25 में 27 अरब $80 करोड़ का व्यापार हुआ था। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात UAE की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने

0: ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, एआई सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करना आसान बनाने और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की यह पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 6:05 हुए हैं, लीजिए सुनिए चिंतन।
3: सेवा के लिए पहली शर्त प्रेम है, अर्थात जिसके दिल में प्रेम है वही सेवा कर सकता है। टॉलस्टॉय ने कहा है कि प्रेम स्वर्ग का रास्ता है। बुद्ध का कथन है, प्रेम इंसानियत का नाम है। ईसा ने कहा है, प्रेम संसार की ज्योति है। विक्टर ह्यूगो का कहना है कि जीवन एक फूल है और प्रेम उसका मधु। राम कृष्ण परमहंस ने कहा है, प्रेम अमरता का समंदर है। कबीर का कथन है, जिस घट में प्रेम नहीं उसे मरघट समझ, बिना प्राण के सांस लेने वाली लुहार की धौंकनी। अलग अलग शब्दों में सभी महापुरुषों ने प्रेम का बखान किया है। वास्तव में प्रेम मानव जाति की बुनियाद है। प्रेम ऐसा चुंबक है जो सबको अपनी ओर खींच लेता है। जिसके हृदय में प्रेम है उसके लिए सब अपने हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में तो सारी पृथ्वी को एक कुटुंब माना गया है। वसुधैव कुटुंबकम, जो सबको प्रेम करता है उससे बड़ा दौलतमंद कोई नहीं हो सकता।

वो दूसरे के लिए दिल में ऊंची भावना पैदा कर देता है। आप जानते हैं आदमी को भूमि से कितना मोह होता है। कौरवों ने कहा था कि हम पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे, लेकिन विनोबा भावे के प्रेम ने लाखों एकड़ भूमि इकट्ठी करा दी। उन्होंने लोगों से ये नहीं कहा कि मुझे जमीन दो, नहीं दोगे तो कानून से या जोर जबरदस्ती से तुम्हारी जमीन को छिनवा दूंगा। जिसका हृदय प्रेम से सराबोर हो वो ऐसी भाषा भला कैसे बोल सकता था। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे भाइयों, मैं तुम्हारे घर पर आया हूं, तुम्हारे 5 बेटे हैं, छठा होता उसका भी लालन पालन तो आपको करना ही होता। मुझे अपना छठा बेटा मान लो, मेरा हिस्सा मुझे दे दो,

0: हृदय निर्मल है उसी में ऐसे महान प्रेम का निवास रहता है। असली प्रेम तो वो है जिसमें किसी प्रकार के बदले की भावना ना हो, इतना ही नहीं उसमें विरोधी के लिए भी जगह हो। गर्मी से व्याकुल होकर हम न जाने कितनी बार सूरज से नाराज हो जाते हैं, पर वो कभी हम पर नाराजगी नहीं दिखाता। हम धरती को रोज पैरों से दबाते हुए चलते हैं, पर वो कभी गुस्सा नहीं होती। जरा गर्म हवा आती है तो हम कहते हैं मार डाला ऐसी हवा ने। हमारी गाली का हवा कभी बुरा नहीं मानती। यदि गुस्सा होकर सूरज धूप और रोशनी ना दे, धरती अन्न ना दे, हवा प्राण ना दे, तो सोचिए हम लोगों की क्या हालत होगी। ऐसे प्रेम का वरदान विरलों को ही मिलता है, पर जिन्हें मिलता है वो अपने को कृतार्थ बना जाते हैं, दुनिया को धन्य कर जाते हैं।
1: चिंतन के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सेवा प्रेम का भाव विषय पर विचार, वाचक स्वर था रजनीश गुप्ता का। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सर्वप्रथम मातृभूमि को नमन करते हुए सुनते हैं मातृवंदना।

मातृवंदना के बाद आइए देवों में प्रथम पूजनीय विघ्नों का नाश करने वाले कार्य सिद्ध करने वाले भगवान गणेश की वंदना करते हैं। सुनते हैं समूह स्वर में ये भक्ति रचना।

रे मन, इस जगत की कण कण में परम पिता परमेश्वर परमात्मा का वास है और जिसकी सुमिरन मात्र सी निस्वार्थ भाव के गुणगान से जीवन के सारे सुख मिल जाते हैं। तो आइए हम भी उस परमपिता परमेश्वर परमात्मा का सुमिरन करें।

अभी आप सुन रहे थे पंडित भीमसेन जोशी का गाया ये भजन। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के

आप सुन रहे थे वाणी जयराम का गाया मीराबाई का ये भजन। वंदना कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं ये चयन भक्ति रचना।

इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना समाप्त हुआ। एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस गान का संगीत पदपाठ।

मेघनाद के नागपाश में अपने को बंधा लेना श्री रामचंद्र की एक रणलीला थी। महर्षि नारद द्वारा भेजे जाने पर गरुड़ ने वह नागपाश तो काट डाला, किंतु उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि जो व्यापक विकार रहित और परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, वह ऐसे पाश में किस प्रकार बंध सकते हैं। अपनी शंका के निवारण के लिए पक्षीराज महर्षि नारद के पास पहुंचे। नारद जी ने उनके मोह का रहस्य ताड़कर उन्हें ब्रह्मा के पास भेज दिया, जिन्होंने संपूर्ण जगत की रचना की है। स्वयं उन ब्रह्मा को भी तो माया के प्रभाव में परमेश्वर ने कई बार नचाया है, अतः वह क्या कहते। उन्होंने गरुड़ को भगवान शंकर के पास जाने का परामर्श दिया, क्योंकि शंकर जी ही श्री राम की महिमा को भलीभांति जानते हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान का संगीत पद पाठ, कलाकार थे सुरेश वाडकर। FM 100.5 MHz पर आप सुन रहे आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। दिन में 3:10 पर न्यू इंडिया समाचार, रात्रि 9:15 पर स्पोटलाइट, रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका और रात्रि 10 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये सभी कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। नमस्कार देहरादून, ये सूचना पर कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 8:30 पर। साप्ताहिक कार्यक्रम आपका पत्र मेला प्रसारित किया जाएगा रात्रि 8:00। दोपहर 12:30 पर बहनों के लिए कार्यक्रम होगा महिला जगत, जिसके अंतर्गत बहनें सुनेंगी श्रीमती रेखा सिंगल से भेंट वार्ता। विषय रहेगा सेवानिवृत्ति के बाद समय कैसे व्यतीत करें। साथ ही बहनें सुन पाएंगी ब्यूटी टिप्स। युवा साथियों के लिए युवाणी कार्यक्रम होगा शाम 5:10 पर।

पार्वती अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत होगा संध्या 5:45 पर, जिसके अंतर्गत श्रोता सुनेंगे डॉक्टर अलका पांडे से बातचीत, विषय रहेगा हस्तशिल्प और ग्रामोद्योग। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 7 बजे सुनिएगा लोकगीत और रागनियों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी। शाम 4:02 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं प्रभात्री का ख्याल गायन। सुबह 7:30 पर सुनिएगा शैल संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे पप्पूराज के गाए डॉन सारी लोकगीत। लोक संगीत के कार्यक्रम में रामपाल की गायी रागिणी सुनवाई जाएगी सुबह 10:35 पर। दोपहर 12:12 पर सुगम संगीत के अंतर्गत सुनिएगा विविध कलाकारों की गायी कव्वाली। और सुगम संगीत के ही कार्यक्रम में रात्रि 8:15 पर आप सुन सकते हैं विविध कलाकारों के गायी भजन। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतों की मोती आप सुन पाएंगे सुबह 7:10 पर। और फिल्म संगीत का आनंद आप ले पाएंगे सुबह 9 बजे सदाबहार कार्यक्रम में, 10:12 पर दिन में 11 बजे व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम में, 1:15 पर, 2:30 पर सैनिकों के लिए कार्यक्रम में, 3:25 पर, शाम 4:30 पर एक कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत, शाम को 7:40 पर और रात्रि 8:30 पर।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है। अब आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात देशस्य अल्पकालावधिकां यात्रां संपूर्य यूरोप देशैः सह भारतस्य सामरिक आर्थिक संबंधान् प्रगाढतरं कर्तुं पञ्चराष्ट्राणां भ्रमणस्य द्वितीये चरणे गतरात्रौ नीदरलैंड देशं प्राप्तवान्। एम्स्टर्डम इति विमानस्थानके डच देशस्य विदेशमन्त्रिणा टॉम बेरेंडसन इत्यनेन श्रीमोदिनः स्वागतं कृतम्। इतः पूर्वं सः आबुधाबी नगरे यूएई देशस्य राष्ट्रपतिना मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान इत्यनेन सह चर्चां कृतवान् आसीत्। डच देशस्य हेग नगरे भारतीय प्रवासिनः सांस्कृतिक संगीत प्रदर्शनैः प्रधानमन्त्रिणः भव्यतया स्वागतं कृतवन्तः। डच सैनिकाः अपि तम् औपचारिक रूपेण अभिनन्दितवन्तः। भ्रमणावधौ प्रधानमंत्री मोदी डच देशस्य प्रधानमंत्रिणा रॉब जेट्टन इत्यनेन सह द्विपाक्षिकं वार्तालापं करिष्यति, राष्ट्रप्रमुखांच मिलिष्यति। प्रधानमंत्रिणा नरेंद्र मोदिना उक्तमस्ति यत् देशवासिनां कृते ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अथ ईज ऑफ लिविंग इत्येतयोः परिष्कारे सर्वकारः प्रतिबद्धः अस्ति इति। एकस्मिन् सामाजिक प्रसार माध्यमे श्री मोदी प्रसार संस्थानां प्रतिवेदनं निराकृतवान् यत् जनानाम् उपरि कथमपि अधिभारं आरोप्यते इति। सर्वकारेण पेट्रोल निर्याते 3 रूप्यकाणां प्रति लीटर इति विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्कम् आरोपितमस्ति। वित्तमन्त्रालयेन अद्य प्रकाशिते आधिकारिक राजपत्रे उक्तमस्ति यत् अधिसूचनानुगुणं डीजल निर्याते प्रति लीटरेति परिमितौ विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्कं 23 रूप्यकाणि।

0: रूप्यकाणाम् अपेक्षया सार्ध षोडश रूप्यकाणि कृत्वा न्यूनीकृतमस्ति। उपराष्ट्रपतिः सी पी राधाकृष्णनवर्यः कार्यभारग्रहणानन्तरम् अद्य सिक्किमराज्यस्य प्रथमवारं भ्रमणं करिष्यति। स्वयात्रायाम् उपराष्ट्रपतिः गैंगटोकनगरे सिक्किमराज्यस्य राज्यत्वदिवससमारोहे भागं ग्रहीष्यति। राज्यपालः ओमप्रकाशमाथुरः, सिक्किमराज्यस्य मुख्यमन्त्री प्रेंग सिम तवांगः, केन्द्रीयपूर्वोत्तरक्षेत्रविकासमन्त्री ज्योतिरादित्यसिन्धिया इत्यादयोऽपि उत्सवेऽस्मिन् भागं ग्रहीष्यन्ति। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE इत्ययम् अवदत् यत् ये छात्राः स्वस्य परिणामैः असन्तुष्टाः सन्ति ते संरचित समीक्षा व्यवस्थां प्राप्तुं शक्नुवन्ति, या हि द्विचरणीय समीक्षा प्रक्रिया अस्ति। प्रथमचरणे छात्राः स्वमूल्यांकितानां उत्तरपुस्तिकानां स्कैन इति प्रतिबिम्बितप्रतयः याचयितुं शक्नुवन्ति, एताः अन्तर्जालीयमाध्यमेन उपलभ्यन्ते। द्वितीयचरणे छात्राः विसङ्गतानां प्रश्नोत्तराणां सत्यापनाय आवेदनमपि कर्तुं शक्नुवन्ति, उतो वा अङ्कनयोजनायाः आधारेण विशिष्टानाम् उत्तराणां पुनर्मूल्याङ्कनार्थं याचना कर्तुं शक्नुवन्ति। इज़राइल लेबनानदेशौ वाशिङ्ग्टन्नगरे सञ्जातायाः वार्तायाः अनन्तरं युद्धविरामस्य पुनः पञ्चचत्वारिंशद्दिवसपर्यन्तस्य विस्ताराय सहमतौ अभवताम् इति अमेरिकादेशस्य विदेशविभागः अवदत्। विदेशविभागस्य प्रवक्ता टॉमी पिगोट अवदत् यत् वारद्वयकृतवार्तालापेन फलदायकं युद्धविरामम् आगच्छदति। इतः अनन्तरं जूनमासस्य द्वित्रिदिनाङ्कयोः आधिक्येन वार्तालापो भविष्यतीति निश्चितमस्ति। IPL क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ लखनऊ नगरस्य एकाना क्रीडाङ्गणे लखनऊ सुपर जायंट्स इति दलेन चेन्नई सुपर किंग्स इति दलं सप्तस्तोभैः पराजितम्। CSK इत्यनेन प्रदत्तस्य 88.1% धावनाङ्कस्य लक्ष्यम् आतिथीयेन LSG इति दलेन 17 क्षेपणचक्रेषु सम्प्राप्तम्, यत्र केवलम् 38 कन्दुकेषु मिचेल मार्शल इत्यस्य 90 धावनाङ्कानां भूमिका निर्णायिका अभवत्। मार्शः उत्तमक्रीडकत्वेन पुरस्कृतः इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल रात नीदरलैंड्स पहुंचे। नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने हेमस्टरडम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस यात्रा का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। हेग में प्रवासी भारतीय समुदाय ने सांस्कृतिक और संगीत में प्रस्तुतियों के साथ प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। डच सैनिकों ने भी उनका औपचारिक रूप से अभिनंदन किया। यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ किस्टन्स के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन के साथ यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संबोधित करेंगे। ये यूरोप का करीब 60 सबसे बड़ी औद्योगिक और तकनीकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अध्यक्षों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का मंच है। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया के साथ मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरी के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व

0: हर तह महीना समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है और उनको फ्री ओपन और सेफ बनाए रखा, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोलियम के निर्यात पर ₹3 प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को ₹23 से घटाकर ₹16.50 प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को ₹33 प्रति लीटर से घटाकर ₹16 कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक में मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को, फिल्म का नाम था पिया का घर। गीत था आनंद बख्शी का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: गीतों की मोती कार्यक्रम का ये अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम है सूरज। बोल हैं हसरत जयपुरी की और संगीत शंकर जय किशन का है।

0: आप सुन रहे थे फिल्म गीतों का कार्यक्रम गीतों की मोती। आज के गीतों की थीम थी जुल्फ। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 7:20 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने ऊर्जा संरक्षण और ईंधन बचत को लेकर नई कार्य योजना लागू की। सरकारी कार्यालयों में बिजली बचत कारपोलिंग और नो व्हीकल डे को बढ़ावा देने के निर्देश जारी। उत्तराखंड में जनगणना के पहले चरण का करीब 70% कार्य पूरा। अब तक 19 लाख घरों और 86 लाख लोगों का डाटा संग्रहित किया गया। सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता 58 से बढ़ाकर 60% करने को मंजूरी दी। और उत्तराखंड पुलिस के राज्यव्यापी अभियान ऑपरेशन प्रहार के तहत पिछले एक महीने में 1400 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने ऊर्जा संरक्षण और ईंधन बचत को लेकर राज्यभर में व्यापक कार्य योजना लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने सभी विभागों, मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए।
2: जारी निर्देशों के अनुसार सरकारी कार्यालयों में एयर कंडीशनर का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाएगा और अनावश्यक बिजली उपयोग पर नियंत्रण किया जाएगा। साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन, कार पूलिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार ने वर्क फ्रॉम होम और नो व्हीकल डे को बढ़ावा देने के निर्देश भी दिए हैं। विभागों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित बैठकों को प्राथमिकता देने और अनावश्यक भौतिक बैठकों को सीमित करने को कहा गया है। इसके अलावा स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विजिट माय स्टेट अभियान चलाया जाएगा। वहीं मेड इन उत्तराखंड अभियान के तहत स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प और स्वयं सहायता समूहों को बाजार उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती, जैविक कृषि और सौर ऊर्जा, PNG, बायोगैस परियोजनाओं को बढ़ावा देने के साथ ही निवेश परियोजनाओं के लिए सिंगल विंडो व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के निर्देश जारी किए हैं। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से संजीव कंडवाल।
1: इस बीच सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में ऊर्जा संरक्षण और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सूचना एवं लोक संपर्क विभाग आज का दिन नो व्हीकल डे के रूप में मनाएगा। महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने बताया कि विभाग ने प्रत्येक शनिवार को नो व्हीकल डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों से सार्वजनिक परिवहन तथा साइकिल जैसे विकल्प अपनाने की अपील की है। श्री तिवारी ने कहा कि छोटे छोटे प्रयास सामूहिक रूप से बड़े सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और इससे ऊर्जा संरक्षण के राष्ट्रीय अभियान को मजबूती मिलेगी। नो व्हीकल डे के माध्यम से ईंधन की बचत के साथ कार्बन उत्सर्जन में कमी लाकर पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान सुनिश्चित किया जा सकेगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार पहले ही ऊर्जा और ईंधन बचत को लेकर कई कदम उठा चुकी है, जिसमें मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वाहन बेड़े में कटौती जैसे उपाय भी शामिल है। उत्तराखंड में जनगणना के पहले चरण का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य में मकानों के सूचीकरण और आवास जनगणना का कार्य करीब 70% काम पूरा हो चुका है। अब तक

0: जनगणना टीम ने 19 लाख घरों तक पहुंचकर लगभग 86 लाख लोगों का डाटा संग्रहित कर चुकी है। भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने प्रमुख सचिव आर के सुधांशु के साथ वर्चुअल बैठक कर जनगणना कार्य की समीक्षा की। बैठक में जिलाधिकारी और नगर आयुक्तों से प्रगति की जानकारी ली गई। अधिकारियों ने बताया कि शेष 10 दिनों में निर्धारित लक्ष्य पूरा होने की संभावना है। बैठक में जनगणना आयुक्त ने कहा कि आंकड़ों की गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी आधार पर भविष्य की योजनाएं और परिसीमन तय होता है। उन्होंने सभी अधिकारियों को डाटा की सटीकता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव आर के सुधांशु ने कहा कि जनगणना राष्ट्रीय महत्व का कार्य है और इसे प्राथमिकता के साथ समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। राज्य में श्रमिकों को न्यूनतम वेतन और अन्य वैधानिक सुविधाएं समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव आर के सुधांशु की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित बैठक में उद्योग प्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ श्रमिक हित और औद्योगिक शांति को लेकर चर्चा की गई। बैठक में श्रमिकों को न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम, बोनस और अन्य सुविधाएं निर्धारित मानकों के अनुसार उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। प्रमुख सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी उद्योग संस्थान श्रम कानूनों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करें और श्रमिकों के साथ नियमित संवाद बनाए रखें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पुनर्व्यापक स्क्रीनिंग करने के भी निर्देश दिए, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि श्रमिकों को तय मानकों के अनुसार वेतन और सुविधाएं मिल सके।
1: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार किया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर है और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार की तर्ज पर महंगाई भत्ते की दर 58% से बढ़ाकर 60% प्रतिमाह करने को मंजूरी दी है। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए करीब 50 करोड़ रूपये की वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की है। इसमें पुलिस आवास निर्माण और पार्किंग निर्माण से जुड़े कई कार्य शामिल है। स्वीकृत योजनाओं में हल्द्वानी फायर स्टेशन में आवास निर्माण, चंपावत जिले में पुलिस आवास निर्माण, अल्मोड़ा और चमोली में पार्किंग निर्माण जैसे कार्यों को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड पुलिस के राज्यव्यापी अभियान ऑपरेशन प्रहार के तहत पिछले एक महीने में 1400 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने पुलिस मुख्यालय में अभियान की

0: जबकि यातायात नियमों के उल्लंघन पर 15,000 से अधिक वाहनों के चालान और 2,000 से अधिक वाहन सीज किए गए। होटल, बार, पब और ढाबों की सघन जांच के दौरान नियमों के उल्लंघन पर 1,200 से अधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। चारधाम यात्रा के दौरान साइबर ठगी रोकने के लिए पुलिस ने 200 से अधिक फर्जी सोशल मीडिया लिंक ब्लॉक किए और 50 से अधिक संदिग्ध मोबाइल नंबर बंद कराए। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने और आमजन की सुरक्षा के लिए अभियान को प्रभावी ढंग से जारी रखा जाएगा। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से अमित सुंद्रियाल।
1: और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के दौरे को लेकर मंथन किया गया, इस शीर्षक के साथ दैनिक जागरण खबर में लिखता है, प्रदेश सरकार और संगठन विधानसभा चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों का विस्तृत ब्यौरा पेश करेंगे। नीट यूजी की रद्द परीक्षा पर हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है, 21 जून को दोबारा होगा पेपर, अगले साल से ऑनलाइन परीक्षा का ऐलान। पेट्रोल डीजल के दाम में 3 रुपये की वृद्धि, हिंदुस्तान समाचार पत्र इस शीर्षक के साथ खबर में लिखता है, ईरान अमेरिका में जारी जंग के चलते दाम में हुई बढ़ोतरी। चारधाम यात्रा के लिए उमड़ रही तीर्थ यात्रियों की भीड़, अमर उजाला इस शीर्षक के साथ खबर में लिखता है, चारों धामों में एक दिन में औसतन 70 से 80 हजार श्रद्धालु कर रहे दर्शन। और देहरादून में क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर 25 करोड़ रुपए की ठगी, दैनिक जागरण इस शीर्षक के साथ खबर में लिखता है, 5 से 10% मासिक मुनाफे का झांसा देकर लोगों से जुटाए गए करोड़ों रुपए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने ऊर्जा संरक्षण और ईंधन बचत को लेकर नई कार्य योजना लागू की। सरकारी कार्यालयों में बिजली बचत कारपोलिंग और नो व्हीकल डे को बढ़ावा देने के निर्देश जारी। उत्तराखंड में जनगणना के पहले चरण का करीब 70% कार्य पूरा, अब तक 19 लाख घरों और 86 लाख लोगों का डाटा संग्रहित किया गया। सरकार ने राज्य कर्मचारी और पेंशनरों का महंगाई भत्ता 58 से बढ़ाकर 60% करने को मंजूरी दी। उत्तराखंड पुलिस के राज्यव्यापी अभियान ऑपरेशन प्रहार के तहत पिछले एक महीने में 1,400 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।

100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 7:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए शैल संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पप्पू राज के गाए जौनसारी लोकगीत।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: कार्यक्रम शैल संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पप्पू राज के गाए जौन सारी लोकगीत।
1: बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: FM 100.5 यानी 100.5 एगा हाउस पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। इस समय सुबह के 8 बजने को हैं। अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार। समाचार पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में होंगे, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने के सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक LPG आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। UAE ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में UAE गए थे। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और LPG भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में UAE की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने LPG पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
4: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है।

0: समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है और उनको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
2: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं है वो 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
5: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहां प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमेरिका, जर्मनी

0: फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महा आवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
2: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि 2 लाख बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1 साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
1: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। इस सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गईं। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में 2 दिन की वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इजराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज्जुद्दीन और गोह स्रिये फेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मेमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत और यूएई के बीच एलपीजी की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है, खत्म होगा एलपीजी संकट, यूएई से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हमलों की निंदा की। लोकसत्य का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा यूएई। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है, मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिंदुस्तान की सुर्खी है, धार भोजशाला मस्जिद नहीं वाग्देवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, नीट यूजी की रद्द हो चुकी परीक्षा अब 21 जून को होगी, लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी ये परीक्षा।

0: इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है, साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी शिक्षा का भला होगा। अमर उजाला की सुर्खी है, पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगे, सीएनजी के दाम 2 रुपए बढ़े, पत्र के अनुसार 4 साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है, बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी, ईरान का आरोप, नाम लिए बिना यूएई पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मॉनसून, समय से 4 दिन पहले आएंगी बौछारें।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को नमस्कार। कल्पना पंकज की ओर से श्रोताओं, सुबह के 8:30 हो चुके हैं और हम ले आए हैं आपका पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। श्रोताओं, सवेरे का समय बिल्कुल एहसास नहीं होता कि सवेरे का समय है, क्योंकि सूर्यदेव भोर से ही बहरवान हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे कि अपना क्रोध हम पर जता रहे हैं और पृथ्वीवासियों को गर्मी से सता रहे हैं, क्योंकि सुबह से इतनी गर्मी हो जाती है कि दिन में घर से निकलना दूभर हो जाता है। और वैसे भी डॉक्टर विशेषज्ञों के अनुसार तेज धूप में घर से बाहर निकलना ठीक नहीं है और ऐसे में लू हॉट इस गर्मी से स्ट्रोक जैसी कई बीमारियां, त्वचा संबंधी बीमारियां और आंखों से संबंधित कई प्रकार की बीमारी हो सकती है। और साथ ही हम देखते हैं कि मौसम विभाग के अनुसार गर्मी का ये तापमान और भी बढ़ने की संभावना है, इसलिए श्रोताओं, इस गर्मी के मौसम में अपने और अपनों का ध्यान रखें। जब तक आवश्यक ना हो इस गर्मी के मौसम में आप घर से बाहर ना निकलें और दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच तो बिल्कुल घर से बाहर निकलने से बचें। अगर घर से बाहर जाना ज़रूरी है तो शरीर को ढक कर बाहर निकलें, छाते का प्रयोग करें और साथ में आप पूरे शरीर को ढककर ही बाहर निकलें और गर्मी के इस मौसम में पानी पर्याप्त पिएं। और साथ ही इस गर्मी के मौसम में मौसमी फल व सब्जियों का सेवन करें, गरिष्ठ भोजन से बचें और अपने साथ साथ वन्य जीव जंतुओं का भी ध्यान रखें। अगर किसी भी प्रकार से अचानक से आपकी तबीयत खराब होती है तो आप डॉक्टर या विशेषज्ञ से ज़रूर सलाह लें और इस प्रकार से इस गर्मी के मौसम में आप अपने आप को काफ़ी हद तक स्वस्थ रख सकते हैं। और आइए, चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम में ये पहला गीत।

श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार देहरादून एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोता बढ़ते हैं और जानते हैं आज के अखबार के पन्नों पर क्या है खास खबरें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी विकास कार्यों को 50 करोड़ की स्वीकृति। मजदूरों को पड़ोसी राज्यों से अधिक न्यूनतम वेतन देगा उत्तराखंड। छात्रों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलेगी सभी पाठ्यक्रमों की ई बुक। राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता 2% बढ़ा। इस बार 6 दिन पहले केरलम पहुंचेगा मॉनसून। बद्री केदार धाम में दिव्यांग सुगमता से कर सकेंगे दर्शन। 16 मई को खुलेंगे भगवान रुद्रनाथ के कपाट और अब कुमाऊनी भाषा में भी दर्ज करा सकेंगे हेलो हेल्प पर शिकायतें। यूटीयू के लिए 20 तक भरे जाएंगे फॉर्म, चूके तो नहीं मिलेगा दूसरा मौका। मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क, पारा तेजी से चढ़ने के आसार। श्रोताओं ये तो थी अखबार के पन्नों से जानकारी और अब जानते हैं मौसम संबंधी जानकारी। मौसम विभाग केंद्र के अनुसार आज शनिवार को प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहने का अनुमान है। पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून, अल्मोड़ा और टिहरी में कहीं कहीं गरज के साथ आकाशीय बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की चेतावनी है। और श्रोताओं आइए बढ़ते हैं, जानते हैं इतिहास के पन्नों में आज 16 मई क्यों है खास। आज के दिन सन 1911 में कोलकाता में बने तलहाल टैंक का निर्माण पूरा हुआ। इसे उस समय दुनिया का सबसे बड़ा ओवरहेड वाटर का टैंक कहा गया था। सन 1920 में फ्रांसीसी स्वतंत्रता सेनानी सेनापति जॉन ऑफ आर्क को संत की उपाधि दी गई थी। सन 1929 में फिल्मी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत हुई थी। 1960 में भारत और ब्रिटेन के बीच अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन सेवा की शुरुआत हुई थी। सन 1975 में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया था। सन 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। सन 2006 में न्यूजीलैंड के 47 वर्षीय मार्क एंजेलिस कृत्रिम पैरों के सहारे एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने थे। और वर्ष 2013 में अमेरिकी वैज्ञानिकों को इंसानी भ्रूण की क्लोन से स्टेम सेल निकालने में पहली बार सफलता मिली थी। श्रोताओं ये थी इतिहास के पन्नों से जानकारी और आइए अब आपका मनोरंजन करवाते हैं, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, देहरादून कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। श्रोताओं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि उपचार से बचाव अच्छा है। जी हाँ, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर प्रतिवर्ष 16 मई को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है मानसून से पहले डेंगू के प्रसार को नियंत्रित करना और जनता को इसके लिए जरूरी कदम उठाने के लिए शिक्षित करना। जैसे कि आप जानते हैं कि डेंगू वायरस मच्छर एडिस एजिप्टी के काटने से फैलता है जो साफ पानी में पनपते हैं। इसलिए ये ध्यान रखें कि घरों में या जहाँ कहीं भी आप रह रहे हैं वहाँ पर कूलर में, गमलों में, पुराने सामान में या टायर में या फिर किसी भी जगह पर पानी जमा होने ना दें, क्योंकि ऐसे में मच्छर पैदा हो सकते हैं। इसलिए समय समय पर कीटनाशक पदार्थों का छिड़काव जरूरी करें। साथ ही मच्छर से बचाव के लिए शरीर को ढककर रखें और पूरी बांह के कपड़े पहनें। साथ ही ये ध्यान रखें कि जहां पर भी ऐसा लगे कि आपको मच्छर पैदा हो सकते हैं वहां पर समय समय पर उचित बचाव जरूरी है। इस प्रकार से डेंगू जैसी बीमारी से हम दूर रह सकते हैं। चलिए श्रोताओं, अब आपका मनोरंजन करवाते हैं और सुनते हैं ये गीत।

0: श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार देहरादून एफएम 100.5 मेगा हर्ट्ज पर। श्रोताओं, चंद पंक्तियां हैं। कुछ देर के लिए मैं कवि था, कुछ देर के लिए मैं कवि था, फटी पुरानी कविताओं की मरम्मत करता हुआ, सोचता हुआ कविता की जरूरत किसे है। कुछ देर पिता था अपने बच्चों के लिए, ज्यादा सरल शब्दों की खोज करता हुआ, कभी अपने पिता की नकल था, कभी सिर्फ अपने पुरखों की परछाई। कुछ देर नौकर था, सतर्क सहमा हुआ, बची रहे रोजी रोटी कहता हुआ। जी हाँ, ये पंक्तियां हैं मशहूर साहित्यकार मंगलेश डबराल की। उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध साहित्यकार मंगलेश डबराल का जन्म आज ही के दिन 16 मई 1948 को टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के कापलफानी गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा देहरादून में ही हुई और दिल्ली आकर उन्होंने काम किया। साथ ही भोपाल में मध्य प्रदेश कला परिषद भारत भवन से प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका में सहायक संपादक रहे। साथ ही इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन उन्होंने नौकरी की। साथ ही 1983 में एक पत्रिका में साहित्य संपादक का पद संभाला। कुछ समय इन्होंने संपादक कार्य करने के बाद वे नेशनल बुक ट्रस्ट से भी जुड़े। मंगलेश डबराल को हिंदी साहित्य अकादमी के साहित्यकार सम्मान, कुमार विकल स्मृति पुरस्कार और साथ ही साहित्य अकादमी द्वारा लेख पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। मंगलेश डबराल की कविताओं ने भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, डच, स्पेनिश, पुर्तगाली, इतालवी, फ्रांसीसी, पोलिश और कई भाषाओं में भी अनुवाद हो चुके हैं। ये कविताओं के अतिरिक्त साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के विषय पर भी नियमित लेखन करते रहे हैं। इनके महत्वपूर्ण कविता संग्रह हैं पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है, मुझे देखा एक मनुष्य, नए युग में शत्रु, कवि ने कहा था आदि। और साथ ही इनके गद्य संग्रह भी हैं जैसे कि लेखक की रोटी, कवि का केलापन आदि। श्रोताओं, इस प्रकार से यथार्थवादी सोच के लिए कविता लिखने वाले मंगलेश डबराल ने 9 दिसंबर 2020 को अलविदा कह दिया, पर इनकी कविताएं आज भी हमारे साथ अमर हैं। सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम में ये अंतिम गीत।
1: दीवाना

श्रोतो, इसी के साथ आज का एक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। बस चलते चलते आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आज का दिन आप सभी के लिए खुशियों भरा हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आज का कार्यक्रम संपन्न करने की कल्पना पंकज को दीजिए अनुमति। नमस्कार, देहरादून।

यथा सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं, आइए सुनते हैं सदाबहार फिल्म संगीत।

ये स्वर थे लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर के, फिल्म का नाम था प्रेम रोग, गीत था संतोष आनंद का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में SH बिहारी का लिखा गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की, फिल्म का नाम प्यार झुकता नहीं।

0: ये आकाशवाणी है। आकाश में तैरती ये उद्घोषणा 90 सालों का सफर पूरा कर रही है, बल्कि ये कहें ये आकाशवाणी की अनंत यात्रा है।
1: 1936 से शुरू हुई रेडियो यात्रा आज सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क के रूप में जानी जाती है। स्पूल टेप रिकॉर्डिंग से गुजरते हुए आकाशवाणी की वाणी अब हुई टोटल डिजिटल।
0: देश के 92% क्षेत्रफल में 99% लोगों तक पहुंच है आकाशवाणी की।
1: डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव ओटीटी और सोशल मीडिया पर भी आकाशवाणी ने अपनी धमक बनाई है।
0: शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, एफएम, ध्वनि तरंगों से चलते हुए आज आकाशवाणी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पहुंच गया है। 23 भाषाओं और 184 से ज्यादा बोलियों में प्रसारण के जरिए आकाशवाणी लोक संस्कृति का संवाहक बना हुआ है।
2: जो जस
1: सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से शुरू हुई आकाशवाणी की इस प्रसारण यात्रा में हमारे असंख्य श्रोता इन 9 दशक में हमारे साथ हैं।
0: आपका धन्यवाद। इस प्रसारण यात्रा में आपके साथ हमेशा आकाशवाणी देहरादून।
3: सदाबहार कार्यक्रम का यह अगला गीत आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की फिल्म का नाम रूप तेरा मस्ताना, शब्द असद भोपाली की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

वो दिल की बातें कितनी खूबसूरत होती है जो जीवन को जीने के लिए प्रेरित करते हैं। आइए बढ़ते हैं फिल्म संगीत के इस अगले गीत की ओर। सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में गीत, फिल्म का नाम है सफ़र, शब्द हैं इंदिवर की और धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

ये स्वर था आशा भोसले का, फिल्म का नाम था सावन की घटा। गीत को लिखा था एसएच बिहारी ने और संगीत दिया था ओपी नैयर ने। श्रोताओं, 9:32 हुए हैं, आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्म संगीत आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। यह है कार्यक्रम का अगला गीत, यशोदास की आवाज़ से। फिल्म का नाम है सुनैना, गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

0: ये आकाशवाणी है। आकाश में तैरती ये उद्घोषणा 90 सालों का सफर पूरा कर रही है, बल्कि ये कहें ये आकाशवाणी की अनंत यात्रा है।
1: 1936 से शुरू हुई रेडियो यात्रा आज सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क के रूप में जानी जाती है। स्पूल टेप रिकॉर्डिंग से गुजरते हुए आकाशवाणी की वाणी अब हुई टोटल डिजिटल।
0: देश के 92% क्षेत्रफल में 99% लोगों तक पहुंच है आकाशवाणी की।
1: डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव ओटीटी और सोशल मीडिया पर भी आकाशवाणी ने अपनी

0: चमक बनाई है।
1: शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, एफएम, ध्वनि तरंगों से चलते हुए आज आकाशवाणी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पहुंच गया है। 23 भाषाओं और 184 से ज्यादा बोलियों में प्रसारण के जरिए आकाशवाणी लोक संस्कृति का संवाहक बना हुआ है।
0: सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से शुरू हुई आकाशवाणी की इस प्रसारण यात्रा में हमारे असंख्य श्रोता इन 9 दशक में हमारे साथ हैं।
1: आपका धन्यवाद। इस प्रसारण यात्रा में आपके साथ हमेशा आकाशवाणी देहरादून।

ये स्वर था लता मंगेशकर का, फिल्म का नाम था स्वीकार किया मैंने। गीतकार थी निदा फाजली और संगीत था उषा खन्ना का। श्रोताओं, सदाबहार फिल्म संगीत का यह है कार्यक्रम का अगला गीत। शब्द हैं मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत एच डी बर्मन का है। फिल्म का नाम है तीन दीवियां। आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

ये स्वर थे अनुराधा पौडवाल और शब्बीर कुमार के, फिल्म का नाम था तेरी मेहरबानियाँ। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। आवाज़ें ही लता मंगेशकर और साथियों की, फिल्म का नाम है तकदीर। गीतकार है आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: अभी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्म संगीत एफ एम 100.5 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 10 बजे ही आइए सुनते हैं FM न्यूज हेडलाइंस।
1: यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब आप प्रियंका मलिक से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते की मौजूदा दर 58% प्रति माह से बढ़ाकर 60% किए जाने को मंजूरी प्रदान कर दी है। नई दर 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। ऊर्जा संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए सूचना एवं लोक संपर्क विभाग प्रत्येक शनिवार को नो व्हीकल डे के रूप में मनाएगा। महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने नो व्हीकल डे पर विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारियों से कार्यालय आने जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन या साइकिल जैसे विकल्पों को अपनाने की अपील की है। प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने उद्योग प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश में श्रमिक हितों के संरक्षण के साथ ही औद्योगिक शांति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि श्रमिकों को न्यूनतम वेतन सहित सभी वैधानिक सुविधाएं प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उधम सिंह नगर और चंपावत जिले के दौरे पर रहेंगे। चंपावत भ्रमण के दौरान मां बाराही धाम देवीधुरा मंदिर में चल रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर प्रदेश में आगामी 29 मई से विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि इसी क्रम में आगामी 8 जून से 7 जुलाई के बीच बीएलओ द्वारा घर घर जाकर गणना प्रपत्र का वितरण एवं संकलन किया जाएगा। नैनीताल पुलिस ने कैंचीधाम भवाली भीमताल और हल्द्वानी काट गोदाम क्षेत्र में शनिवार 16 और रविवार 17 मई के लिए विशेष यातायात योजना लागू की है। पुलिस ने पर्यटकों वाहन स्वामी एवं आमजन से निर्धारित यातायात प्लान का पालन करने की अपील की है। और टिहरी गढ़वाल के जौनपुर क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण ग्राम फिडोगी और नौघर के मध्य स्थित खाला से भारी मात्रा में मलबा एवं गाद आ गया है। घटना के कारण 5 दुकानों में मलबा घुसने से काफी नुकसान हुआ है। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। 10:02 हुए हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं लम्हे प्रोग्राम और मैं हूं आपका आरजे चेतन। स्वास्थ्य विभाग का पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा अपने मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य केंद्रों और महिला स्वास्थ्य केंद्रों की श्रृंखला के जरिए जन्म से 5 साल तक के शिशुओं और 64 साल से कम उम्र की महिलाओं को स्वास्थ्य संवर्धन और रोग रोकथाम सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य सेवा में शिशु स्वास्थ्य, मातृ स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और गर्भाशय ग्रीवा की जांच शामिल है। शिशुओं के समग्र जैसे शारीरिक, संज्ञात्मक, भावनात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य केंद्रों में एकीकृत शिशु स्वास्थ्य और विकास कार्यक्रम लागू किया गया है। पालन पोषण कार्यक्रम का उद्देश्य मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य केंद्रों के भाग लेने वाले सभी शिशुओं के माता पिता को स्वस्थ शिशुओं और उनके बेहतर लालन पालन के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से उन्हें अवेयरनेस देना, सूचनात्मक पुस्तकाओं, ऑडियो विजुअल संसाधनों, वेबसाइट, रिकॉर्ड की गई हॉटलाइन, पालन पोषण कार्यशालाओं और व्यक्तिगत परामर्श के रूप में प्रसवपूर्व अवधि के दौरान और फ्री स्कूल वर्षा के दौरान शिशुओं के विकास

शिशु देखभाल और पालन पोषण पर माता पिता को प्रभावी मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। जरूरतमंद माता पिता को सहायक सेवाएं प्रदान की जाती है। इनमें स्तनपान करने वाले माँ के लिए स्तनपान कोचिंग और सहायक समूह, प्रसवकालीन मानसिक स्वास्थ्य समस्या या विशिष्ट मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं वाले माता पिता के लिए मदद कार्यक्रम, नवजात और शिशुओं को टीबी, हेपेटाइटिस बी, पोलियोमाइलाइटिस, डिफ्थीरिया, टेटनस, खांसी, न्यूमोकोकल संक्रमण, चिकन पॉक्स, मम्स, रुबेला और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाने के लिए व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम प्रदान किया जाता है। इसमें स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा आयोजित नियमित समीक्षाओं की श्रृंखला शामिल है, जो स्वास्थ्य और विकासात्मक संबंधी समस्याओं वाले शिशुओं की समय पर पहचान और रेफरल प्राप्त करने के लिए तैयार की गई है। इसमें नवजात के लिए पहला स्वास्थ्य परामर्श, शिशु के विकास मानकों की अवधिक निगरानी, सुनवाई और विशिष्ट आयु में प्री स्कूल दृष्टि स्क्रीनिंग शामिल है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य केंद्र पूरी गर्भावस्था और प्रसव प्रक्रिया की निगरानी के लिए सार्वजनिक अस्पतालों के प्रसूति विभाग के सहयोग से एक व्यापक प्रसव पूर्वक साझा देखभाल कार्यक्रम संचालित करता है। प्रसव के बाद सभी महिलाओं को प्रसव बाद जांच और परिवार नियोजन और गर्भ निरोधक पर सलाह दी जाती है। केंद्र प्रसव बाद माताओं को सहायता समूह और व्यक्तिगत परामर्श में अनुभव साझा करता है। इसके माध्यम से जीवन में बदलावों को अनुकूलित करने में भी मदद करता है। बच्चा जनने की उम्र वाली महिलाओं को उचित गर्भरोधक तरीकों का परामर्श और पर्चा प्रदान किया जाता है। परामर्श उन ग्राहकों को भी दिया जाता है जिनको बांझपन की समस्या होती है और विशेषज्ञों के पास रेफरल की उचित रूप में प्रबंध किया जाता है। मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य केंद्र 25 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को गर्भाशय ग्रीवा जांच परीक्षण प्रदान करता है। महिलाओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और जीवन के विभिन्न चरणों में उनके स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करना लक्ष्य है। महिला स्वास्थ्य केंद्र 64 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के लिए स्वास्थ्य संवर्धन और रोग निवारण कार्यक्रम प्रदान करते हैं। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। स्वास्थ्य शिक्षा, परामर्श, शारीरिक परीक्षण और उपयुक्त जांच परीक्षण प्रदान किया जाता है। मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य केंद्र में सत्र के आधार पर महिला स्वास्थ्य सेवा भी प्रदान की जाती है। कार्यशालाओं और सहायक समूह के रूप में शैक्षिक कार्यक्रम नियमित रूप से मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ WHCS में विभिन्न सेवा सत्रों में आयोजित किया जाते हैं। शिशुओं और महिलाओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किया जाते हैं और जीवन के विभिन्न चरणों में उनके स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी अपने कम्युनिटी हेल्थ के बारे में। तो ये कार्यक्रम फैमिली एंड कम्युनिटी हेल्थ खासकर उन लोगों के लिए बनाया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत, नमस्कार। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे सुन रहे थे। FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था नदीम शर्वर ने। यह आवाजें थी सोनू निगम और साथियों की। फिल्म का नाम था तुमसे अच्छा कौन है। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। एक बार फिर से गीत समीर का, संगीत नदीम शर्वर का, आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की। फिल्म का नाम बरसात।

0: ये आकाशवाणी है। आकाश में तैरती ये उद्घोषणा 90 सालों का सफर पूरा कर रही है, बल्कि ये कहें ये आकाशवाणी की अनंत यात्रा है।
1: 1936 से शुरू हुई रेडियो यात्रा आज सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क के रूप में जानी जाती है। स्पूल टेप रिकॉर्डिंग से गुजरते हुए आकाशवाणी की वाणी अब हुई टोटल डिजिटल।
0: देश के 92% क्षेत्रफल में 99% लोगों तक पहुंच है आकाशवाणी की।
1: डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव ओटीटी और सोशल मीडिया पर भी आकाशवाणी ने अपनी धमक बनाई है।
0: शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, एफएम, ध्वनि तरंगों से चलते हुए आज आकाशवाणी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पहुंच गया है। 23 भाषाओं और 184 से ज्यादा बोलियों में प्रसारण के जरिए आकाशवाणी लोक संस्कृति का संवाहक बना हुआ है।
2: जो जस देई देणो भेजे।
1: सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से शुरू हुई आकाशवाणी की इस प्रसारण यात्रा में हमारे असंख्य श्रोता इन 9 दशक में हमारे साथ हैं।
0: आपका धन्यवाद। इस प्रसारण यात्रा में आपके साथ हमेशा आकाशवाणी देहरादून।

ये संगीत है अनु मलिक का, गीत है नवाब आरजू का, आवाज़ ही अलका याग्निक, कुमार सानू और साथियों की फिल्म का नाम है बासीगर।

0: श्रोताओं इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब आप प्रियंका मलिक से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने उद्योग प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान प्रदेश में श्रमिक हितों के संरक्षण के साथ ही औद्योगिक शांति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में आयोजित बैठक के दौरान प्रमुख सचिव ने सभी पक्षों को निर्देशित किया कि श्रमिकों को न्यूनतम वेतन सहित सभी वैधानिक सुविधाएं समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि सभी उद्योग संस्थान श्रमिक कानूनों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें, साथ ही औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए श्रमिकों से नियमित संवाद स्थापित करें। प्रमुख सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि व्यापक स्क्रीनिंग कर ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी श्रमिकों को मानक के अनुसार वेतन एवं सुविधाएं प्राप्त हो रही है। साथ ही इस संबंध में किसी भी प्रकार का भ्रम या दुष्प्रचार फैलाने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित भी की जाए। श्रम विभाग ने बताया कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और बिहार में श्रमिकों के लिए लागू न्यूनतम वेतन की तुलना में उत्तराखंड का वेतनमान अपेक्षाकृत बेहतर है। विभाग के अनुसार प्रदेश में अकुशल श्रमिकों के लिए 13,800 रुपये, अर्धकुशल श्रमिकों के लिए 15,100 रुपये तथा कुशल श्रमिकों के लिए 16,900 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम वेतन निर्धारित है, जो कि कई पड़ोसी राज्यों की तुलना में बेहतर है। विभाग ने कहा कि किसी भी शिकायत के लिए श्रमिक अपने संबंधित सहायक श्रम आयुक्त से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही हल्द्वानी स्थित श्रम आयुक्त कार्यालय में 24 घंटे कार्यरत रहने वाला कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष नंबर 0594628280 जारी किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते की मौजूदा दर 58% प्रतिमाह से बढ़ाकर 60% किए जाने को मंजूरी प्रदान कर दी है। नई दर 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 50 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने अल्मोड़ा के मोलेखाल बाजार में पार्किंग के निर्माण के लिए 5.91 करोड़ तथा चमोली स्थित ग्वालदम बाजार में वाहन पार्किंग के लिए 61.57 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन भी प्रदान किया। वर्तमान वैश्विक संकट को देखते हुए ऊर्जा संरक्षण और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सूचना एवं लोक संपर्क विभाग आज शनिवार को नो व्हीकल डे के रूप में मना रहा है। महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने बताया कि सूचना विभाग में प्रत्येक शनिवार को नो व्हीकल डे के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपील की है कि प्रत्येक शनिवार को कार्यालय आने जाने के लिए सार्वजनिक वाहन या साइकिल जैसे विकल्पों को अपनाएं। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे प्रयास सामूहिक रूप से बड़े सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और ये पहल ऊर्जा संरक्षण के राष्ट्रीय अभियान को मजबूती प्रदान करेगी। भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर प्रदेश में आगामी 29 मई से विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। इसी क्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के साथ आयोजित बैठक में सभी से इस अभियान में सहयोग की अपील की है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर SIR प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। इसके लिए आगामी 8 जून से 7 जुलाई तक BLO द्वारा घर घर जाकर गणना प्रपत्र का वितरण एवं संकलन किया जाएगा। इसी आधार पर 14 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन करने के बाद 15 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। नैनीताल पुलिस ने कैचीधाम, भवाली, भीमताल और हल्द्वानी काठगोदाम क्षेत्र में सप्ताहांत के दौरान बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए शनिवार 16 और रविवार 17 मई के लिए विशेष यातायात और डायवर्जन योजना लागू की है। ये व्यवस्था प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक के लिए प्रभावी रहेगी, जबकि यात्रा मार्गों पर भारी वाहनों का संचालन प्रातः 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस ने पर्यटकों, वाहन स्वामी और आम जनता से निर्धारित यातायात योजना का पालन करने की अपील की है। गोपेश्वर में आयोजित जिला विकास

समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक में केंद्र पोषित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना समेत कई योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।

FM 100.5 पे का हल्स पर आकाशवाणी का ये 13 दिन केंद्र है। 10:35 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं रामपाल की गाई रागणी। आपके साथ संगत कर रहे हैं ढोलक पर प्रदीप कुमार, नक्काड़ा पर मोतीराम और हारमोनियम पर तेलुराम। तो आइए सुनते हैं रामपाल की गाई रागणी।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: लोक संगीत के कार्यक्रम में आप इस समय सुन रहे हैं रामपाल की गायी रागणी।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रामपाल की गाई ए रागिणी। आपके साथ संगत कर रहे थे ढोलक पर प्रदीप कुमार, नक्काड़ा पर मोतीराम और हारमोनियम पर टेलूराम।
1: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR, प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
2: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है आपकी पसंद के फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश सुन रहे सभी श्रोताओं को सीमा सक्सेना का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हैं आपकी पसंद के फिल्मी गीतों के साथ और लगातार हमें मैसेजेस मिल रहे हैं आप सभी श्रोताओं के। हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं मुकेश की आवाज़ में अनाड़ी फिल्म से।

श्रोताओं, इस गीत को सुनना चाहा था झारखंड बड़ा बांपो सुपाई साई गांव से देवेंद्र ताती, राकेश, प्रकाश कुमारी, निशा, रेशमा, दीपाली और देवेन जी ने। गांव हाड़ीखेड़ा सिरसा हरियाणा से है राधेश्याम शर्मा, इंदिरा सार्थक शर्मा। और अगला मैसेज हमें लिख भेजा है आप श्रोता हैं, ग्राम पुटपाक तेलंगाना से भवानी वेंकटेश, मास्टर मिथुन और महादेव। मोहल्ला हलवाइया शेरकोट बिजनौर से हैं मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। पावरकर कवड़ा यवतमाल महाराष्ट्र से हैं अनिल बुराड़े, ऊषा, अनुश्री और धनश्री बुराड़े। बल्ला शाह से सूरज लोड़े, प्राची और एकलव्य। बुलढाणा महाराष्ट्र से वासुदेव बोधवड़े, अनीता, रमेश राव गाठोड़े, मोहम्मद आसिफ शेख, मोहम्मद अजीम, मोहम्मद जावेद, फातिमा गाज, मुन्ने सलमानी, एम के मोहम्मदी, ये श्रोता हैं गांधी रोड गंज डुडवारा के। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया और ये हमारे श्रोता हैं। नूर महल महसूल सीतामढ़ी बिहार के, मुसरत जहां नाज, तलत जहां, फरज जहां, रिफत नोजद, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज। उत्तम कुमार बघेल, रुखमनी, साहिल भारती बघेल, लंधान पंढरिया, छत्तीसगढ़ से मैसेज कर रहे हैं। सदर बाजार कुरावली के श्रोता हैं अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार और सोनम वर्मा। हमारे ये श्रोता लिख रहे हैं, नाज पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज, सलमा, असद अरहाम और मोहम्मद आलम। ग्राम उमेड़ा निज़ामाबाद तेलंगाना के श्रोता हैं मोहम्मद जुनेद्दीन, आबिदा, आयशा और स्नेहा भानु जैनुद्दीन। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हैं पी एस नवहावकर, निर्मला, विशाल नवहावकर। मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मोहरेकर। और आप श्रोता लिख रहे हैं, शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम, अजीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर, मोहम्मद जैन, जन्नत और विष्णु अग्रवाल। श्रोताओं, आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ही रांझा फिल्म का ये गाना।

श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना जिसे हमने लिया था फिल्म हीर रांझा से, और सुनना चाहा था हमारे श्रोताओं ने, आप हैं लाल माता सुदामा नगर अटलाई झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर मीनाक्षी कान्हा श्रीमती मनोहर बाई बागरी और प्रभुलाल बागरी। अगला मैसेज हमें लिख रहे हैं आप श्रोता हैं, रेलवे रोड गंज डुडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवार, नजमा बेगम नाज भा और सरिता गौतम। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोलवार, गीतिका और भानु प्रकाश, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, ये श्रोता लिख रहे हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। गिरडी झारखंड के हमारे श्रोता हैं मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज हसन, बाबू अहद मिफ्रा नवाज और बेबी चाहत। सहारनपुर चंदन नगर से हमारे श्रोता हैं सोनाली सुरेश, आशु नारंग, शेख अल्लाह बख्श, अरविंद कुमार, संदीप मक्कड़, बली भाई कुशवाहा, रेशमा राज, एस डी कुशवाहा। महेशवाड़ी मलकापुर महाराष्ट्र से हैं शत्रुघ्न धाड़े, बाल्मीक निनाजी और स्वप्निल धांडे। आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अराफात, अदीब और कादिर चौधरी हैं सिओहारा जिला बिजनौर यूपी से। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या भाई, सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी, जयपाल यादव और इनके साथी। निजामाबाद तेलंगाना के श्रोता हैं शेख अली, अब्दुल अली, निगार परवीन, हफ्सा अनम, समूरा नमीन, मनजा महवीन, आयजा मनाल, मोहम्मद मिसावल्ला,

मोहम्मद उजेफा अजलान और मोहल्ला शेरकोट बिजनौर से हैं मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार, बबलू और तरुण जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोता हैं। भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं मुकेश शर्मा, गौरव, गरिमा शर्मा और हर्ष आहूजा। ऊपरकोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर के श्रोता हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निघात परवीन, सरफराज, फरदीन, सुहान अब्बासी, अरजान अबान और पूरा अब्बासी परिवार। खरगोन सनावद मध्य प्रदेश के श्रोता हैं मास्टर शुक वर्मा, अर्चना, अनुज वर्मा, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार वोडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप। श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत फिल्म आन मिलो सजना से।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं साजन फिल्म से। सुनना चाहा है नई बस्ती गंज डुडवारा से मोहम्मद यासिन हाशमी, नजमा बेगम, मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी ने। साथ ही मैसेज किया है गांव झगुड़ी यमुनानगर से रणधीर बांगड़, गुरमेजो, गौरव, परवीन, युगम, बीरेन और मनराज ने। खमरिया छत्तीसगढ़ से हैं साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार। पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा, चेतन और सुलोचना भगत। रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश के श्रोता हैं विजय महोबिया, कविता, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, ईशु बाबा, सपना, शिवी, सलोनी और पेंटर बाबू। कुमारी कल्पना कुरहाड़े, वंदना कुरहाड़े, आशीष और दीपक कुरहाड़े। कानुगुला गोपाल, माहेश्वरी, प्रवालिका, विष्णुवर्धन, विग्नेश, ये श्रोता हैं रंगा रेड्डी तेलंगाना कड़ताल से। कृष्णा कॉलोनी हांसी से हैं सुभाष योगी, सुशील, डब्बू, बब्बू, राजू मिगलानी और बबीता मिगलानी। रमेश चंद्र चौहान, मोहनी, कल्पित चौहान, बेबी करवी और बेबी हिमाक्ष, ये हमारे श्रोता हैं सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से। और अगला मैसेज लिख रहे हैं रमेश नाचानी, भारती, विनीत, मिथिल, प्रगति नाचानी, बाबू भाई और भारती देवी, महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से। कस्बा चिलकाना से हैं मोहम्मद जरीफ अंसारी, नईम, डॉक्टर आमिर अंसारी, दानिश राजा, मुन्ना नाजिम अंसारी। तेलंगाना स्टेट करीमनगर से लक्ष्मी नारायणा, विजया, अभिनय और साई किरण। मोहम्मद नासिर हुसैन पटेल, अमीना पटेल, ये श्रोता हैं जखणगांव अहमदनगर से। नवी हसन अब्बासी, शहनाज, नवीद हसन, सुहेल हसन, रसीद, अमन अब्बासी और यशव अब्बासी हैं मारहरा दरवाज़ा एटा से। वारसी क्लब सिंधौली बरेली के हमारे श्रोता हैं जीसान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख करूला, मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान। करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर, अब्रार हुसैन अंसारी, मुन्ना भाई, निशा, परवीन, तमन्ना, आशिक हुसैन अंसारी। और जसवाड़ी के हमारे ये श्रोता हैं दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश, सूरज कुमार ढाक से। और खैगांव तहसील महेश्वर से हैं प्रेमलाल वर्मा, निकेश, हर्षिता और ममताबाई वर्मा। मोहल्ला बारादरी महमूद खां रामपुर से हैं भाई रफत साहब, भाई सईद भाई मंसूरी और असद भाई, फिरोजा मुस्कान, अफसर अली, नगमा नाज, प्रकाश वर्मा, निखिल, प्रिंस और यशस्वी वर्मा छत्तीसगढ़ पलारी से हैं। श्रोताओं आइए सुनते हैं साजन फिल्म का ये गाना आप सभी श्रोताओं की पसंद पर।

श्रोताओं, भी आपने सुना साजन फिल्म का ये गीत। हमें अगला मैसेज मिला है, हमारे श्रोता हैं दरियापुर भावली महाराष्ट्र से, गजानन एले, नवदीप विशुदीप एले और अशोक एले, शेरी वर्णो रकोला से अरुणा बलदेव दामोदर और आदित्य दामोदर, पांडु चंदन, उषा रानी चंदन, प्रतीक्षा अभिषेक, सार्थक प्रथमेश और संतोष चंदन, पांडुरंग कुम्हार, कुम्हार गली कोलगांव के श्रोता हैं। और ये श्रोता हैं अस्तुपुरा मऊ के अजहर अली अंसारी, मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम, मोहम्मद सादिक और बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद। और ये श्रोता हैं, आप हमारे श्रोता हमें मैसेज कर रहे हैं, मनकारा मंदिर करगेना बरेली से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश और राजेश कुमार वर्मा, रूबी, एकता, दिव्या भारती, रचना भारती और ओमवती भारती, खनक, शगुन सारांश, अयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथव। और ये मैसेज हमें लिखा है, बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति, रितेश कुमार राजेश्वरी, उत्कर्ष चौहान ने। और अगला मैसेज हमें मिला है मुकेश गोस्वामी, मधु, आशी, सिवन्या गोस्वामी और अनु गोस्वामी का, उच्च भट्टी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से। रघुवीर नगर से हैं दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू। बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता, साक्षी घटे, जयश्री महत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टिबुल, बीबी पीबी कुलथे। और ये हैं श्रोता, कुम्हार गली श्रीरामपुर महाराष्ट्र से, अशोक दले, सविता, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका और सानिका दले, पुनावले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा, अविका और विशाखा सोनवने। गांव ध्यांगला कुरुक्षेत्र से है हमारे श्रोता मांगेराम सैनी, यशवी नेविस और दीपल सैनी, देवांश यामी और कनिका शर्मा। चंडीगढ़ सिटी से हैं शैफाली, शैफी, डेविस, विमला, सतीश, अनेजा और मनाली हिमाचल से हर्ष, विनय, विनीत और रोजस भाई। अविका आर्ट श्रीरामपुर के हैं डी अशोक कुमार, अविका, जीविका, सानू कुमार और अर्चना। कोयते बस्ती पुनावले से अजय, करिश्मा, अविका और साईशा सोनवने। ये हमारे श्रोता लिख रहे हैं मैसेज हमें, गणेश भारद्वाज बिलजवाण, दरवान सिंह नेगी, राजेंद्र सिंह नेगी, सुरेंद्र मुंडेपी, कुलदीप रावत, लियाकत बालावाला देहरादून उत्तराखंड से, फाजिलका पंजाब से हैं भूषण खेड़ा, विशु, विशाल, लाड़ी खेड़ा, शालनी, टिवांशी, वाणी, आरबी खेड़ा, जीवन बुक और पूरा खेड़ा परिवार।

छत्तीसगढ़ बंदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश और राहुल साहू। श्रोताओं आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत जमीर फिल्म से।

107.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। अगला गीत हम शामिल कर रहे हैं हमारे श्रोताओं की पसंद पर। आप हैं रॉवर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, कच्छ गुजरात से गंगा वणकर, गोविंद, प्रीति, जूली, गीता, महिमा, विशाल, विकास, विजय, विराट, रमेश, महेश, जयंती और इनके परिवार के सदस्य। सरोज चौक अमरावती से हैं कमरुल्ला ठेकेदार और नसीम बेगम। अगला मैसेज हमें मिला है गोकुल चौक सहरसा बिहार से राधे कुमार, विद्यार्थी सविता, राधे, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम, कुमारी साक्षी, अच्छी लाल, बुल्की वाली और फलना झाका। नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से हैं अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे। राजनगर कांति निकेतन के श्रोता हैं कुशेश्वर कांति गुप्ता, रुद्र रिद्धि गुप्ता, ऐशबाग लखनऊ से हैं रानी, मुकेश गुप्ता, कुसुम देवी, रूपा इलाहाबादी, रश्मि गुप्ता और नीलम गुप्ता। गांव भोजपुर तगा चिलकाना सहारनपुर से हैं मोहम्मद जावेद, मोहम्मद अदीब, अब्दुल हनान, जीनत जावेद, नाहिद रानी, आयत सिकंदर अली और ये हैं हमारे श्रोता। मैसेज कर रहे हैं वाइल्ड फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंद्र भूषण, संस्कृति और पौरुष। साथ ही मैसेज मिला है श्रोता हैं मुंदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी और कमल किशोर शाह का। ये श्रोता सनावत से लिख रहे हैं शेख मूसा और बानो बी। सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार, बबलू निषाद और तरुण यादव हैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। नाम शामिल हो चुका है, हमें पुनः मैसेज मिला है आपका। अनुरोध आप सभी श्रोताओं से, कृपया आप प्रोग्राम को सुने और अपना नाम सुने। कई बार आपका नाम शामिल हो जाता है और आप हमें पुनः मैसेज करते हैं कि हमने आपका नाम शामिल नहीं किया है, लेकिन आपका नाम शामिल हो चुका रहता है और यही कारण रहता है कि हमारे और श्रोता छूट जाते हैं, उनका नाम हम शामिल नहीं कर पाते हैं। तो आपसे एक ही अनुरोध है, कृपया आप नाम सुनने के बाद अपने पुनः हमें मैसेज ना करें, सिर्फ एक बार ही हमें मैसेज करें तो बहुत अच्छा होगा। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अगला मैसेज शामिल करते हैं। हमारे श्रोता हैं बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला, सुमित कुमार, साधना, पवन पाटिल, वड़सिंगी बुलढाणा से हैं अमोल मानकर, शोभा ताई, श्लोक और दीपाली। अक्रम हुसैन, ये नाम भी शामिल हो चुका है। और अगला मैसेज हमें मिला है मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायड़े, बसंतरा भोजने, निवृत्ति आडोकार का। मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश राजपाल, पंकज काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहनी, ऋतिक और बलवीर सिंह है ग्राम दुल्हापुर मुरादाबाद यूपी से। चंदूलाल पटवा, श्रीमती सुनीता, हर्ष कुमार, विनीत कुमार और कुमारी क्रिस्टी पटवा हैं धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से। श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत फिल्म बेमिसाल से।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है और आप सुन रहे हैं अपनी पसंद के फिल्मी गीत कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में। ये हमें मैसेज मिला है नजीबाबाद यूपी से आरजे मनोज वर्मा का, और बेवरा संबलपुर से हैं शिवदयाल वर्मा, नरोत्तम तुषार और वंशिका वर्मा। अगला मैसेज हमें लिख रहे हैं विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार, डॉक्टर सुहान भूति चक्रधर, और नागपुर यूनिवर्सिटी तिवसा से हैं प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन, डॉक्टर अपेक्षा, अमिन दीवान, प्रज्वला मेश्राम और कुमारी व्याख्या। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं छन्नूलाल श्रीवास, अनीता, पुष्पा, अंजू, योगिता, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास बाधवानी। जालंधर से हैं मीना कौर और संदीप कौर। जेल रोड रायगढ़ से लालचंद मिश्रा, कुमकुम मिश्रा। रायगढ़ छत्तीसगढ़ से साजिद खान और आफताब। बागपत यूपी से हैं ममता ढींगिया और कुणाल ढींगिया। ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम और आशीष विश्वकर्मा है बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के श्रोता हमारे। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबीहा मिखाइल और जैनब मुजावर। संदीप मक्कड़, ज्योति मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से मैसेज लिख रहे हैं। बफर गांव नांदुरा के श्रोता हैं शिवाजी उगले, राहुल उगले, और धामण गांव के श्रोता भागवत देठे पाटिल, लक्ष्मी देठे।

समर्थ दादा और कुमारी सानिका देठी पाटिल। पटियाली रोड गंज डुडवारा यूपी से हैं एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम और एजाद कुरैशी, बेबी आरिबा हबीबा। नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता, आरती, पूजा प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया। और जालना शहर से हैं सोमनाथ जाधव, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता जाधव। के एच रही, गुड़िया बेगम, वकील प्रेमी और हमाल जलील हमारे श्रोता हैं तहसील रोड गंज डुडवारा यूपी से। मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर यूपी के श्रोता हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। वनस्थलीपुरम हैदराबाद से दोरनाला बालाजी, श्रीमती रेणुका, बद्री, हरणी, लोकेश और साई कृपा। श्रोताओं आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म जीने की राह से।

श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत बॉबी फिल्म से। सुनना चाहा है यवतमाल महाराष्ट्र के श्रोताओं ने, आप हैं अवधूत वाड़ी आनंद महाराष्ट्र के हमारे श्रोता हैं, आनंद देवधरे, छबु बरवाड़े और विद्या तलेगांवकर, वसंत जाधव। और अगला मैसेज लिख रहे हैं शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुज्जू बाबा, आयजा अनम और मुदस्सिर हुसैन, सब्जी मंडी बुलढाणा से। ये हैं पूनम कुकरेती, सुनील कुकरेती, विवेक, वंदिता, वंश, अंजना, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से, विरमगांव गुजरात से हैं बेगम प्रमिला प्रदीप और हेमा प्रदीप। और अगला मैसेज हमें मिला है, ये लिख रहे हैं श्रोता, दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शॉ, अजय कुमार, रिम्मी, तनुश्री और पिहरा बाजर झुमरी तलैया से हैं, अभय कुमार सनातनी, शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी, रिया, जिया टूसी, आयुषी, अनुरुद्ध बाबू, मुनि देवी शाह, जयप्रकाश, बसंतलाल, हीरा मोती और पन्ना लाल साहब। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से हैं रविंदर सिंह छावड़ा, इंद्रजीत कौर और स्वीटी छावड़ा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत बॉबी फिल्म से।

0: श्रोताओं, बॉबी फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का व्हाट्सएप फरमाइश का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की सीमा सक्सेना को दीजिए अनुमति। नमस्कार। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, इस समय दोपहर के 12 बजने वाले हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करेंगे। समारोह में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल देर रात नीदरलैंड्स पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। विभिन्न आयु वर्ग के लोग पारंपरिक नृत्य संगीत प्रस्तुतियों के साथ उनका स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए। प्रवासी भारतीयों ने भोजपुरी गीत से प्रधानमंत्री का स्वागत किया।

इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड संबंधों, प्रवासी समुदायों की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर ₹3 प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क ₹23 से घटाकर ₹16.50 प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे ₹33 प्रति लीटर से घटाकर ₹16 कर दिया गया है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, साथ ही उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। त्रिपुरा में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके गठन के लिए ₹50 करोड़ का एकमुश्त वित्तीय अनुदान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ₹30 करोड़ तक की राशि मंजूर की है। मुख्यमंत्री माणिक साह ने आशा कार्यकर्ताओं के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में हुई तेज वर्षा और तूफान से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिन भर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना जताई है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। इस वर्ष का विषय है डेंगू नियंत्रण के लिए सामुदायिक भागीदारी, जांच करें, साफ करें और ढकें। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के नूर इजुद्दीन और गो सीफेई की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Excitement is building among the Indian diaspora in the Netherlands as Prime Minister Narendra Modi prepares to address the community this afternoon during his official visit. Thousands of Indian community members are expected to attend what organizers are calling a historic address. The event will be highlight of the Prime Minister's trip to the country. Prime Minister Modi reached the Netherlands late last night to a warm reception. Members of the Indian community, representing different age groups, regions and faiths, gathered to welcome him with traditional dance and musical performances. The venue echoed with chants of Modi, Modi and Vande Mataram as he arrived. Modi, Modi, Modi, Modi. The community event is expected to focus on India-Netherlands ties, the role of the diaspora and India's global outreach. In West Bengal, an FIR has been registered against Trinamool Congress leader and Member of Parliament Abhishek Banerjee in connection with alleged provocative remarks made during campaigning for the recently concluded West Bengal Assembly polls. The complainant alleges that certain remarks, including comments directed at Union Home Minister Amit Shah, were widely circulated on social media, including the MP's official Facebook page. Meanwhile, in a separate development, the West Bengal government has suspended three senior IPS officers, including former Kolkata Police Commissioner Vineet Goyal, in connection with alleged lapses in the investigation of the RG Kaur Medical College rape and murder case. Announcing the decision, the Chief Minister said serious procedural irregularities were found in the handling of the case. Central Board of Secondary Education has issued a notice outlining post-result declaration facilities for Class 12 students, reaffirming its commitment to a fair and transparent evaluation process. In the notice, the board said, students dissatisfied with the results can avail a two-stage review system. In the first stage, students may apply online for scanned copies of their evaluated answer books, which can be downloaded for review. In the second stage, students can seek verification of discrepancies or request re-evaluation of specific answers based on the marking scheme. CBSE said applications for scanned copies can be submitted online from the 19th to the 22nd of this month at a fee of ₹700 per subject. Applications for verification and re-evaluation can be submitted between the 26th and 29th of this month. The Ministry of Statistics and Programme Implementation is inviting feedback and suggestions on the base paper on framework for measuring the contribution of knowledge and knowledge products to the Indian economy. The Ministry said comments and suggestions on the base paper are invited from all stakeholders and the general public as part of the consultation process. It added that feedback may be shared with the Ministry on manish.jindal@mospi.gov.in and neeraj.kumar007@nic.in by 15th of June 2026, which will enable the early finalization of the framework. Defence Minister Rajnath Singh has expressed grief over the loss of lives caused by heavy rains and storm that affected Uttar Pradesh and several other parts of the country over the past few days. In a social media post, Mr. Singh conveyed his condolences to the bereaved families. He noted that the central government is extending every possible assistance to the states impacted by the adverse weather conditions. Sikkim is observing its statehood day today, marking its transition from a monarchy to becoming the 22nd state of India in 1975. Vice President C.P. Radhakrishnan will undertake his first visit to Sikkim today after assuming office. He will attend the statehood day celebrations in Gangtok. President Draupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah extended greetings to the people of Sikkim on their statehood day. In badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will face Malaysian shuttlers Nuruzzuddin and Goh Zefai in semi-finals of Thailand Open in Bangkok today. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders will take on Gujarat Titans at the iconic Eden Gardens this evening. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
1: FM 107.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है FM न्यूज हेडलाइंस।
2: यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब आप प्रियंका मलिक से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते की मौजूदा दर 58% प्रतिमाह से बढ़ाकर 60% किए जाने को मंजूरी प्रदान कर दी है। नई दर 1 जनवरी 2026 से प्रभावी रहेगी। ऊर्जा संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए सूचना एवं लोक संपर्क विभाग प्रत्येक शनिवार को नो व्हीकल डे के रूप में मनाएगा। इसी क्रम में महानिदेशक सूचना वंशीधर तिवारी आज साइकिल चलाकर अपने कार्यालय पहुंचे। उन्होंने विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारियों से भी नो व्हीकल डे, सार्वजनिक परिवहन या साइकिल जैसे विकल्पों को अपनाने की अपील की है। प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने उद्योग प्रतिनिधि एवं अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश में श्रमिक हितों के संरक्षण के साथ औद्योगिक शांति बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि श्रमिकों को न्यूनतम वेतन सहित सभी वैधानिक सुविधाएं प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जनपद उधम सिंह नगर और चंपावत के दौरे पर रहेंगे। चंपावत भ्रमण के दौरान वे मां बाराही धाम देवीधुरा मंदिर में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर प्रदेश में आगामी 29 मई से विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ बीवीआर से पुरुषोत्तम ने बताया कि इस क्रम में आगामी 8 जून से 7 जुलाई के बीच बीएलओ द्वारा घर घर जाकर गणना प्रपत्र का वितरण एवं संकलन किया जाएगा। नैनीताल पुलिस ने कैंचीधाम, भवाली, भीमताल और हल्द्वानी काट गोदाम क्षेत्र में शनिवार 16 और रविवार 17 मई के लिए विशेष यातायात योजना लागू की है। पुलिस ने पर्यटकों, वाहन स्वामी एवं आमजन से निर्धारित यातायात योजना का पालन करने की अपील की है। और टिहरी गढ़वाल के जौनपुर क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण ग्राम फिडोगी और नौघर के मध्य स्थित खाला से भारी मात्रा में मलबा और गाद आने से 5 दुकानों में मलबा घुस गया है और 3 खेतों एक भवन को भी काफी नुकसान हुआ है। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
1: एफएम 107.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं विविध कलाकारों द्वारा गाई कव्वालियां।

0: मार्केट के बारे में क्या
1: परफॉर्मेंस का बोलो
2: बी द फ्यूचर
1: मार्केट ट्रेंड देख
0: सुनने में आएगी
3: आज की खबर देख पहले ही बोला था ब्रो
1: माय प्रेडिक्शन इज
4: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
1: मेरे दोस्त ने बोला
5: देवी जी की सुनो
6: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो म्यूचुअल फंड्स सही है
7: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत विविध कलाकारों द्वारा गायी कव्वालियां। इसी के साथ ही हमारा आज का ये अंक यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। अब हमारी बहनों के लिए प्रस्तुत है उनका अपना कार्यक्रम महिला जगत।

हैं, जैसे खाने के लिए भोजन, पीने के लिए साफ पानी, रहने के लिए घर वगैरह वगैरह। उसी तरह हमें अपने घर परिवार, पास पड़ोस और समाज में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर समझ और सहयोग के साथ रहने की भी ज़रूरत होती है। समाज की इस ज़रूरत को ध्यान में रखकर प्रतिवर्ष 16 मई यानी आज ही के दिन शांति के साथ एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के लोगों के बीच मतभेदों और विविधता के बावजूद एकजुटता, आपसी समझ, सहयोग और समावेश को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2017 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। यह दिवस दुनिया में फैले हुए अविश्वास, गलतफहमी और भेदभाव को कम करने के लिए समुदायों के बीच मानवीय संबंधों को मजबूत करने का प्रयास करता है। शांतिपूर्ण एक साथ रहने का अर्थ है मतभेदों को स्वीकार करना और दूसरों को सुनने और पहचानने, सम्मान करने और उनकी सराहना करने की क्षमता रखना। क्योंकि अक्सर देखा जाता है हम अपनी बात कहने में तो आगे रहते हैं लेकिन दूसरों की बात सुनते नहीं हैं, और इसी के साथ शांतिपूर्ण और एकजुट तरीके से जीवन का निर्वहन करना। बहनों, जब हम शांति से आपस में सद्भाव के साथ जीवन यापन करते हैं तभी हम एक शांतिपूर्ण और सभ्य समाज का निर्माण करते हैं और विश्व शांति की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं। बातें तो आपसे और भी होती रहेंगी, आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: बहनों, आप जुड़ी हैं महिला जगत से। जब भी हम किसी संस्थान में काम करते हैं तो एक निश्चित आयु के पश्चात सेवानिवृत्ति मिलती है। अधिकांश लोगों का मानना होता है कि बस अब हमारी उम्र हो गई, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद समय कैसे व्यतीत करें, इस विषय पर हमारी सहयोगी कल्पना पंकज ने बात की श्रीमती रेखा सिंगल से। आइए सुनते हैं भेंट वार्ता।
1: बहनों, सेवानिवृत्ति किसी संस्था या संस्थान से एक उम्र के बाद सेवा से अवकाश होता है, और इस सेवानिवृत्ति के बाद समय कैसे व्यतीत करें, इस विषय पर आज के इस कार्यक्रम में बातचीत के लिए हमारे साथ हैं श्रीमती रेखा सिंगल। रेखा जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
2: नमस्कार, धन्यवाद।
1: रेखा जी, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट किसको कहेंगे?
2: एक निश्चित अवधि के बाद सभी जो भी जॉब करते हैं उनको अपने पद से मुक्त होना पड़ता है, लेकिन उसके बाद अपने अनुभव, अपनी जिम्मेदारियों और अपनी उपलब्धियों के बल पर
1: जी
2: हम अपना एक संतुलित जीवन की शुरुआत करते हैं और अपने परिवार के लिए समय निकालते हैं। अपनी अभिरुचियों को, जिनको हम सेवा काल में पूरा नहीं कर पाए, का उनको पूरा करने का प्रयत्न करते हैं और एक शांत मन से एक सुखमय जीवन जीने की कल्पना करते हैं।
1: जी रेखा जी, आप भी किसी संस्था से जुड़े थे और आप सेवानिवृत्ति को कितने दिन हुए हैं?
2: मैं स्कूल में अध्यापिका रही हूँ, भेल BHL हरिद्वार के द्वारा संचालित स्कूल में मेरा एक लंबा कार्यकाल रहा है। 32 वर्ष मैंने स्कूल में बच्चों को शिक्षा दी है। मैं अपने कार्य से बहुत ज्यादा संतुष्ट हूँ। के बाद मैंने एक दिव्यांग संस्था जो दिव्यांग बच्चों के लिए काम करती है को मैं वहाँ पर अपनी सेवाएं देती हूँ। उनको व्यवसायिक शिक्षा को अपने पैरों पर खड़ा होना, उसके लिए मैं पूरा प्रयत्न करती हूँ। जैसे होली पर गुलाल बनाना, दिवाली पर दिए रंगना, रक्षाबंधन पर राखियां बनाना। हम उनको छोटे छोटे काम, जैसे मंदिर से फूल आते हैं, उन फूलों के द्वारा हम उनको धूप बत्ती बनाना सिखाते हैं। उसको मार्केट में सेल होने के बाद जो पैसा आता है, हम उन बच्चों को उन बच्चों के बीच में बांट देते हैं। इस प्रकार हम उनको आत्मनिर्भर बनाते हैं। मुझे 10 वर्ष हो गए हैं अपना सेवा मुक्त हुए, लेकिन मुझे कभी नहीं लगता कि मैं सेवा मुक्त हुई हूँ। मैं गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को ड्राइंग और क्राफ्ट, वेस्ट वस्तुओं का कैसे सदुपयोग हो, ये मैं उनको करना सिखाती हूँ।
1: रेखा जी, सेवानिवृत्ति से पहले और सेवानिवृत्ति के बाद क्या अंतर होता है, क्या फर्क पड़ जाता है, क्या फर्क महसूस होता है?
2: क्वेश्चन बहुत अच्छा है मैडम। सेवानिवृत्ति से पहले हम अपने दायित्वों के लिए बाउंड होते हैं
1: जी।
2: हम वही करते हैं जो हमें कार्य हमें मिला होता है, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद हम अपनी रुचि का कार्य करना पसंद करते हैं। हम जैसे कुछ बहनों को गायन का शौक है तो वो वाद्य यंत्र चलाना सीखती हैं
1: जी।
2: कुछ बहनों को बागवानी का शौक होता है तो अपने घरों में ही सब्जियां उगा लेती हैं। कुछ बहनों को तकनीक सीखने का, नई नई भाषाएं सीखने का शौक होता है तो वो भाषाएं सीखती हैं, तकनीक से जुड़कर नए जमा

0: आने के साथ अपना ज्ञान बढ़ाती हैं। इस तरह से अलग अलग बहनों का अलग अलग शौक होता है और वो अपने शौक को जिंदा रखने के लिए इस रिटायरमेंट का इंतजार करती हैं
1: जी
0: और बहुत अच्छे से अपना सुखमय जीवन बिताती हैं।
1: बहुत सही कहा आपने। लेकिन रेखा जी, हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोग मानते हैं कि सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट एक सजा है, इस बारे में अपनी राय बताएं।
0: देखिए, रिटायरमेंट सजा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये तो समय का सदुपयोग है। हम अपने परिवार को पूरा समय दे पाते हैं, अपनी रुचि का कार्य कर सकते हैं और हम एक टाइम बाउंड होकर नहीं रहते। इसमें हम सुबह आराम से उठते हैं, घूमते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपना शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का हम विकास करते हैं। और जिन कामों को हम अपने सेवा काल में पूरा नहीं कर पाए, जिन रुचियों को हम अपने सपनों को रंग नहीं भर पाए,
1: बहुत सही।
0: वो सारे कार्य हम सेवानिवृत्त होने के बाद कर रहे हैं। मुझे तो अपना सेवानिवृत्त होने का जो कार्यकाल है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है।
1: जी जी
0: मैं तनाव मुक्त होकर अपना जीवन बिताती हूँ। उसमें परिवार का सहयोग, अपने पोता पोतियों का सहयोग और अपने आस पड़ोस और अपने जहाँ से भी हम जुड़े हैं उन सब का सहयोग होता है। हम मिलजुल कर अपने जीवन का इस उम्र का आनंद लेते हैं।
1: जी अच्छा, तो ऐसे में सेवानिवृत्ति के बाद हमें क्या बातें ऐसी होती हैं जिन्हें अभी ध्यान रखना चाहिए?
0: सेवानिवृत्ति के बाद हम ध्यान रखने में सबसे पहले तो अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो तभी हम कुछ कर पाते हैं। तो हमें सबसे पहले अपना शारीरिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, हमारे मानसिक दबाव नहीं होना चाहिए। हमें आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र होना चाहिए। उसके लिए हमें थोड़ी सी प्लानिंग कर लेनी चाहिए अपने बचत पर और अपने खर्चों पर। हम कैसे नियंत्रण रख सकते हैं, उन पर हम कैसे संतुलन बना सकते हैं ताकि हमें कोई भी मानसिक तनाव ना बने।
1: जी
0: इसके लिए हम थोड़ी सी तैयारी पहले से कर लेंगे तो हमारा सेवानिवृत्ति का कार्यकाल बहुत अच्छे से गुजरेगा।
1: जी सेवानिवृत्ति के बाद बहुत सा वक्त मिलता है, ऐसे में उस समय का कैसे सदुपयोग किया जा सकता है?
0: देखिए, ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम अपने खाली समय को कैसे सदुपयोग किए। तो इसमें सबसे अच्छा है कि हम पहले अपने शरीर के लिए थोड़ा सा उठकर अपने शरीर को समय दें। हम योग करें, हम थोड़ा मेडिटेशन करें, उसके बाद हम समाज में सामाजिक कार्यों से जुड़ें। जैसे आपके घर के आसपास किसी बच्चे को आर्थिक सहायता की जरूरत होती है या
1: जी
0: आप उसको किसी भी तरह से शिक्षित करने में सक्षम हैं तो आप अपना सहयोग कर सकते हैं। किसी अनाथालय से जुड़ सकते हैं, किसी दिव्यांग संस्था से आप जुड़ सकते हैं,
1: जी
0: किसी सामाजिक या धार्मिक संस्था से जुड़कर आप अपना वहाँ पर मनोरंजन भी कर सकते हैं और ईश्वर का ध्यान भी कर सकते हैं। उससे अलावा आप अपने घर में छोटे छोटे बच्चों को बुलाकर उनको नैतिक शिक्षा, उनको आध्यात्मिक के बारे में ज्ञान दे सकते हैं।
1: जी रेखा जी, ऐसे में समय तो खूब मिलता है, लेकिन समय के साथ साथ तनाव भी बढ़ता जाता है। ऐसे में अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं, तनाव मुक्त रह सकते हैं?
0: तनाव मुक्त रहने के लिए सबसे ज्यादा अपने आप में खुश रहना बहुत आवश्यक है।
1: जी
0: अपना आत्म संतोष, और उसमें सबसे दूसरे नंबर पे है कि हमें अकेलापन से बचना चाहिए।
1: जी
0: हमें अपने हॉबीज डेवलप करनी चाहिए। आप उसमें क्रिएटिविटी हो तो बहुत अच्छे से समय बीत सकता है। हम अलग तरह की कोई भाषा सीख सकते हैं, कोई वाद्य यंत्र सीख सकते हैं, उससे हमारा समय बहुत अच्छे से बीतता है और हम वॉलेंट्री कहीं अपनी सेवाएं दे सकते हैं।
1: जी
0: अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो हम अपने समय का बहुत अच्छे से सदुपयोग कर सकते हैं।
1: ऐसे में हमारे सामने चुनौतियां भी आती हैं।
0: हाँ, ये होता है कभी कभी हम अच्छा करते हुए भी समाज हमारे कार्यों को अच्छा नहीं समझता, अवहेलना करता है। उसमें आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। आप धैर्य रखें और आप ये समझें कि आप सब लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकते।
1: जी
0: आप अपने में संतुष्ट रहिए, अपना कार्य अच्छे से करिए, अपनी सेवाएं समाज में लगाइए। एक ना एक दिन जो आपको पसंद नहीं करते हैं वो भी आपको पसंद करने लगेंगे। और थोड़ा बहुत अगर हमारा कहीं फ्रिक्शन होता है तो हम उसको मिल बैठ कर सुलझा लें, ना कि उसको अपने मन में रखें। हम भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ें, एक दूसरे

0: को प्यार करें, सहयोग करें, तो हम अपना समय बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं।
1: क्या सेवानिवृत्ति के बाद परिवार और समाज का दृष्टिकोण बदल जाता है?
0: मैं ऐसा तो नहीं समझती, परिवार तो आपको हमेशा ही प्यार करता है
1: जी
0: और प्यार करता रहेगा। उसमें महिलाओं की भूमिका तो बहुत अधिक होती है,
1: जी
0: महिलाओं में बहुत धैर्य होता है, वो अपने प्यार से पूरे समाज को जीत लेती हैं, अपने घर में शांति बनाए रखती हैं। और भारतीय नारी का तो यही गुण है
1: जी
0: कि वो सबसे पहले अपने परिवार को संतुष्ट रखती है, उसके बाद समाज और देश के लिए वो सोचती है। तो मेरे को नहीं लगता कि कहीं भी आपको कहीं अवहेलना झेलनी पड़ती है। महिलाओं का गुण देश, परिवार और समाज के लिए होता ही होता है, क्योंकि नारी में ममत्व, करुणा, प्रेम हमेशा प्रचुर मात्रा में होता है।
1: जी रेखा जी, रिटायरमेंट के बाद क्या बहनें कुछ नया कर सकती हैं?
0: जी, अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकती हैं, और यदि आप करना चाहें तो छोटा मोटा कोई व्यवसाय भी कर सकती हैं। जैसे मैंने बहुत बहनों को देखा है
1: जी
0: कि वो छोटे छोटे उद्योग लगाकर बहुत सारी अन्य महिलाओं को भी काम दे रखा है। ये एक बहुत अच्छी पहल होती है कि आप उसमें प्रमुख रहें और अपनी सलाह से, अपनी बुद्धिमता से आप अन्य महिलाओं को काम देकर उनको भी आत्मनिर्भर बनाएं। ऐसा मैं सोचती हूँ कि क्योंकि आपके पास अनुभव का खजाना होता है,
1: जी
0: आप अपने अनुभव और अपनी बुद्धिमता से अन्य महिलाओं को भी काम देकर उनको आत्मनिर्भर बना सकती हैं।
1: तो रेखा जी, रिटायरमेंट के बाद आगे का जीवन उनका खुशी पूर्वक बीते, तो ऐसे में क्या ध्यान रखना चाहिए?
0: मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें आत्मसंतुष्टि होना बहुत आवश्यक है। आप खुद में खुश रहें तो आप देखेंगे कि चारों तरफ खुशियां हैं।
1: जी
0: अगर आप खुद में खुश नहीं हैं, आप में संतुष्टि नहीं है, तो आपको लगेगा कि पूरा परिवार, पूरा समाज में नफरत ही नफरत है। तो आपको अपने में संतुष्ट होना बहुत आवश्यक है। आप कभी भी अपने आप को खाली ना समझें और ना ही अपने आप को असक्षम माने। आपके पास अनुभव का, उपलब्धियों का खजाना होता है,
1: जी
0: जिसको आप अपने समाज में लगाएंगे तो समाज आपको अवश्य ही उसका पॉजिटिव रेस्पॉन्स देगा। तो मेरा मानना ये है कि हमें इस उम्र में आके सामाजिक कार्यों के साथ जुड़ जाना चाहिए।
1: जी
0: जितना अधिक हम समाज के साथ जुड़ेंगे, उतना ही हमारे अंदर संतुष्टि का भाव होगा और हम अपने आप को, अपना जीवन सफल मानेंगे।
1: अंत में बहनों को क्या कहना चाहेंगी आप?
0: मैं सभी सेवानिवृत्त बहनों से यही कहना चाहूंगी कि आप अपने अनुभवों से, अपनी उपलब्धियों से इस समाज को सुसंस्कृत करें, इस समाज को कुछ अच्छा देकर जाएं। अपने आप को खाली मत माने। जितना आप अपना समय, अपना सहयोग समाज को देंगी तो ये देश उन्नत बनेगा। और कुछ चार लाइनों में मैं आपको कहना चाहूंगी,
1: जी
0: सेवानिवृत्ति अंत नहीं है, सेवानिवृत्ति अंत नहीं है, यह जीवन का नया सवेरा है। अनुभव की अमूल्य पूंजी संग हर दिन अब और सुनहरा है, हर दिन अब और सुनहरा है। सम्मान आपका सदा रहेगा, हर दिल में नाम खिलेगा, आपकी मेहनत और लगन का युगों युगों तक मान रहेगा, युगों युगों तक मान रहेगा। परिवार संग हंसी खुशी मनाओ, अपने सपनों को सजाओ, जो अधूरे रह गए थे अब तक, रंग भर कर उनको सुंदर बनाओ। अब आया विश्राम का पल, थोड़ा ठहरो चलो संभल, जीवन की नई राहें चुनो, खुशियों से अपना भर लो कल।
1: श्रीमती रेखा सिंघल जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई और आपने सेवानिवृत्ति के बाद समय कैसे व्यतीत करें इस विषय पर विस्तार से जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहनों, अभी आपने श्रीमती रेखा सिंघल से सेवानिवृत्ति के बाद समय कैसे व्यतीत करें विषय पर कल्पना पंकज के साथ सुनी भेंटवार्ता। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। बहनों, हमारा व्यक्तित्व हमारी बोलचाल का तरीका, हमारी पहचान होती है। हमारा व्यक्तित्व एक दिन किए गए कार्यों से नहीं बनता है, बल्कि ये बचपन से लेकर बड़े होने तक हर रोज अपने आस

0: आसपास, घर परिवार, स्कूल कॉलेज और समाज को देखकर ही बनता और संवरता है। बहनों, बच्चे का पहला स्कूल होता है उसका घर परिवार, और पहले शिक्षक होते हैं उसके माता पिता। बचपन में ही अपने घर में होने वाली सभी बातों को बच्चा सुनता और समझता है, और उसके आसपास का वातावरण ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। बच्चों का अपने बड़ों के साथ बातचीत करना, बड़ों को देखकर सच बोलना सीखना, गलतियों को किस प्रकार ठीक करना है, अपने बड़ों से आदरपूर्वक बात करके उनकी बातों को सुनना, सब कुछ बातें धीरे धीरे उम्र के साथ बच्चा अपने परिवार से सीखता जाता है। छोटे छोटे काम करने पर जब माता पिता उसका उत्साहवर्धन करते हैं तो बच्चे के अंदर आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है और वह खुद पर भरोसा करना भी सीखता है। बहनों, घर परिवार का साथ बच्चे को बिना डर के अपनी बात कहने का हौसला देता है, और अगर बच्चे ने कोई गलती की है तो उसके परिवार के सदस्यों को चाहिए कि वे उसे इस तरह से बताएं कि उसने गलती की है, और उसे ये भी समझाएं कि इसका हल किस तरीके से निकाला जा सकता है। इससे बच्चा गलतियों से न सिर्फ सीखता है बल्कि वह भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार होता है। बहनों, परिवार का साथ न सिर्फ व्यक्तित्व का विकास करता है बल्कि तनाव, असफलता या कोई कमी होने पर व्यक्ति को टूटने नहीं देता बल्कि उसे मानसिक बल प्रदान करता है और मुश्किल समय में उसके साथ खड़ा रहता है। बहनों, स्कूल कॉलेज चाहे कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां दे दें पर व्यक्तित्व का विकास मानवता, प्यार, आपसी समझ, परिवार में रहने से ही आती है। भावात्मक विकास सिर्फ परिवार में रहने से ही विकसित हो पाता है। बातें तो आपसे और भी होती रहेंगी, आइए लेते हैं एक अल्प विराम।
1: 20 से अधिक वर्षों का अनुभव, 20 से अधिक देशों में आयुर्वेद सेवा,
2: नारी परीक्षण, पंचकर्म चिकित्सा, नेत्र रोग, यूरेथरल स्ट्रक्चर और अल्सराइटिव कोलाइटिस का विशेष उपचार,
1: स्वनिर्मित आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ।
2: व्हाट्सएप 7895372936।
1: पूर्ण उपचार चाहिए तो मिलिए नारी वैद्य राहुल गुप्ता से। श्री विश्व प्रांगण आयुर्वेद, पुराना शिव मंदिर, मुखानी चौराहा, हल्द्वानी। शनिवार छोड़कर पूरे सप्ताह उपलब्ध।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: वेनु कार्यक्रम में समय हो चला है ब्यूटी टिप्स का। आज हम आपके लिए लाए हैं आपकी त्वचा की रंगत और चमक को निखारने वाला एक पैक। इसके लिए आपको चाहिए सिर्फ एक इंग्रेडिएंट और वो है साबुदाना। आपने एक चम्मच साबुदाना लेना है और इसे एक कप पानी में भिगो देना है। थोड़ी देर में साबुदाना फूलने लगेगा। अब इसे आधे कप पानी में डालकर गैस से थोड़ी देर पकाना है। जैसे ही ये पककर ट्रांसपेरेंट होने लगे, इसे आप आंच से उतार लीजिए और गर्मा गर्म छान लीजिए। थोड़ी देर ठंडा करने पर जब ये चिपचिपा सा पैक बन जाएगा, इसे अपने चेहरे पर लगाकर मसाज करें और इसको आपको हर अल्टरनेट डेज में लगाना है। आप देखेंगे इससे आपकी स्मूथ हो जाएगी स्किन और साथ में ग्लो भी करने लगेगी।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: तो बहनों, ये था आज का महिला जगत कार्यक्रम। अब अपनी सखी गीता राणा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी बहनें सुन रही थी उनका अपना कार्यक्रम महिला जगत FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे जिन्हें हम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने ये बात कही।
2: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल और इतिहास का हिस्सा बना रहना चाहता है या नहीं।
1: सेना प्रमुख की ये टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री की राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री अपने प्रवास के दौरान भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और वहां के प्रमुख व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगे। वहां हजारों भारतीय समुदाय के उपस्थित होने की उम्मीद है। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री की नीदरलैंड्स यात्रा का एक मुख्य आकर्षण होगा। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड्स संबंधों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड्स पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके आगमन पर पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपये से घटाकर 16.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। त्रिपुरा में कानून व्यवस्था सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके गठन के लिए 50 करोड़ रुपए का एकमुश्त वित्तीय अनुदान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए तक की राशि मंजूर की है। ये बटालियन साजो सामान और तैनाती के लिए मानक संघीय प्रोटोकॉल का पालन करेगी, उग्रवाद रोधी अभियानों और सीमा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगी। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जाँच कर रही है। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाके डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा और इसके अंतर्गत राज्य में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। जनगणना कर्मी मकानों के निर्माण में इस्तेमाल हुई सामग्री और उनमें उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित 33 प्रश्न पूछकर जानकारी एकत्र कर रहे हैं। राजस्थान में लगभग 15 लाख परिवारों ने स्वगणना सुविधा के माध्यम से अपनी जानकारी जमा करने का विकल्प चुना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में हुई तेज वर्षा और तूफान से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिनभर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी देहरादून है। प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने दून सिल्क ब्रांड की वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने के लिए ठोस विपणन योजना बनाने पर जोर दिया। नगर निगम अल्मोड़ा ने शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 में बेहतर रैंकिंग दिलाने के उद्देश्य से सफाई व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने की दिशा में नई पहल शुरू की। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में वृद्ध और दिव्यांग श्रद्धालुओं को मिलेगी प्राथमिक दर्शन की सुविधा। एसओपी जारी और किसानों, श्रमिकों और आम नागरिकों को भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए टिहरी में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को लेकर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन। प्रादेशिक समाचार के

0: साथ मैं आशुतोष उनियाल और अब समाचार विस्तार से। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून स्थित उत्तराखंड कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन लिमिटेड के सिल्क पार्क भवन मुख्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दून सिल्क रिटेल आउटलेट, रेशम वस्त्र बुनाई कार्यशाला, प्रशिक्षण केंद्र और कार्यालय का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही रेशम उद्योग से जुड़े बुनकरों और कारीगरों से संवाद कर उनकी समस्याओं, सुझावों और अनुभवों की जानकारी ली। सहकारिता मंत्री ने दून सिल्क ब्रांड की वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने के लिए ठोस विपणन योजना बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बुनकरों और कारीगरों को आधुनिक प्रशिक्षण, विपणन सुविधा सहित आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि उत्तराखंड के रेशम उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिल सके। डॉक्टर रावत ने कहा कि रेशम उद्योग स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार का महत्वपूर्ण माध्यम बनकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार रेशम उद्योग को बढ़ावा देने और इससे जुड़े बुनकरों और कारीगरों के हितों के संरक्षण के लिए लगातार कार्य कर रही है। नगर निगम अल्मोड़ा ने शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 में बेहतर रैंकिंग दिलाने के उद्देश्य से सफाई व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने की दिशा में नई पहल शुरू की है। स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रदेश स्तर पर करवाई जा रही रैंकिंग में सुधार और वरीयता के लिए निगम ने शहर के सभी 40 वार्डों में घर घर कूड़ा संग्रहण व्यवस्था लागू करने की तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए 150 पर्यावरण मित्रों सहित 13 सदस्यीय विशेष टीम गठित की गई है जो सफाई व्यवस्था को प्रभावी ढंग से संचालित करेगी। मेयर अजय वर्मा ने कहा कि अल्मोड़ा नगर को स्वच्छता सर्वेक्षण में विशेष स्थान मिले उसके लिए नगर निगम घर घर कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था कर रहा है। इसके लिए आमजन की सहभागिता भी सुनिश्चित की जा रही है।
1: नगर निगम ने ये तय किया है कि इसको प्रमुखता के साथ, बहुत ही ईमानदारी के साथ इस कार्य को हमने करना है, क्योंकि जब हमारा नगर स्वच्छ रहेगा तभी एक अपने शहर के प्रति एक अच्छा संदेश समाज के बीच में जाएगा और पूरे प्रदेश के अंदर में जाएगा। तो इसमें कुछ ऐसे बिंदु यहाँ पर को रखे हुए हैं कि एक हमने ये तय किया है कि डोर टू डोर का ये जो अभियान प्रारंभ करने वाले हैं ताकि हम नगर को स्वच्छ बनाने में अपनी ईमानदारी के साथ अपने इस कार्य को निभा सकें।
0: नगर निगम के मुख्य पर्यावरण पर्यवेक्षक राजपाल पवार ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण में नगर निगम को उत्कृष्ट स्थान मिले इसके लिए विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है।
2: अभी वर्तमान में स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है कि हमारा रैंकिंग बढ़ सके और हमारी रैंकिंग जैसे पहले से भी अच्छी आती रही और इससे इस वर्ष भी और अच्छी आ जाए। तो हमारे पर्यावरण मित्रों का और हम जितने पर्यावरण पर्यवेक्षक हैं, हमका यही प्रयास है कि नगर को एक और अति सुंदर बनाने में साफ सफाई नियमित रूप से की जा रही है। लगातार हमारे द्वारा नाले नालियों की सफाई बरसात से पहले की जा रही है। जहाँ जहाँ एकत्रित कूड़ा था, कहीं स्पॉट में काफी समय से कूड़ा एकत्रित था, उसको भी हमारे पर्यावरण मित्रों द्वारा हटाया जा रहा है।
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर कुमाऊं मंडल के शहरों में जल भराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए करीब 2043 करोड़ रुपए की व्यापक जल निकासी योजना तैयार की गई है। प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने मंडल के 14 शहरों के लिए तैयार प्रस्तावों की सचिवालय में समीक्षा की। बैठक में कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए और प्रस्तावित योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में पहले चरण में जल भराव से सर्वाधिक प्रभावित 10 शहरों को प्राथमिकता पर लेते हुए कार्य शुरू करने का निर्णय लिया गया। इनमें टनकपुर, बनबसा, खटीमा, रुद्रपुर, काशीपुर, गदरपुर, सितारगंज, हल्द्वानी और मालधन चौड़ सहित अन्य क्षेत्र शामिल हैं। प्रमुख सचिव ने सर्वाधिक प्रभावित इलाकों में पहले जल निकासी कार्य शुरू करने और सभी विभागों को आपसी समन्वय से मास्टर प्लान के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में यह भी तय किया गया कि पहले चरण के बाद शेष 4 शहरों को दूसरे चरण में शामिल किया जाएगा।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में वृद्ध और दिव्यांग श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन कराने के लिए प्राथमिक दर्शन सुविधा लागू करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में मंदिर समिति ने मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी कर दी है। समिति के

0: अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के निर्देश पर मुख्य कार्यधिकारी सोहन सिंह रांगड़ ने इसके लिए आदेश जारी किए। एसओपी के तहत 50-50 श्रद्धालुओं के 15 मिनट के 4 स्लॉट निर्धारित किए गए हैं, जिनमें केवल वृद्ध और दिव्यांग श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जाएंगे। इस व्यवस्था के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के श्रद्धालुओं को आधार कार्ड और पंजीकरण के आधार पर यह सुविधा दी जाएगी। दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए वास्तविक स्थिति का आकलन करने के बाद प्राथमिक दर्शन की अनुमति दी जाएगी। मंदिर समिति कार्मिक दर्शन में श्रद्धालुओं की सहायता करेंगे। किसानों, श्रमिकों और आम नागरिकों को भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए टिहरी में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस को लेकर जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल ने कहा कि एनपीएस योजना किसानों और असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भविष्य में आर्थिक सुरक्षा का मजबूत आधार है। उन्होंने लोगों से योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की।
1: जो नेशनल पेंशन स्कीम है जो लाई गई है सरकार के द्वारा, उसका जो मुख्य उद्देश्य है कि ना सिर्फ सरकारी कर्मचारी तक पेंशन सीमित है, परंतु हर एक व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसको जब वो कार्य करने में सक्षम नहीं रह जाता है उनके पड़ाव पे, तो उसके पास एक सोशल सिक्योरिटी के माध्यम से एक पेंशन का विकल्प हो, उसके संबंध में जागरूकता के रूप में कार्यशाला आयोजित की गई थी बैंक द्वारा। और हमारी यही कोशिश है कि हम अधिक से अधिक व्यक्तियों को इसके बारे में जानकारी दें, ताकि वो आज जब वो यंग हैं और अपने काम करते हैं उसी टाइम से वो इन्वेस्टमेंट शुरू करें इस स्कीम में, और जब वो 60 साल से ज्यादा आयु के हो जाते हैं, जब वो काम करने में उतने सक्षम नहीं रहते, तो उनके पास एक फिक्स आयु का साधन हो पेंशन के रूप में।
0: वहीं लीड बैंक प्रबंधक मनीष मिश्रा ने बताया कि एनपीएस एक दीर्घकालिक निवेश योजना है, जिसमें कम निवेश से शुरुआत कर भविष्य के लिए पेंशन निधि तैयार की जा सकती है। कार्यशाला में बड़ी संख्या में किसानों, महिलाओं और स्थानीय लोगों ने भाग लेकर एनपीएस योजना की जानकारी हासिल की और इसे भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए उपयोगी बताया।
2: जो ये सरकार द्वारा एनपीएस योजना चलाई गई है, ये बहुत बढ़िया योजना है जो कि किसानों के लिए बहुत अच्छी है, जिसमें कि हम 250 रुपए से खाता खोल सकते हैं और कम से कम 10 रुपए जमा कर सकते हैं, जो कि सभी लोग कर सकते हैं, जितना हमारी सामर्थ्य है उतना इसमें जमा कर सकते हैं।
0: चारधाम यात्रा को लेकर कुमाऊं मंडल में भी परिवहन विभाग पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य किया गया है। कुमाऊं संभाग के परिवहन अधिकारी गुरदेव सिंह ने बताया कि चारधाम यात्रा में शामिल होने वाले सभी व्यावसायिक वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड जारी किए जा रहे हैं।
3: चारधाम यात्रा के लिए व्यावसायिक वाहनों में सवारी गाड़ी के लिए ग्रीन कार्ड होना आवश्यक है। ग्रीन कार्ड जारी करने से पूर्व वाहन का परीक्षण किया जाता है। वाहन के परीक्षण होने और वाहन के प्रपत्र कंप्लीट होने के उपरांत और चालक का लाइसेंस व्हील एंडोर्समेंट होने के पश्चात उसको ग्रीन कार्ड जारी किया जाता है। हल्द्वानी संभाग के अंतर्गत जो 5 ऑफिस है उसमें जो वर्तमान समय तक 498 जो है ग्रीन कार्ड जारी किए जाते हैं।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दून सिल्क ब्रांड की वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने के लिए ठोस विपणन योजना बनाने पर जोर दिया। नगर निगम अल्मोड़ा ने शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 में बेहतर रैंकिंग दिलाने के उद्देश्य से सफाई व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने की दिशा में नई पहल शुरू की। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में वृद्ध और दिव्यांग श्रद्धालुओं को मिलेगी प्राथमिक दर्शन की सुविधा। एसओपी जारी और किसानों, श्रमिकों और आम नागरिकों को भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए टिहरी में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को लेकर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

आग और शोला। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और मनहर उदास की आवाज में। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, जिसे लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीतबद्ध किया है रवि ने, और फिल्म का नाम है अमानत।

कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं अलबेला फिल्म से, आवाजें हैं अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की। इस गीत को संगीतबद्ध किया है जतिन ललित ने।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। अब आप सुनेंगे क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति।
1: आकाशवाणी समाचार देहरादून से हर सप्ताह प्रसारित कार्यक्रम उत्तराखंड विशेष में आपका स्वागत है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं उत्तराखंड से जुड़े किसी खास विषय पर। इसी कड़ी में आज बात आपदा प्रबंधन के साथ सुरक्षित चारधाम यात्रा पर। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग सचिव विनोद कुमार सुमन, और आपसे बात कर रही हैं हमारी सहयोगी रेणु प्रीति पंत।
2: नमस्कार, मैं रेणु प्रीति पंत, और आज हम बात करने जा रहे हैं आपदा प्रबंधन के साथ सुरक्षित चारधाम यात्रा पर। दरअसल चारधाम यात्रा आस्था का एक बड़ा केंद्र है, लेकिन बरसात के मौसम में यही यात्रा चुनौती बन जाती है। उत्तराखंड में अचानक मौसम बदलना, भूस्खलन आना और बादल फटना, इस तरह की घटनाएं अक्सर देखी जाती है और आपदा का खतरा ऐसे में बन जाता है। लेकिन प्रशासन का दावा है कि इस बार तैयारियां पूरी हैं, लगातार बैठकें की जा रही हैं, रणनीतियां बनाई जा रही हैं और जमीनी स्तर पर जाकर भी मॉक ड्रिल के जरिए सिस्टम को परखा जा रहा है। ऐसे में पूरी तैयारियों को जानने के लिए आज हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान

0: पता है हमारे आर्थिकी की रीढ़ है चारधाम यात्रा, और चारधाम यात्रा में अकेले आपदा प्रबंधन विभाग शामिल नहीं होता है, इसके साथ जिला प्रशासन और जितने विभाग हैं हमारे, चाहे वो लोक निर्माण विभाग हो, चाहे बीआरओ हो, स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति, परिवहन विभाग, पशु चिकित्सा विभाग और बहुत सारे विभाग के साथ मिलकर हम लोग काम करते हैं। आयुक्त गढ़वाल मंडल इसके मेन आयोजक होते हैं, उनके नेतृत्व में ये पूरा यात्रा चलती है। इसके लिए जो लोग यात्रा पे आना चाहते हैं अपना पंजीकरण करा लें, पंजीकरण कराने के बाद उनको अपना जिसे जाना चाहते हैं रेट के साथ में, फिर अपनी यात्रा वो शुरू कर सकते हैं हरिद्वार से, ऋषिकेश से, फिर रास्ते जाते हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी की यात्रा होती है। इसमें विभागों के लिए अलग अलग कार्य बांटे गए हैं, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट जगह जगह अपने चेक पोस्ट अपना ये कैंप लगाता है हेल्थ चेकअप के लिए, परिवहन विभाग सुरक्षित यात्रा के लिए गाड़ियों को ग्रीन पास देता है, गाड़ियों की रेगुलर चेकिंग होती रहती है, टास्क फोर्स उनकी होती है, वो देखती रहती है कोई गाड़ी अवैध तो नहीं जा रही है, ओवरलोड तो नहीं जा रही है, बहुत रैश ड्राइविंग तो नहीं कर रहे हैं। पशु चिकित्सा विभाग जो हमारे घोड़े खच्चर चलते हैं यात्रियों को ले जाने के लिए, जहाँ पैदल यात्रा है यमुनोत्री और केदारनाथ, वहाँ के लिए चलते हैं। आपदा प्रबंधन विभाग जब कोई आकस्मिक स्थिति बनती है तो उसको फिर जैसे रास्ता बंद हो गया, कहीं कोई बरसात की संभावना बन गई, लोगों को रोकना है, रेस्क्यू करना है, कोई घायल हो गया, कहीं लोग फंस गए, उनको रेस्क्यू करना है, उतारना, उस तरह से काम करता है। SDRF NDRF की हमारी टीमें होती हैं, हम लोग स्थान स्थान पर उनको रखे रहते हैं ताकि न्यूनतम समय में वो जगह तक पहुंच सकें। इसके लिए यात्रा को कई सेक्टर में, जहां पैदल यात्रा होती है कई सेक्टर में बांटा गया है। जिला प्रशासन का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, पुलिस प्रशासन का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, जगह जगह हमारे कैमरे लगे हुए हैं, उससे हम निगरानी करते रहते हैं कंट्रोल रूम के माध्यम से।
1: बिल्कुल, यानी कि तैयारियां पूरी व्यापक हैं।
0: बिल्कुल,
1: आपके अनुभव से जब चारधाम यात्रा चलती है तो सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? मौसम होता है, भीड़ होती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी जिले हैं, या संसाधनों की कमी होती है?
0: देखिए, मौसम निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन अगर यात्री अपने मोबाइल में सचेत ऐप, हमारा भारत सरकार का डेवलप किया गया ऐप है, अगर डाउनलोड कर लें तो उनको समय से मौसम के बारे में पूरी जानकारी मिलती रहती है। हम लोग अन्य माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, और भी माध्यम है, लगातार लोगों को बताते रहते हैं मौसम के बारे में। लेकिन अगर सचेत ऐप डाउनलोड है यात्री के मोबाइल में, तो उनको सचेत ऐप के माध्यम से लगातार मौसम का अपडेट मिलता रहता है और अपनी यात्रा को वो तदनुसार प्लान कर सकते हैं बिना विघ्न, बिना किसी बाधा के। तो निश्चित रूप से, और आजकल यात्रा में भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो भीड़ प्रबंधन निश्चित रूप से एक चुनौती है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है विभागों को, बड़ा स्पष्ट निर्देश है कि सब लोग अपना पूरी क्षमता के साथ काम करेंगे, और उस तरह से विभाग के अधिकारीगण जो भी हैं सब बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और अभी तक सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज है, आपदा प्रबंधन की दृष्टि से भी, भीड़ प्रबंधन की दृष्टि से भी और अन्य दृष्टि से भी, अभी तक फ्लॉलेस पूरी तरह से अच्छे तरीके से यात्रा चल रही है। जी
1: बिल्कुल, यहाँ पे मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि यदि आप चारधाम यात्रा में आ रहे हैं तो अपने फोन में सबसे पहले सचेत ऐप को डाउनलोड जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप के जरिए आपको जो उत्तराखंड का मौसम कैसा रहने वाला है, चारों धामों में किस तरीके का मौसम रहने वाला है, उसकी पहले ही जानकारी मिल जाएगी, ताकि आपकी यात्रा भी सुरक्षित रह सके। आपसे यहाँ पे सर हम ये जानना चाहेंगे कि उत्तराखंड में कौन कौन से ऐसे संवेदनशील क्षेत्र हैं जहाँ पे ज्यादा चिंता की बात है, और वहाँ पे क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं?
0: देखिए, जैसे मैंने सचेत ऐप के बारे में बताया, अगर सचेत ऐप है तो आपको उत्तराखंड में भी आपके साथ आपका सहयोग करेगा, आपको जानकारी देता रहेगा। इसके अलावा देश के किसी कोने में आप रहेंगे वहाँ भी मौसम के अपडेट्स लगातार मिलते रहते हैं। आमतौर पर उत्तराखंड पूरा का पूरा पूरी तरह से सुरक्षित है, किसी प्रकार से कहीं भी खतरे की कोई संभावना नहीं है। लेकिन मानसून अवधि में जब बरसात बहुत अधिक होती है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम लोग बादल फटना कहते हैं, बादल फटने की घटना जब होती है तो बहुत कम समय अंतराल पर बहुत अधिक बरसात हो जाती है, तो उससे भूस्खलन का खतरा थोड़ा सा बढ़ जाता है, रास्ते कहीं कहीं बाधित होते हैं। उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी के

0: निर्देशन में उनके स्पष्ट आदेश हैं कि जहां जहां आवश्यकता है पर्याप्त मात्रा में जेसीबी मशीनें और मैन पावर रखे जाएं, तो जब कभी रास्ता बंद होता है तो हम लोग बिना समय गंवाए रास्ता बंद होने के तत्काल बाद खोलने की कार्रवाई कर देते हैं। तो थोड़ी सी दिक्कत लोगों को, यात्रियों को होती है, रास्ता कुछ देर के लिए बंद होता है तो उस अगर लंबे समय तक यात्रा बंद रहा तो उनको हम लोग खाने पीने के पैकेट भी रखते हैं
1: जी।
0: अगर लंबी अवधि के लिए हुआ तो हम लोग नाइट शेल्टर्स सब जगह चिन्हित किए हुए हैं
1: जी।
0: वहाँ पर हम लोग लोगों को रहने की खाने की व्यवस्था कराते हैं। कुल मिलाकर चारधाम यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित है, सावधानी थोड़ी सी बरती जाए तो किसी प्रकार का कोई खतरा कहीं भी नहीं है
1: जी। बिल्कुल, क्या इस बार कोई नई तकनीक या कोई नया सिस्टम लगाया गया है चारधाम यात्रा में और ज्यादा सुरक्षित से करने के लिए?
0: लगातार जो भी मॉडर्न टेक्निक हैं उसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तैयारियां हमारी पहले से काफ़ी हद तक पूरी थी, इसके साथ साथ हम लोगों ने जागरूकता पे बहुत जोर दिया है। इस बार लगातार हमने मॉक ड्रिल कराए हैं, अब तक हमारा लगभग पिछले 1.5 सालों में 10 बार मॉक ड्रिल हमने करा लिया है चारधाम यात्रा के साथ में के लिए और अन्य तैयारियों के लिए, जिसमें जितने डिपार्टमेंट्स हैं सबको शामिल किया हुआ है हमने, जितनी टेक्निक्स है उसको हमने अपनाया है। इसके अलावा भारत सरकार ने एक बड़ा काम किया है, अभी एक सेल्फ ब्रॉडकास्ट का सिस्टम आ गया है, तो सेल्फ ब्रॉडकास्ट के माध्यम से अब जब किसी क्षेत्र विशेष में किसी प्रकार के आपदा की संभावना हो या अतिवृष्टि की संभावना हो, बादल फटने की संभावना हो या लैंडस्लाइड की संभावना हो या ऐसा कोई सेंसिटिविटी अगर बनती है या भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है
1: जी।
0: तो ऐसी स्थिति में हम लोग उस क्षेत्र विशेष के लिए जहाँ के लिए चाहें उस क्षेत्र विशेष के लिए हम लोग सेल ब्रॉडकास्ट के माध्यम से एक संदेश प्रसारित कर सकते हैं। जिस क्षेत्र का हम चयन करेंगे उस क्षेत्र में जितने टेलीफोन टावर हैं और उस टेलीफोन से कनेक्टेड, टेलीफोन टावर से कनेक्टेड जितने टेलीफोन हैं किसी भी कंपनी के हों, सभी पे पॉपअप मैसेज आएगा, बीप की आवाज़ करेगा और मैसेज पढ़ने में रहेगा। मैसेज को हम जिस भाषा में चाहे उस भाषा में भेज सकते हैं, मैसेज को हम लोग कस्टमाइज करते हैं और उसके बाद भेज देते हैं। और मैसेज के बाद अगर किसी का मैसेज मिट जाए तो सेटिंग्स में जाकर उसको देखा जा सकता है, नोटिफिकेशन हिस्ट्री में जाके देखा जा सकता है उसको। तो एक बहुत बड़ा काम भारत सरकार ने किया है, हमें जहाँ भी राज्य में आवश्यकता होगी, ये पूरे देश के लिए लागू किया गया है। अभी 2 मई को नई दिल्ली में भारत सरकार ने लॉन्च किया है
1: जी।
0: ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, एक बड़ा उपकार है हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए भारत सरकार का कि इतना बड़ा सौगात हमको दिया है। इसके माध्यम से जहां भी हम खतरा देखेंगे वहां हम सेल ब्रॉडकास्ट के माध्यम से जो संदेश लोगों के पास देना चाहें दे देंगे, तो लोगों को सबको जानकारी मिल जाएगी और समय रहते लोग सावधानी बरत सकेंगे और किसी प्रकार के खतरे से बच सकेंगे।
1: बिल्कुल, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे दी गई है आपके द्वारा। आपने अभी मॉक ड्रिल का जिक्र किया था, कई बार मॉक ड्रिल कराई गई है, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस मॉक ड्रिल में कितनी एजेंसियों को शामिल किया जाता है और क्या इसके अलावा जो स्थानीय व्यापारी हैं, ढाबा संचालक हैं, जो रेस्टोरेंट संचालक है, क्या उन्हें भी ट्रेनिंग दी जाती है? क्योंकि जिस टाइम पे आपदा आती है, कोई घटना घटित होती है, तो वो लोग भी वहाँ पे मौजूद होते हैं
0: जी। आपने 2 बातें कही हैं, एक तो आपने कहा मॉक ड्रिल के बारे में कौन कौन से विभाग शामिल रहते हैं, तो मॉक ड्रिल में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग, लोक निर्माण विभाग, PMGSY, पेयजल, बिजली और हमारा पशु चिकित्सा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, इसके साथ साथ हम लोग पैरामिलिट्री फोर्सेज हमारे हैं उनको, NDRF के लोगों को, SDRF के लोगों को, आर्मी के लोगों को और आसपास जो भी और विभाग हैं यात्रा से जुड़े हुए उनको जोड़ते हैं, उनको जोड़ते हुए हम लोग डिटेल में जाकर हम लोग एक जिले में कई तरह के सिनेरियो क्रिएट करते हैं कि यहाँ ये आपदा आई है तो उसमें देखते हैं कि विभागों की तैयारियों का स्तर क्या है, विभाग को क्या क्या करना चाहिए था, ये विभाग को बाकायदे कई बार बताया जा चुका है। फिर जब हम आपदा की संभावना ऐसे बनाते हैं, ऐसे कोई माहौल क्रिएट करते हैं कि ये आपदा आपके यहाँ आई है, आपके यहाँ बाढ़ आ गई है, आपके यहाँ लैंडस्लाइड हुआ है, तो आप किस तरह से काम करेंगे, तो हम देखते हैं उनका रिएक्शन क्या रहता है, किस तरह से डिपार्टमेंट के अधिकारी रिएक्ट करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, फिर उसको हम लोग फॉलो करते हैं, फिर जो कमियाँ होती हैं मॉकड्रिल के बाद हम लोग डीप ब्रीफिंग करते हैं, फिर उनको बताते हैं कि देखो आपके मॉकड्रिल में आपने ये अच्छा काम किया, ये आपका नॉर्मल था और ये आपके अंदर कमियाँ थी, ये आपकी त्रुटियाँ थी या इसमें सुधार की आवश्यकता है, जैसी स्थिति होती है हम लोग बताते हैं, फिर विभाग अगले मॉक ड्रिल में उसकी तैयारी किए रहते हैं और हम लोग लोगों को इस तरह से जागरूक करते रहते हैं, विभागीय अधिकारियों को। इसके साथ साथ हम लोग एक जन जागरूकता कार्यक्रम भी चलाते हैं
1: जी।
0: जैसे 2025-26 में हम लोगों ने एक साल में लगभग 1,19,000 लोगों को जागरूकता में शामिल किया
1: जी।
0: हमारे मास्टर ट्रेनर होते हैं, हमारे SDRF NDRF के जवान होते हैं, हमारे विभागीय अधिकारी होते हैं, ये स्कूल में बच्चों के बीच में जाकर व्यापार मंडल के साथ मिलकर बाजार में जाकर यात्रा रूप में जाकर 50-60-100 लोगों को एकत्रित करते हैं
1: जी।
0: या जहाँ स्कूल में गए वहाँ बच्चे जो हैं उनके बीच में जाकर आपदा के विभिन्न पहलुओं के बारे में उनको डिटेल से बताते हैं, आपदा क्यों आती है, कैसे आती है, आपदा आने के बाद किस तरह से सावधानी बरती जानी है, सचेत ऐप का इस्तेमाल कैसे करना है, किस प्रकार से हमको मौसम का पूर्वानुमान मालूम हो जाता है 3-4 दिन पहले कि ये आपदा इस तरह से बरसात होने की संभावना है, कैसे हम बचाव करेंगे, डिटेल में बताया जाता है उनको। इसके अलावा जो अभी हम सचेत ऐप के माध्यम से जो हम लोग लोकल जारी करते हैं अलर्ट्स, हमारा अलर्ट लगभग जो हम 3 घंटे पहले जारी करते हैं, वैसे तो हम लोग 1 हफ्ते का जारी करते हैं, फिर 24 घंटे का, फिर 3 घंटे का भी नाउकास्ट में जारी करते हैं। जो 3 घंटे का अलर्ट हमारा है, हमें बताने में काफ़ी प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार के सहयोग से और IMD के सहयोग से जो हम लोग जारी करते हैं अलर्ट, वो लगभग 90% तक सही होता है।
1: ये बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल
0: बहुत सही होता है, सटीक होता है। अगर उस बीच में लोग जो इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं अगर उसका पालन कर लें तो किसी प्रकार से कोई खतरा हो ही नहीं सकता, सब लोग सुरक्षित रहेंगे और यात्रा पूरी तरह सुरक्षित रहेगी, लोग सुरक्षित रहेंगे, कोई खतरे की संभावना नहीं रहेगी।
1: बिल्कुल, यानी कि यहाँ पे सचेत ऐप के द्वारा जो मोबाइल में अलर्ट आता है, यदि आप उसको सही से देखें, समझें और वहीं पे रुक जाएं, तो कई हद तक जो यात्रा के दौरान चुनौतियां देखी जाती, जो घटनाएं घटित होती हैं, उससे बचा जा सकता है, यात्रा काफी सुरक्षित रह सकती है। यहाँ पे हमने बात की यात्रा से 3 घंटे पहले मिलने वाले अलर्ट की, यदि मौसम खराब होता है तो। लेकिन कभी कभार यदि भूस्खलन आ गया या बादल फट गया, उस स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन कितनी तेजी से होता है और यात्रियों की मदद कैसे की जाती है?
0: देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा प्रयास होता है कि 10 मिनट के अंदर अंदर हमारी टीमें मौके से रवाना हो जाएं। पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण ट्रेवल टाइम काफ़ी अधिक होता है, तो उससे बचने के लिए हम लोग पूरे राज्य को कई सेक्टर में बांटा हुआ है और पूरे राज्य में कई स्थानों पर NDRF SDRF के लोगों को हम तैनात करते हैं और जिला प्रशासन के हमारे आपदा मित्र, युवा आपदा मित्र भी तैनात रहते हैं, तो उनके माध्यम से हम लोग जब भी कोई आपदा की स्थिति बनती है, लैंडस्लाइड की स्थिति बनती है, रेस्क्यू वाला काम हमारे ये लोग करते हैं
1: जी।
0: उसके अलावा जहाँ लैंडस्लाइड की संभावना होती है, वो लैंडस्लाइड वाले स्थान पे आसपास JCB मशीनें और मैन पावर हमारे पहले से तैनात रहते हैं। जैसे आज घटना घटी है तो हमारा प्रयास होता है कि 1-1.5 घंटे के अंदर वहाँ हम मलबा साफ कर लें। डिपेंड करता है मलबा कितना है, अगर मलबा कम है तो हम 1 घंटे के अंदर साफ कर पाते हैं, ज्यादा मलबा है तो हमारा काम तो 10-15 मिनट में शुरू हो जाता है। हम चाहते हैं बिना विलंब के रास्ते को खोलने का काम करें। अब उसमें जो यात्री फंस जाते हैं उनके लिए हम लोग जैसी आवश्यकता होती है, अगर 1-2 घंटे के लिए हुआ तो हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों को पानी की बोतल, बिस्किट वगैरह मिल जाए, अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको दूध वगैरह की व्यवस्था करते हैं। थोड़ा सा और समय तक अगर रुकना पड़ता है तो हम लोग खाने के पैकेट भी देते हैं, और अगर ज़्यादा लंबा समय हो गया वहाँ रुकने के कोई स्थान नहीं है तो हम लोग डिजास्टर शेल्टर, जैसे आपने बताया कि शेल्टर हमने चिन्हित किए हुए हैं, वहाँ लोगों को ले जाते हैं, वहाँ खाना खिलाना रहने की व्यवस्था, वहाँ बिजली पानी शौचालय सब रहता है, वहाँ हम व्यवस्था करते हैं उनके लिए। इसके साथ साथ हम लोगों ने एक चीज़ और किया है इस बार कि तहसील लेवल पर क्विक रिस्पॉन्स टीमें बनाई हैं हमने। हर तहसील में ये टीमें बनाई जा रही हैं, लास्ट ईयर से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर यह शुरू हुआ था। क्विक रिस्पॉन्स टीमों में 4 विंग होते हैं प्रमुख रूप से, एक होता है रेस्क्यू रिलीफ की टीम होती है जो राहत बचाव के काम करती है, दूसरी टीम होती है जो रिकवरी रिकंस्ट्रक्शन के काम करती है
1: जी।
0: दूसरी टीम जो क्षति हुई है उसको ठीक करने का काम करती है, तीसरी टीम राहत बांटने के लिए, जो धनराशि बांटने, किसी का डैमेज हो गया, किसी की कोई घायल हो गया, किसी की डेथ हो गई, किसी का मकान टूट गया, तो उसमें जो डैमेजेस होते हैं उसका आकलन करती है, उनको धनराशि प्रदान करती है और उसके साथ अकाउंटिंग वगैरह टीम का काम करती है, और चौथी टीम जो होती है उसमें QRT में वो जन जागरूकता कार्यक्रम चलाती है, लोगों को आपदा से बचाव के लिए काम करती है
1: जी।
0: पहले आपदा प्रबंधन विभाग रिएक्टिव मोड में काम करता था, आपदा के बाद उसका काम शुरू होता था, अभी हम लोग साल भर काम करते हैं, हम लोग प्रोएक्टिव होकर काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ अपनी तैयारी को बढ़ाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जो भी उपकरण की आवश्यकता है हम लोग उसको ध्यान में रखते हुए उपकरण को क्रय कर रहे हैं, उपकरण के संचालन का, जो हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं उसको संचालन का लोगों को लगातार अभ्यास करा रहे हैं
1: जी।
0: ताकि आपदा की स्थिति में किसी प्रकार से कोई समय ना हमारा वेस्ट हो और हम बेहतर तरीके से काम कर पाएं।
1: बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके द्वारा यहाँ पे दी जा रही, ताकि हर यात्री की यात्रा सुरक्षित रहे, उसके लिए कैसे आपदा प्रबंधन विभाग लगातार तैयारियां करता है, बैठके करता है, रणनीतियां बनाता है, वो यहाँ पे जानकारी दी जा रही है। कुछ लोग सर जो है हेलीकॉप्टर से भी यात्रा करते हैं, तो उनके लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा क्या दिशा निर्देश होते हैं, और यदि कोई घटना घटित हो जाती है तो फिर हेलीकॉप्टर रेस्क्यू या फिर इमरजेंसी निकासी के लिए क्या पर्याप्त व्यवस्थाएं रहती हैं?
0: देखिए, केदारनाथ जी की यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सर्विसेज हैं
1: जी।
0: जो गुप्तकाशी सोनप्रयाग के आसपास से ऊपर जाते हैं, सिरसी से केदारनाथ के लिए। हेलीकॉप्टर यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित रहती है
1: जी।
0: लास्ट ईयर कुछ घटनाएं जरूर घटी, तो उन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के स्तर से और यूकाडा के स्तर से और नागरिक उड्डयन विभाग की ओर से लगातार कई बैठकें की गई और कुछ उसकी SOP बनाई गई, उसके बाद उसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया गया। तो इस बार ऐसी कोई घटना नहीं घटी है
1: जी।
0: संभावना भी कम है। जब मौसम खराब होता है तो हेली ऑपरेशन को तत्काल रोक दिया जाता है। पहले हम लोग उतना कड़ाई से सख्ती नहीं कर पाते थे, इस बार सख्ती से निर्देश दिए गए हैं शासन के द्वारा कि रोका जाए। केदारनाथ जी का वैली ऐसी है कि वो अभी मौसम साफ है और 5 मिनट के बाद व्यवस्था पूरा पैक हो जाए
1: जी।
0: तो ऐसे में बड़ा खतरनाक हो सकता है अगर हम लोग लगातार मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, तो वो लगातार बढ़ाई गई है। अब कोई खतरे की संभावना फिलहाल अभी नहीं रह गई है, क्योंकि लगातार उसमें कई कैमरे हमने लगा दिए हैं रास्ते में, तो उससे भी हम निगरानी करते रहते हैं। जब मौसम खराब होता है तो यात्रा को रोक दिया जाता है। शॉर्टेज पहले बहुत सारी थी, उसको कम किया गया है, उसमें 30% तक की कटौती की गई है। तो उसके कटौती करने के कारण जो लगातार भागम भाग होता था, बहुत तेजी से बहुत रस करते थे हेलीकॉप्टर कंपनी वाले, उसमें काफी हद तक विराम लगाया गया है, तो उसमें अब कोई समस्या नहीं रह गई है। अगर कोई आदमी घायल हो जाता है या आपदा की स्थिति में कहीं से एयर इवैक्यूएशन करना पड़ता है, तो हम बताना चाहते हैं कि हमारे पास एक हेलीकॉप्टर साल भर के लिए आपदा प्रबंधन विभाग हमारा उत्तराखंड गवर्नमेंट का और उत्तराखंड का जो यूकाडा है जो हेलीकॉप्टर ऑपरेशन कराता है, हम दोनों ने मिलकर एक हेलीकॉप्टर साल भर के लिए रखा है जो यूकाडा के डिस्पोजल पर रहता है। और जब भी किसी जिलाधिकारी को या किसी विभाग को या ऐसी कोई वहाँ से सूचना आती है कि वहाँ पे हेली रेस्क्यू करना है, इवैक्यूएट करना है, कोई घायल हो गया, एक्सीडेंट हो गई, कोई ऐसी घटना घट गई, तो तत्काल हम लोग इवैक्यूएट करते हैं
1: जी।
0: तो हमारा 24 घंटे तैयार रहता है हेलीकॉप्टर। उसके साथ साथ मानसून अवधि में एक हेलीकॉप्टर और हम लोग रखते हैं
1: जी।
0: जो चूंकि मानसून अवधि में ऐसी घटनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं जहाँ पे लोगों के पत्थर से गिर के घायल हो गए या कहीं चोट लग गई, चलते चलते गिर गए कहीं, तो उस सब को देखते हुए हम लोग एक हेलीकॉप्टर और रखते हैं। इसके साथ साथ हेल्थ डिपार्टमेंट एम्स ऋषिकेश के सहयोग से एक हमारा एयर एम्बुलेंस भी है
1: जी।
0: उसके माध्यम से भी इमरजेंसी में हम लोग इवैक्यूएट करते हैं और एम्स ऋषिकेश में उसका इलाज कराते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और जैसे अभी धराली में आपदा आई थी लास्ट ईयर, तो हम लोग ऐसी जब बड़ी आपदा आती है तो हम लोग एयरफोर्स की मदद भी लेते हैं और अन्य जो हेली ऑपरेटर है उनकी मदद लेते हैं। जैसे जब धराली आपदा आई थी तो 9 प्राइवेट हेलीकॉप्टर हम लोग लगाए थे आपदा से रेस्क्यू करने के लिए लोगों का, 2 चीनूक हेलीकॉप्टर, 2 MI-17 हेलीकॉप्टर, 2 चीता हेलीकॉप्टर और ALS लगाए थे। तो कुल मिला के 9 हेलीकॉप्टर प्राइवेट, 4 एयरफोर्स के, 13 2 और हेलीकॉप्टर, तो 14-15 हेलीकॉप्टर लगाए थे जो लगातार ऑपरेशन किए। 550 सॉर्टी किया हम लोगों ने बहुत ही कम अंतराल में और सभी को सुरक्षित निकाला। तो उत्तराखंड में जैसा कि हमने कहा कि हम लोग प्रोएक्टिव होकर काम कर रहे हैं, तो हमें कहीं समय नहीं गंवाना पड़ता
1: जी।
0: हमारी SOP क्लियर है, इंस्ट्रक्शन सभी को क्लियर है, जब भी ऐसी आवश्यकता होती है तत्काल हम लोग अगर हेली रेस्क्यू करना है तो बिना समय गवाए हेली रेस्क्यू शुरू कर देते हैं और तत्काल लोगों को जीवन बचाने में सहयोग करते हैं।
1: बिल्कुल सर, आपने पिछली बार की थराली आपदा का भी यहाँ पे जिक्र किया है और उत्तराखंड में हर साल छोटी से लेकर बड़ी तक आपदाएं आती रहती हैं, तो क्या कुछ बड़ी सीख आपने ली है कि इस बार अगर ऐसा कुछ होता है तो तुरंत बचाव कार्य किए जाएंगे?
0: देखिए, उसका जो बहुत बड़ा काम किया हम लोगों ने, लगातार लोगों को जागरूक करने का काम किया कि ऐसी स्थिति बनती क्यों है
1: जी।
0: तो उसमें एक काम तो हम लोगों ने ये किया कि ऐसे कितने स्थान उत्तराखंड में हो सकते हैं जो धराली जैसी पोजीशन पे हैं, जहाँ ऊपर कोई गधेरा या इस तरह से कोई ऊपर ढलान सी जगह है, स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बना हुआ है और नीचे आबादी है, अगर ऊपर से गधेरे से पानी बहुत अधिक मात्रा में आएगा या बरसाती नदी का रूप या ऐसे कुछ स्ट्रक्चर है जहाँ बहुत अधिक पानी की संभावना आने की है और नीचे आबादी है, तो आबादी वाले क्षेत्रों में जाकर हम जागरूकता के कार्यक्रम चला रहे हैं, ऐसे क्षेत्रों की पहचान कर रहे हैं जहाँ जहाँ खतरा है, उसका हमने सेटेलाइट इमेजरी के माध्यम से अभी 3 जनपदों का हमने काम शुरू कर दिया है, उत्तरकाशी जनपद का, चमोली जनपद का और पिथौरागढ़ जनपद का। तो ऐसे 50 के आसपास हमने स्थान छांटे हैं जहां खतरे की संभावना बन सकती है। तो उन स्थानों के डिटेल्स हमने जिलाधिकारी के साथ बैठक करके उनको दिखाया है पूरा, और उसमें जिलाधिकारी से ये कहा गया है कि ड्रोन से सर्वे कराकर, ऊपर डिटेल में सर्वे करा के, अभी सेटेलाइट से देखा है हमने, ड्रोन से सर्वे करा के एक एक साइट का पूरा डिटेल स्टडी कर लें और कहाँ पे खतरे की संभावना है, जहाँ खतरे की संभावना है वहाँ जन जागरूकता कार्यक्रम अपने स्तर पर भी चलाएं। इसके साथ साथ वहाँ पे सिविल वर्क क्या किया जाना है, कैसे हम रिटेनिंग वाल या ऐसे स्ट्रक्चर या कुछ हम कुछ ऐसा चीज बनावें ऊपर के क्षेत्र में लगातार जिगजैग में, ताकि पानी जब ऊपर से आता है तो पानी की गति कम हो सके और नीचे आते आते पानी की गति एकदम से कम हो जाए, ताकि आबादी को, लोगों को या स्ट्रक्चर को कोई खतरा ना हो, उसके हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं।
1: जी बिल्कुल। और जो यात्री इस चारधाम यात्रा में आ रहे हैं उनसे और क्या कुछ, जो उनकी सेफ्टी की गाइडलाइंस हैं वो जारी की गई हैं, क्या कुछ आप उन्हें बताना चाहेंगे?
0: जैसा कि हमने शुरू में कहा कि चारधाम यात्रा पे जो लोग आ रहे हैं उनसे पहला निवेदन करूंगा कि रजिस्ट्रेशन करा के आवें, ताकि उनकी संख्या के बारे में हमारे सिस्टम को पता रहे कि इतने लोग इस दिन यात्रा कर रहे हैं, ताकि उसके अनुरूप हम लोग तैयारी कर सकें। व्हीकल जो है उसकी टेस्टिंग बाकायदे करके आवें, व्हीकल में किसी प्रकार की कोई खराबी ना हो उसको मेंटेन कर लें, सचेत ऐप डाउनलोड कर लें। सचेत ऐप डाउनलोड करने से उनको मौसम के बारे में लगातार अपडेट मिलते रहेंगे, और यह चारधाम यात्रा से वापस जाने के बाद भी देश के जिस कोने में भी जाएंगे कभी वो भविष्य में भी उनको लगातार अपडेट मिलते रहेंगे, तो खतरे से वो अपने आप को बचाव कर सकेंगे। इसके अलावा एक बड़ी चिंताजनक स्थिति है कि आदमी बहुत जल्दी में रहते हैं, पहाड़ जल्दीबाजी में चलने के लिए नहीं है, पहाड़ में प्राकृतिक सुंदरता इतनी ज़्यादा है, सब जगह आपको नेचुरल लैंडस्केप मिलेगा, अद्भुत नज़ारे मिलेंगे। लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जब पहाड़ पर यात्रा करने आ रहे हैं तो थोड़ा समय लेके चलें, प्रकृति का आनंद लें, एक दिन में कोशिश करें कि 6 से 7 घंटे चलें, उससे अधिक न चलें। अगर वो ऊंचाई वाले स्थान पर जा रहे हैं तो ऊंचाई वाले स्थान पर, जैसे दिल्ली का टेम्परेचर इस समय करीब 35 डिग्री के आसपास चल रहा है, अगर कोई केदारनाथ जी जा रहे हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री चल रहा है, अगर वो दिल्ली वाले 3-4 घंटे में पहुँच जाएंगे हरिद्वार और वहाँ से आगे आके थोड़ा सा पहुँच जाएंगे गौरीकुंड, तो 8-10 घंटे में गौरीकुंड के आसपास पहुँच जाएंगे, वहाँ से केदारनाथ पहुँच जाएंगे। अब 35 डिग्री टेम्परेचर से अगर वो 3 डिग्री टेम्परेचर में पहुँचेंगे तो उनके बॉडी को एडजस्ट करने में काफ़ी दिक्कत होगी, बॉडी उनकी अनुकूल नहीं कर पाएगी अपने आप को, और ऐसे में अगर आदमी के साथ कुछ बीमारियाँ पहले से हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कुछ और बीमारियां हैं, या उसकी एज ज़्यादा है, तो उसको दिक्कत हो सकती है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। तो मेरा रिक्वेस्ट यह है कि अगर कोई ऐसे जगह जा रहे हैं जो बहुत ऊंचाई पे हैं तो कम से कम 2 दिन उसके आसपास नीचे के क्षेत्र में जरूर रुक जाएं। अगर ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा सा पैदल चलने का अभ्यास कर लें, पहाड़ की परिस्थिति को समझ लें, जो अनुकूल कर लें अपने आप को वहाँ के माहौल के अनुसार, तो मैं समझता हूँ कि उनको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब बरसात हो रही हो तो उस समय ट्रेवल बिल्कुल न करें, क्योंकि ऊपर से पत्थर गिरते हैं, गाड़ी में लग सकता है, अगर खिड़की खुली है या शीशा तोड़ के गाड़ी के अंदर बैठे हैं वहाँ भी लग सकता है, उनको खतरनाक हो सकता है। कई बार गाड़ियों के दबने की भी सूचना आती है, वो सब देख लें। बरसात में रपटे आते हैं पहाड़ पर, पानी की बहुत बड़ी धारा ऐसी सड़क पर बहती रहती है, ऐसे में अगर रपटे आ रहे हैं तो उसको क्रॉस करने की कोशिश न करें, थोड़ा सा इंतजार कर लें, 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटे इंतजार कर लें, वो पानी अपने आप कम हो जाता है। जब ऊपर क्षेत्र में बरसात होती है तो नीचे पानी कई बार आ जाता है, और ऐसे में जल्दीबाजी करने के चक्कर में कई घटनाएं घटती हैं कि लोग बह जाते हैं। एक और चीज़ कहना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा लोगों से कि पूरा पहाड़ बहुत खूबसूरत है फोटोग्राफी के लिए, वीडियोग्राफी के लिए, सेल्फी के लिए, रील बनाने के लिए। लोग सुरक्षित स्थान पे ही ऐसा काम करें, फोटो खींचना है, सेल्फी लेनी है, रील बनानी है, वीडियो बनानी है, खूब बनावें अपना, लेकिन सेफ्टी का ध्यान में रखते हुए। आजकल क्या होता है, नदी बह रही है, नदी के किनारे जाके एकदम से फोटो बनाने के चक्कर में अपना कई लोग जान गंवा रहे हैं अपनी, तो उससे बचने की आवश्यकता है। आपका जीवन सुरक्षित रहेगा, आपको बहुत सारे चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो अपने जीवन को खतरे में डालकर फोटोग्राफी करना, वीडियोग्राफी करना, इससे बचें।
1: जी बिल्कुल जी। आप आपदा प्रबंधन विभाग से हैं और हर साल आपदाएं उत्तराखंड में देखी जाती हैं, कोई ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन सर जो बहुत चुनौतीपूर्ण रहा हो जिसके बारे में आप बताना चाहें?
0: देखिए हमारे पीरियड में मैं लगभग 2.5 साल हो गए मुझे आपदा प्रबंधन विभाग में। 2024 में 31 जुलाई को केदारनाथ जी की के रास्ते रूट पे त्रासदी हुई, करीब 29 स्थानों पर रास्ता टूटा और हम लोग कहीं भी जाने की पोजीशन में नहीं बने। तो उस बीच बड़ी समस्या थी, लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा था। जिला प्रशासन में पुलिस के पास करीब 500 लोगों ने उसमें बताया कि हमारे परिजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, रास्ता पूरी तरह बंद हो गया, टेलीफोन कनेक्टिविटी डाउन हो गई। माननीय मुखर्जी जी स्वयं ग्राउंड जीरो पर जाकर हम लोग भी गए, माननीय मुखर्जी जी के नेतृत्व में वहाँ पे जो निर्देश मिले उसके अनुसार कार्य किया। जिलाधिकारी ने बड़ा बेहतरीन काम किया वहाँ पे, उन्होंने एक DDRN सिस्टम था उसको एक्टिवेट कराया और DDRN के माध्यम से कनेक्टिविटी बहाल किया उन्होंने। और कनेक्टिविटी बहाल होते ही जो लोग संपर्क नहीं हो पा रहा था सबसे संपर्क हुआ, हमने कई जगह वाईफाई जोन डेवलप किए तो लोगों के मोबाइल काम करने लगे जी। तो वो 2 दिन बड़े मुश्किल रहे हम लोगों के लिए। फिर मौसम लगातार खराब हो रहा था तो हेली रेस्क्यू करना काफ़ी मुश्किल था। तो हम लोगों ने जो मेन रास्ता था उस मेन रास्ते के अलावा वैकल्पिक मार्ग कहाँ कहाँ हो सकता है उसको भी डेवलप किया, जहाँ जहाँ संभावना थी, और ऐसे रास्तों से लोगों को निकाला जो बहुत मुश्किल रास्ता था। तो जो बहुत एजेड थे या जो बीमार थे उनको तो उस रास्ते से नहीं लाना संभव था, उनको हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया हम लोगों ने। बाकी लोगों को हमने पैदल रास्ते से रेस्क्यू किया, वो काफ़ी दिक्कत भरा था। धराली की आपदा में भी यही हुआ कि हम लोग वहाँ पहुँच नहीं पाए, हालांकि माननीय मुखर्जी जी पहले पहुँच गए वहाँ, बाकी लोग तो देर में पहुँचे, लेकिन वहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है ऐसे में जब आपदा की स्थिति बनती है। कारण ये होता है कि मौसम खराब हो जाता है, लगातार बादल छाए रहते हैं और हेलीकॉप्टर से ट्रेवल करना मुश्किल हो जाता है, रास्ते टूट जाते हैं तो रास्तों से जाना मुश्किल हो जाता है, पैदल जाना मुश्किल होता है। तो ऐसी स्थितियां बनती हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे के लिए ध्यान रख रहे हैं कि अगर मेन रास्ता बंद होता है तो उसका वैकल्पिक मार्ग क्या होगा, अगर वह भी बंद होता है तो क्या कोई पैदल मार्ग है क्या जिसको हम लोग बना के ठीक कर सकते हैं। तो उसको भी ठीक करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और विभागों को माननीय मुखर्जी जी के द्वारा निर्देश दिया गया है कि ऐसे रास्तों को भी आप ठीक रखें जहाँ जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक है ऐसे मार्गों पे, तो उस पर काम चल रहा है। तो उम्मीद हम करते हैं कि आगे अब ऐसी अगर आपदा की स्थिति बनती है तो हम लोग बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। बाकी डिपेंड करता है कि आपदा कितनी बड़ी है, अगर बड़ी आपदा होगी तो निश्चित रूप से दिक्कतें होंगी रेस्क्यू में।
1: बिल्कुल, लेकिन जिन आपदाओं का आपने जिक्र किया वाकई चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन फिर भी सारे ही विभागों ने, उत्तराखंड सरकार ने मिलकर जिस तरीके से काम किया उसके बाद जो रिजल्ट आए वो काफी अच्छे थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने आपदा प्रबंधन विभाग और तमाम विभागों के साथ मिलकर जो चारधाम यात्रा उत्तराखंड में होती है कितनी सुरक्षित रहती है, किस तरीके से साल 2026 में तैयारियां की गई हैं उस पर हमें जानकारी दी और अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आज की गई चर्चा आपको पसंद आई होगी। ऐसे में उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए जो भी यात्री आ रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड है पहाड़ी क्षेत्र है, मौसम कभी भी बदल सकता है, तो सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का जो गाइडलाइंस यात्रियों के लिए है उसका पालन जरूर करें। इसके साथ ही अपने मोबाइल में सचेत ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, क्योंकि इस ऐप में हमको मौसम की सटीक जानकारी मिलेगी। फिर मिलेंगे नए कार्यक्रम में, तब तक के लिए।
2: अब आप समाचार सुनेंगे।
3: Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral talks with his Dutch counterpart Rob Jetten and call on King William Alexander and Queen Maxima today. Several important agreements expected to be signed, including in the fields of semiconductor chips, AI and bilateral trade. Army Chief General Upendra Dwivedi warns Pakistan against harboring terrorists and operating against India. West Bengal government orders re-verification of caste certificates issued since 2011. CBSE announces a two-stage re-evaluation process of answer sheets for Class 12 students. And in badminton, Indian duo of Sattvik Sairaj and Chirag Shetty enter finals of Thailand Open after a thrilling victory over Malaysian pair in the semi-finals. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi is scheduled to hold bilateral talks with Dutch Prime Minister Rob Jetten and will call on Their Majesties King William Alexander and Queen Maxima this afternoon. The visit carries significance beyond bilateral ties and is expected to shape broader India-EU relations following the recently concluded India-Europe Free Trade Agreement. Earlier, when the Prime Minister arrived in the Netherlands late last night, he was received by the Dutch Foreign Minister. He was accorded a grand welcome through cultural and musical performances by the diaspora and Dutch troops. Members of the Indian community representing different age groups, regions and faiths gathered to welcome him with traditional dance and musical performances. The venue echoed with chants of Modi Modi and Vande Mataram as he arrived.
4: Modi, Modi, Modi, Modi, Modi.
3: In a social media post, Mr. Modi said the welcome was remarkable as it included a dance performance covering Kathak, Odissi, Bharatanatyam, Kuchipudi and Mohiniyattam and also included a Garba performance. The Prime Minister is addressing the Indian community and will interact with leading business leaders from the Netherlands. The community event is expected to focus on India-Netherlands ties, the role of the diaspora and India's global outreach. We now go live to The Hague in the Netherlands, where the Prime Minister is addressing the Indian community.
5: आज का दिन है, कोटि-कोटि भारतवासियों का विश्वास मुझे न रुकने देता है और न थकने देता है. ये नॉन स्टॉप चले ही जा रहा है. साथियों, बहुत छोटी आयु से ही मैं देशभक्ति के रंग में रंग गया. आप ही मेरा परिवार बन गया. स्वर्ग से समष्टि की ओर चल पड़ा, अहम से वयम का रास्ता चुन लिया. और फिर तो आपका सुख ही मेरा सुख बन गया, आपका कल्याण ही मेरा कर्तव्य बन गया.
3: After concluding his visit to the Netherlands, Prime Minister Modi will travel to Sweden tomorrow on the third leg of his five-nation tour. The focus is squarely on the robust economic engine driving this partnership. With bilateral trade reaching record highs, Swedish industrial giants are not just observing the Indian market, they are thriving on it. A report.
6: Several reforms brought by the government in the last 12 years are being reflected not just among the thriving Indian businesses but also with the success and satisfaction of the international investors. During a talk with Akashvani, Sri Kamal Bali, Managing Director of Volvo India, explained how the reforms of the last decade have transformed the business landscape for international investors.
7: Things like Make in India, the PLI scheme, the GST reforms, I mean initial challenges, all these reforms, whenever anything changes, you have to go through a change mechanism. But I think today those things are really, really bearing fruit, and we can clearly see that the level of, and this is manifesting itself in the satisfaction level which we conduct among Swedish companies. So it's very, very clearly big, big benefit, and therefore the forthcoming visit of the Prime Minister is going to further cement the ties between Sweden and India, and I think it's a great opportunity for both countries.
6: It may be noted that Prime Minister Narendra Modi during his visit to Sweden will hold bilateral talks with PM Christensen to review the entire gamut of bilateral relations and explore new avenues of cooperation to enhance bilateral trade. They will also discuss on collaboration in green transition, AI, emerging technology, startup, resilient supply chain, defense, space, climate action and people-to-people ties. The two prime minister will also address the European Roundtable for Industry, a leading pan-European business leaders forum, along with Her Excellency Ms. Ursula von der Leyen, President of the European Commission. Sakshi Singh, Akashvani News, Gothenburg, Sweden.
3: Indian Army Chief General Upendra Dwivedi said today that if Pakistan continues to harbour terrorists and operate against India, then they have to decide if they want to be part of geography or history or not. General Dwivedi's remarks at the event, Sena Samvad in New Delhi, came days after the country and the Indian military marked the first anniversary of Operation Sindoor.
8: I think if you have heard me earlier, what I have said that Pakistan, if it continues to harbour terrorist and operate against India, then they have to decide whether they want to be part of the geography or history or not.
3: Indian agencies have achieved the first ever seizure of a Captagon drug worth 182 crore rupees through Operation Rage Pill. In a social media post, Home Minister Amit Shah shared this information and said that the government is resolved for a drug-free India. He said that the busting of the drug consignment destined for the West Asia and the arrest of a foreign national stand out as shining examples of our commitment to zero tolerance against drugs. The Home Minister added that the government will clamp down on every gram of drugs entering India or leaving the country using our territory as the transit route. The West Bengal government has ordered re-verification of all caste certificates issued since 2011. Officials say questions have been raised about the authenticity and validity of these documents over the past 14 years. According to government records, nearly 1 crore 69 lakh caste certificates have been issued for scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes during the above-mentioned period. Many were distributed through the Dware Sarkar outreach camps. Subdivisional officers and district-level officials will now scrutinize every certificate. If any are found to have been issued based on false information or irregularities, they will be cancelled under the law. The directive also covers those names which were recently deleted during the special revision of the voter list. Their caste certificates and those of their dependents will be reviewed and cancelled if necessary. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AI News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AR app. Welcome back. You're listening to Midday News. Central Board of Secondary Education has issued a notice outlining post-result declaration facilities for Class 12 students, reaffirming its commitment to a fair and transparent evaluation process. In the notice, the board said students dissatisfied with the results can avail a two-stage review system. In the first stage, students may apply online for scanned copies of their evaluated answer books, which can be downloaded for review. In the second stage, students can seek verification of discrepancies or request re-evaluation of specific answers based on the marking scheme. CBSE said applications for scanned copies can be submitted online from the 19th to the 22nd of this month at a fee of 700 rupees per subject. Applications for verification and re-evaluation can be submitted between the 26th and 29th of this month. Union Home Minister Amit Shah is on a two-day visit to Gujarat from today. Mr. Shah is visiting Gujarat for the first time after the BJP's landslide victory in Assam, Puducherry and West Bengal, will be present in various review meetings throughout the day today. We have a report.
9: In the meeting to be held till noon today, Mr. Shah will review the progress of the modernization works of Sarkhej Gandhinagar Highway. Apart from this, the Union Home Minister will review the progress made in functioning of the GUDC and Gandhinagar Lok Sabha as well as other development works related to Mansa Municipality. The progress made in the functioning of the public hospital in the Gandhinagar Lok Sabha area. The functioning of Akhandanand and Sastu Sahitya Mudranalay Trust. Apart from this, Mr. Shah will hold a meeting with the in-charge and co-in-charge of the toy collection campaign under the Ramshe Gujarat Khilse Balak Abhiyan in Gandhinagar Lok Sabha constituency. In the evening, Mr. Shah will hold a meeting with the elected corporators of Ahmedabad Municipal Corporation of Ghatlodia, Vijalpur, Naranpura and Sabarmati Assembly constituency included in Gandhinagar Lok Sabha constituency. Pravesh Adiyacha, Akashwani News, Ahmedabad.
3: In Rajasthan, the door-to-door data collection work under Census 2027 has started from today. During this phase, which will continue till 14th of June, house listing and housing census work will be carried out across the state. Enumerators are collecting details by asking 33 questions related to the construction material of houses and the facilities available in them. Director of Economics and Statistics Vinesh Singhvi said that the self-enumeration process, which began on 1st of May in the state, concluded yesterday. Around 1.5 million families across Rajasthan opted to submit their information through the self-enumeration facility. The government has debunked a digitally altered video of the former Lieutenant General Manoj Kumar Katyar claiming that the Afghan Taliban has been paid to take action against Pakistan and that they are fighting on behalf of India. The fact-check unit of the Press Information Bureau clarified that the retired Lieutenant General Manoj Kumar Katyar has not made any such statement. It added that the video has been created using AI to spread misinformation and undermine trust in the Indian Armed Forces. The unit has also given the link

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स एआई द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: केवल भारत में हो रहे हैं, और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। पच्चीस में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
0: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
0: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थी, साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन सम्बोधित करना है।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सगरम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, एआई, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
4: We have a very long-standing partnership with Sweden on

0: डिफेंस।
1: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
0: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
2: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
1: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
2: सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र द्वारे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
3: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
2: गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री जीयूडीसी और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपैलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अरियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेड स्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टेगन ड्रग्स जब्त की हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
5: आपसे कुछ देर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
2: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूरजुद्दीन और गो सेफेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए AI के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अली फली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, AI और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जाँच के आदेश दिए। CBSE ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

जय हिंद सैनिक साथियों, आपका आपके अपने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। सैनिक साथियों हाजिर हैं रोजाना की तरह कुछ जानकारी और कुछ गीतों के साथ। आज के संक में हम याद करेंगे भारतीय नौसेना के महान नायक कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला को, जिनका कि कल यानी कि 15 मई 2026 को जन्मशती मनाई गई। और 15 मई 1926 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इनका जन्म हुआ था। और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान आईएनएस खुखरी युद्धपोत के कमांडिंग ऑफिसर थे और उन्होंने

साथियों, भारतीय नौसेना के महान नायक कैप्टन महेंद्र नाथ, उनका जन्म हुआ था एक प्रतिष्ठित कश्मीरी परिवार में और इनके पिताजी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। उनके करियर की बात की जाए तो नौसेना में वो जनवरी 1946 में रॉयल इंडियन नेवी में शामिल हुए थे और एक एंटी सबमरीन वारफेयर के वो स्पेशलिस्ट थे। 1971 जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसमें 9 दिसंबर 1971 को अरब सागर में द्वीप तट के निकट उनके जहाज आईएनएस खुकरी पर पाकिस्तानी पनडुब्बी पीएनएस हंगोर ने टारपीडो से हमला कर दिया था और जहाज डूबने की स्थिति में कैप्टन ने अपनी जान बचाने के बजाय अपने चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकालने में प्राथमिकता दी और उन्होंने अपनी लाइफ जैकेट भी अपने एक जूनियर नाविक को दे दी। नौसेना की जो सर्वोच्च गौरवशाली परंपरा का उन्होंने पालन किया और पालन करते हुए उन्होंने डूबते जहाज को छोड़ने से मना कर दिया और आईएनएस खुकरी के साथ ही समुद्र में जल समाधि ले ली।

सैनिक साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कैप्टन महेंद्रनाथ मुल्ला की। भारत सरकार ने 28 जनवरी 2000 को उनकी याद में एक विशेष स्मारक टिकट, डाक टिकट जारी किया था और गुजरात के दीव समुद्र के सामने एक पहाड़ी पर कैप्टन मुल्ला और उनके शहीद दल की याद में एक भव्य स्मारक भी बनाया गया है। और मुंबई के नेवी नगर कोलावा में जो मुख्य नौसेना का सभागार है एक, उसका ऑडिटोरियम का नाम भी कैप्टन M.N. मुल्ला सभागार रखा गया है।

सैनिक साथियों, आज हम बात कर रहे हैं कैप्टन महेंद्रनाथ मुल्ला की, उनके अविस्मरणीय योगदान के लिए, असाधारण साहस के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। हम उन्हें नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।

सैनिक साथियों, आज का ये अंक समर्पित था कैप्टन महेंद्रनाथ मुल्ला जी को, और आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की अनुमति दीजिए। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी देहरादून है। लीजिए प्रस्तुत है देशगान।

0: अभी आप देशगान सुन रहे थे। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। कृपया कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: ये आकाशवाणी है। आकाश में तैरती ये उद्घोष सफर पूरा कर रही है, बल्कि ये कहें ये आकाशवाणी की अनंत यात्रा है।
2: 1936 पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
3: महाराष्ट्र के परभणी जिले में मलसोना गांव के प्रगतिशील किसान श्रीरंग देवबा लाड यानी दादा लाड को वर्ष 2026 के पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित किया गया है और आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। दादा लाड जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दादा लाड, आपने खेती के क्षेत्र में नवाचार और समर्पण के माध्यम से जो मिसाल कायम की है, वो न केवल किसानों के लिए प्रेरणादायक है, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय भी है। तो कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब आपको पद्मश्री सम्मान के लिए चुने जाने की सूचना मिली, तो उस क्षण आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी और इस प्रतिष्ठित उपलब्धि को आप अपने जीवन, अपने गांव और खेती के सफर के संदर्भ में किस तरह से देखते हैं?
4: ये तो पहली बार मैंने लातूर में था और दूरदर्शन के सामने ही बैठा था। जब पहले मैं न्यूज सुनी तो मेरे पर मेरा भरोसा नहीं हो रहा था कि मेरे बारे में कह रहे कि और कोई दादा लाड है। तो तब तक कहीं सब अधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का जब फोन आने लगा तो लगा कि वो मेरे बारे में ही है। तो ये मिलने के बाद एक खुशी तो हो गई, इस बारे में खुशी ये बात की है, परंतु जब तक किसी बात को राजमान्यता नहीं मिलती तब तक कोई अंगीकार उसका नहीं करता। तो अभी तक तो कई सालों से कम 25 साल हो गए मैं टेक्निक किसानों के सामने रख रहा हूँ, परंतु जब ऐसे सरकार के माध्यम से वगैरह अखबारों से प्रसार माध्यमों से ये जब तंत्र ज्ञान किसानों के पास जाएगा तो उसको लगेगा अरे इसमें कुछ तो भी दम है और इसके कारण ये तंत्र को किसान स्वीकारेगा और ये तंत्र स्वीकारने का जो किसानों का उपज बढ़ जाएंगे उससे मुझे बहुत खुशी होने वाली है। केवल वो ये कारण किसान अभी अपनाता है इसका आनंद मुझे हुआ।
3: दादा लाड, कपास तकनीक विकसित करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और आप बताएंगे कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है?
4: एक तो मैं किसान पुत्र हूँ और वो भी ऐसे किसान पुत्रों की जिनके घर का कपास पर पूरा अर्थ खाता निर्भर है, यानी कपास का पेड़ उनके लिए यानी तुलसी के जैसी श्रद्धा वाला पेड़ है। तो मैं हमेशा विचार करता था कि इसका उत्पन्न कैसा बढ़े और मैं उसके पास बैठता था और बैठने के बाद एक दिन ऐसा बैठा और उनके ढाली तरफ देखने लगा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि नीचे जो मोनोपोडियम जिनको कहती है वो बड़ी मोटी भी है और उसकी ऊंचाई मूल पौधे के बराबर है। तो और दूसरी जो सिम्पोडिया जिनको कहते हैं वो ऊपर से जमीन से समांतर चलती है, वो छोटी वाली भी होती है और दोनों में फर्क ऐसा ये बड़ी और छोटी। बड़ी में तो डेंडो की संख्या बहुत कम लगती है, संख्या भी कम लगती है, उसका वेट भी बहुत कम। तंत्र से एक हो गया कि पहले किसान 6 क्विंटल कपास लेता था, 6-7 पकड़ के चलो 8 खाद ज्यादा डाले तो अभी 7,000 रुपये क्विंटल भाव पकड़ेंगे तो 8 क्विंटल था यानी 56,000 एक एकड़ में किसान को मिलता था। अभी मेरे टेक्निक से वो चल रहा है तो 15 से 20 क्विंटल तक जाता है। तो अपन चलेंगे पकड़ेंगे 20 क्विंटल 25 क्विंटल तक जाता है तो 1,20,000 का 7,000 रुपये पर क्विंटल पकड़ेंगे तो 1,40,000 रुपये। कहाँ 35,000 कहाँ 1,40,000, ये बड़ा अंतर है, ये किसानों का आर्थिक बड़ा लाभ होता है।
3: दादा, कृषि क्षेत्र में नवाचार चाहने वाले युवा किसानों और शोधकर्ताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
4: एक तो नई पीढ़ी खेती में आने में उतनी ये नहीं है, उनको लगन नहीं है खेती की और ये नहीं आएंगे तो उनका एक है कि खेती नहीं पूर्ती उपज नहीं आता। लेकिन अलग अलग फसल में केवल कपास का फसल आपके सामने आया है लेकिन ज्वार का भी मेरा टेक्निक है, गेहूं का भी, ये तंत्र से खेती करने लगे तो उपज बहुत बढ़ती है। और कौन सा युवा नहीं चाहता कि पैसा नहीं मिले, ये तंत्र से खेती करने का जर युवाओं को सिखाया तंत्र और उनको भी पैसा मिलने लगा तो सब युवा भी खेती की तरफ आ जाएंगे और खेती की मांग यही है कि पढ़े लिखे युवा खेती पे आ जाए, ये खेती की मांग है। और युवाओं को तो ये खातरी हो गई कि भाई इससे उपज अच्छी आती है और पैसा भी मिलता है। और ये तंत्र से, मैं तो विश्वास के साथ कहता हूँ, ये तंत्र से युवा खेती करने लगे तो कोई कमी पड़ेगी नहीं उनको पैसे की।
3: भविष्य में कृषि क्षेत्र में आप किन नए प्रयोगों या फिर योजनाओं पर काम करने का विचार कर रहे हैं?
4: अभी तो कैश क्रॉप पर मैंने काम किया, तो इसमें मुझे मैंने प्रयोग किया है, कर्नाटक में इंडी गांव है, वहां भी मैंने प्रयोग किया, जालना में भी। अभी मुझे मन में कि अनाज के पर जाएंगे, पैसा होना चाहिए, अनाज भी होना चाहिए। तो मराठवाड़े के पकड़े तो ज्वार अनाज है और गेहूँ भी अनाज है, तो यानी इधर तो गेहूँ तो कभी कभी त्योहार के दिन खाते है, हर दिन का हर ज्वार का है, भाकरी का है। तो इसलिए यह अनाज उत्पन्न बढ़ने के लिए मुझे एक अच्छा पॉइंट मिला है उनका, ज्वार का। मैंने बताया कि अभी ज्वार का उत्पन्न है किसान 6-7 क्विंटल और 400 कड़ भी लेता है।
3: दादा लाड जी, आपने अपने अनुभवों और खेती में किए गए नवाचारों के बारे में हमारे साथ बहुत सी बातें साझा की और प्रश्नों का उत्तर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी उपलब्धि न केवल आपके लिए बल्कि परभणी जिले या आपके गांव मलसोना और हम कह सकते हैं कि देश भर के किसानों के लिए गर्व का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म ऑल द बेस्ट का ये गाना, जिसे आवाजें दी थी सूरज जगन और पूनम इस्लाम ने। गीत कुमार का था, संगीत प्रीतम का। और अब आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम और सौम्या राव की आवाज में जवानी दीवानी फिल्म का ये गाना।

अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गाने नए तराने। आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म जबरिया जोड़ी से। आवाज़ें हैं यासिर देसाई और अल्तमस फरीदी की, तनिष्क बागची के लिखे शब्दों को संगीत दिया है रश्मि विराग ने।

अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत जबरिया जोड़ी फिल्म से। आवाज़ें हैं यासिर देसाई और अल्तमस फरीदी की। माफ़ कीजिए, आप आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम में अगला गीत जिसे हमने लिया है गोवा फिल्म से। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है दलेर मेहंदी और लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत प्रीतम का है।

अरिजीत सिंह, सुभांशु केशरवानी और अमित मिश्रा की आवाज में अभी आप सुन रहे थे जग्गा जासूस फिल्म का ये गाना। इस गीत को लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत था प्रीतम का। अब आपको सुनवा रहे हैं मीका सिंह और वाजिद की आवाज में रावड़ी राठौर फिल्म का गीत। समीर की शब्द रचना को संगीत दिया है अनजान ने।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी देहरादून है। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गाने नए तराने।

अभी आप सुन रहे थे रेडी फिल्म का ये गाना तुलसी कुमार और केके की आवाज़ में, जिसे लिखा था नीलेश मिश्रा ने और संगीत था प्रीतम का। अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत राब्ता फिल्म से। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है अरिजीत सिंह ने, लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत है एक बार फिर से प्रीतम का।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गाने नए तराने यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप आशुतोष सुनियाल से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने CBSE 12वीं परीक्षा में प्रदेश में पहले स्थान प्राप्त करने वाली हल्द्वानी की छात्रा अरीना रघुवंशी से दूरभाष पर वार्ता कर उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि अरीना की यह उपलब्धि पूरे राज्य के लिए गर्व का विषय है। राज्य के सभी अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर एक सप्ताह के भीतर तैनाती की जाएगी। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को शीघ्र काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा SCERT में शैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों को भी प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरा जाएगा। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने पौड़ी में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की। अधिकारियों को जनसमस्याओं के समाधान और जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ करने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के अनारवाला मालसी मोटर मार्ग पर चल रहे मरम्मत और सुधार कार्यों का निरीक्षण कर प्रगति का जायजा लिया। अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। 1 मई से शुरू हुई आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा में मात्र 16 दिनों में ही 10,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। यात्रा को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन द्वारा बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। टिहरी की जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने चंबा विकासखंड के लावाधार गांव में गेहूं की फसल की क्रॉप कटिंग की। इस दौरान उन्होंने बताया कि क्रॉप कटिंग विधि से फसलों के उत्पादन का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाता है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से चंपावत के जिला सेवायोजन कार्यालय में एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन। जिले के विभिन्न स्थानों से सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया। चयनित अभ्यर्थियों को शीघ्र ही पंतनगर में नियुक्ति के लिए बुलाया जाएगा और पिथौरागढ़ और बागेश्वर में वट सावित्री पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही महिलाओं ने व्रत रखकर वट वृक्ष की विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान महिलाओं ने पति की लंबी उम्र और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं प्रभा अत्रे का ख्याल गायन। आप प्रस्तुत कर रही हैं राग कलावती और मरु बिहाग।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे प्रभा अत्रे का ख्याल गायन। आप प्रस्तुत कर रही थी राग कलावती और मरु बिहाग। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का हमारा आज का ये अंक यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक कलाकार। कार्यक्रम एक कलाकार सुन रहे सभी श्रोताओं को सीमा सक्सेना का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज फिर हाजिर हैं एक नए कलाकार के साथ। हमारे आज के कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं जाने माने फिल्म अभिनेता विक्की कौशल, जिनका आज जन्मदिन है। आज ही के दिन 16 मई 1988 को उनका जन्म हुआ था। इनके बारे में और भी कुछ बातें करेंगे, पहले आपको सुनवाते हैं उनका अभिनीत ये गीत।

श्रोता बिक्की कौशल की आज हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम एक कलाकार में। बेहद पॉपुलर और दमदार एक्टर हैं। उन्होंने 2015 में मसान फिल्म में बतौर लीड एक्टर डेब्यू किया था और पहली ही फिल्म से जहां उन्होंने देश और दुनिया में जमकर तारीफें बटोरी और उसके बाद उनकी 2019 में फिल्म आई थी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक और ये फिल्म भी बहुत ही सराही गई। इस फिल्म में मेजर बिहान सिंह शेरगिल का इन्होंने किरदार निभाकर तहलका मचा दिया था और इस रोल के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी प्रदान किया गया। आइए आपको सुनवाते हैं उनकी इसी फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, विकी कौशल ने फिल्मी लाइन में जब शुरुआत की तो एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने काम किया। अनुराग कश्यप की फिल्म थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, और गैंग्स ऑफ वासेपुर टू में उन्होंने अनुराग कश्यप के सहायक निर्देशक का काम किया। और वो खुद बताते हैं कि अनुराग कश्यप के साथ काम करने का जो उन्हें मौका मिला, वो फिल्म मेकिंग में सबसे बड़ी उनकी जो पाठशाला साबित हुई, और बहुत कुछ उन्होंने उनसे सीखा, और वो उन्हें अपना गुरु भी मानते हैं। विकी कौशल को पहला ब्रेक मिला अनुराग कश्यप की ही फिल्म में, और उनके प्रोडक्शन में जो बनी फिल्म थी लव शब ते चिकन खुराना, जो कि 2012 में और इसके बाद 2015 में बॉम्बे वेलवेट ये फिल्में आई, इनमें छोटे मोटे रोल उन्होंने किए। और इसके अलावा एक शॉर्ट फिल्म थी गीक आउट, जो कि 2013 में आई थी, उसमें भी बहुत ही छोटी भूमिका में दिखाई दिए। विकी कौशल की डेब्यू फिल्म की बात की जाए तो 2015 में आई थी फिल्म मसान, और डायरेक्टर थे नीरज धायवान। उनकी इस फिल्म में उन्होंने दीपक के किरदार को निभाया था, और विकी ने इस किरदार में जान फूंक दी थी। और एक बात और मुख्य रही इसकी कि विकी कौशल और नीरज धायवान दोनों ही गैंग्स ऑफ वासेपुर में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। मसान फिल्म उनकी बहुत ही हिट फिल्म रही। इस फिल्म को समीक्षकों ने भी बहुत सराहा, और विकी कौशल ने फिल्म में बनारस की गलियों और काशी के घाट पर जो अभिनय किया उसने समा बांध दिया। और ये फिल्म 2015 में कान फेस्टिवल में अनसर्टेन रिगार्ड सेगमेंट में भी दिखाई गई, और इसने कई अवार्ड भी वहाँ पर जीते। आइए सुनते हैं इसी फिल्म का ये गाना।

ಮನ ಕಸ್ತೂರಿ ರೇ ಜಗದಸ್ತೂರಿ ರೇ ಮನ ಕಸ್ತೂರಿ.

श्रोताओं, विक्की कौशल की मुख्य फिल्मों की बात की जाए तो 2015 में जो उनकी फिल्म आई थी मसान, उसके बाद 2016 में जुबान, 2016 में ही आई रमन राघव 2.0 और 2018 में लव पर स्क्वायर फुट। 2018 में इनकी फिल्म आई राजी, लव स्टोरीज, संजू, मनमर्जियां। 2019 में उनकी फिल्म आई उरी द सर्जिकल स्ट्राइक और ये फिल्म रही उनके लिए सबसे सुपरहिट साबित हुई और इस फिल्म ने ही उन्हें सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म में जो उनका किरदार था एक सैन्य अधिकारी का था, उन्होंने बेजोड़ एक्टिंग की और इस फिल्म को हिट बनाया और खुद सुपरस्टार बन गए। इसके बाद उन्होंने जो भी फिल्में की वो भी बहुत हिट रही। उसमें रही 2020 में आने वाली फिल्म भूत पार्ट वन द हॉन्टेड शिप, 2021 में फिल्म आई सरदार उधम, इसमें उन्होंने उधम सिंह का किरदार निभाया, 2022 में फिल्म गोविंदा मेरा नाम, 23 में जरा हटके जरा बचके, 23 में ही फिल्म आई द ग्रेट इंडियन फैमिली और सैम बहादुर, 2023 में फिल्म आई डंकी और 24 में बैड न्यूज़। उनकी सारी फिल्में बहुत ही अच्छी रहीं। आइए आपको सुनवाते हैं उनका अभिनीत एक और गीत जिसे हमने लिया है जुबान फिल्म से।

श्रोताओं, विकी कौशल की फिल्म आई थी 2025 में छावा, जो कि एक हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा फिल्म थी और इसे लक्ष्मण उतेकर ने डायरेक्ट किया था। विकी कौशल ने इस फिल्म में छत्रपति संभाजी महाराज का किरदार निभाया और उसे जैसे जीवंत कर दिया। उनकी ये फिल्म भी बहुत ही पसंद की गई। आइए आपको सुनवाते हैं इसी फिल्म का, कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: विकी कौशल को उनके जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयां। इसी के साथ ही आज का कार्यक्रम एक कलाकार यहीं पर संपन्न करने की सीमा सक्सेना को दीजिए अनुमति। नमस्कार। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक कलाकार। श्रोताओं, इस समय शाम के 5 बजने वाले हैं। बस थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपनी 5 देशों की यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय कोविड महामारी, जारी संघर्षों और ऊर्जा संकटों जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है।
2: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है, जो तकनीक और मानवीय मूल्यों दोनों के आधार पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से स्वीडन सहित भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए नए द्वार खुलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा को इस ऐतिहासिक समझौते के बाद पहली बड़ी उच्च स्तरीय बैठक के रूप में देखा जा रहा है। स्वीडन में आर्टिफैक्स के इंजीनियर और उत्पाद विकास प्रमुख पेर स्टेनफेल्ट ने कहा कि समझौते के बाद भारत और यूरोप के बीच मजबूत औद्योगिक सहयोग और अधिक व्यावसायिक अवसर सृजित हो रहे हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने आज नीट UG 2026 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीष गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे के वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्रों तक की पूरी पहुंच थी। इस मामले में 5 आरोपियों को पहले ही अदालत में पेश किया जा चुका है और विस्तृत पूछताछ के लिए 7 दिन की पुलिस हिरासत और रिमांड पर लिया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली का उपयोग किया है। CBSE ने कहा कि जो छात्र अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं, वे 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा कि पिछले 14 वर्षों में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से पेचिंग की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मिलेंगे। पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। इस दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। ये घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन की यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूर इज़दुद्दीन और गो स्केफे को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए यह मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद जरूरी है, जबकि कोलकाता यह मैच जीतकर अंक तालिका में शीर्ष पर आना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय।

रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पॉटलाइट। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रिले किए जाएंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात्रि 10 बजे और रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका।

रात्रि 8 बजे श्रोता अपने पत्रों के उत्तर सुनेंगे, कार्यक्रम आपका पत्र मिला में। शाम 5:10 पर युवा श्रोता सुनेंगे, कार्यक्रम युववाणी। शाम 5:45 पर पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत में आप सुनेंगे हस्तशिल्प और ग्रामोद्योग। इस विषय पर डॉक्टर अलका पांडे से विनय ध्यानी की बातचीत।

शाम 7 बजे किसान साथी कार्यक्रम कृषि जगत के अंतर्गत सुनेंगे हेलो लोकमंजरी। ये तो थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। अब लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय।

कल रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

कल रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे स्पॉटलाइट, और कल रात्रि 9:30 पर सुनिएगा नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

विश्व प्रांगण द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम नाड़ी से निदान। इसका एपिसोड 1 आप सुनेंगे कल रात्रि 8:15 पर।

तो ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 MHz पर। शाम के 5:10 हुए हैं। अब युवा श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी।

सेहत हो साथ तो हर दिन खास लगता है, फिट इंसान हर मुश्किल में भी हंसता है। खुद को एक्टिव रखना आदत बना लीजिए, क्योंकि फिर जिंदगी का हर पल बेहतर लगने लगता है। गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सोनाली, और मैं आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी शाम बहुत अच्छे से बीत रही होगी। वैसे दोस्तों, आजकल हम अपनी लाइफ में ना इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि डेडलाइंस, स्टडी और स्क्रीन टाइम के बीच कहीं ना कहीं हम अपनी हेल्थ को भूल ही जाते हैं। सुबह से शाम तक काफ़ी सारे काम हम अपने निपटा ही लेते हैं, लेकिन बॉडी को एक्टिव रखने का वक्त हम नहीं निकाल पाते। और शायद इसी बदलती लाइफस्टाइल को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट को ज़रूरत महसूस हुई एक ऐसे मूवमेंट की, जो हमें याद दिलाए कि फिटनेस सिर्फ जिम तक सीमित नहीं, बल्कि एक हेल्दी और एक्टिव लाइफ जीने का तरीका है। और इसी सोच के साथ शुरुआत हुई फिट इंडिया मूवमेंट की, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए ये म्यूजिकल ट्रैक मैं पेश करने जा रही हूँ, जिसे हमने लिया है फिल्म द ट्रेन से, शिल्पा राव की आवाज़ में।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों, आज हम एक ऐसे कैंपेन की बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक इनिशिएटिव नहीं बल्कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल की शुरुआत है, और वो है फिट इंडिया मूवमेंट, जिसकी शुरुआत 29 अगस्त 2019 को नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है लोगों को अपनी डेली लाइफ में फिटनेस को इंक्लूड करने के लिए मोटिवेट करना। पहले हम देखते थे कि लोगों की लाइफ इतनी फिजिकली एक्टिव होती थी कि वो नेचुरली फिट रहा करते थे, लेकिन आज मोबाइल फोन्स, टीवीज और कंप्यूटर्स ने हमारी लाइफस्टाइल को काफ़ी कंफर्टेबल बना दिया है, और इसी वजह से हम कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को इग्नोर करने लगे हैं। इसीलिए फिट इंडिया मूवमेंट का गोल है एक ऐसा इंडिया बनाना जहाँ हर इंसान फिजिकली एक्टिव और हेल्दी हो। लेकिन हाँ, इसमें सिर्फ जिम जाने या हैवी एक्सरसाइज करने

की बात ही नहीं होती दोस्तों, बल्कि छोटी छोटी हैबिट्स पर भी फोकस किया जाता है, जैसे रोज़ वॉक करना, साइकिलिंग या योगा करना, और कई बार लिफ्ट की जगह स्टेयर्स यूज़ करना। यानी फिटनेस को बर्डन नहीं बल्कि अपनी डेली रूटीन का एक नेचुरल पार्ट बनाना, और इसके साथ साथ बैलेंस डाइट लेना भी बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। ये कैंपेन यूथ को भी मोटिवेट करती है कि वो अपनी एनर्जी को एक हेल्दी डायरेक्शन में यूज़ करें, क्योंकि एक फिट बॉडी सिर्फ ही नहीं देती बल्कि मेंटल क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और फोकस भी बढ़ाती है। और इसीलिए कई स्कूल्स और कॉलेजेस में भी फिट इंडिया जैसे प्रोग्राम्स शुरू किए गए हैं, जहां स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज किया जाता है। इससे पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ को भी इक्वल इम्पोर्टेंस मिल रही है। फिट इंडिया मूवमेंट हमें यही सिखाता है कि फिटनेस कोई चॉइस नहीं बल्कि एक ज़रूरत है। तो आज से ही छोटी सी शुरुआत कीजिए दोस्तों, फिर वो रोज़ 30 मिनट की वॉक हो, थोड़ा योगा हो, या कोई भी स्पोर्ट्स जो आप खेलना पसंद करते हो। चलिए अब पेश करते हैं आपके लिए ये खूबसूरत गीत आयुष्मान खुराना की आवाज़ में।

नहीं बदला बल्कि लर्निंग को फ्लेक्सिबल भी बना दिया है। अब स्टूडेंट्स अपनी स्पीड से सीख सकते हैं। अगर कोई टॉपिक समझ ना आए तो वीडियो दोबारा देखी जा सकती है। अगर किसी को कोडिंग सीखनी हो, म्यूज़िक, ग्राफिक डिज़ाइनिंग या लैंग्वेज लर्निंग करनी हो तो सब कुछ बस एक क्लिक दूर है। चलिए अब इस विषय पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये गीत फिल्म पटियाला हाउस से महालक्ष्मी और हार्डकोर की आवाज़ में।

दोस्तों, इस म्यूजिकल ट्रैक से पहले हम बात कर रहे थे ऑनलाइन लर्निंग की। क्या आप जानते हैं कि ऑनलाइन लर्निंग का सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट यूथ पर हमें देखने को मिल रहा है? आज स्टूडेंट्स सिर्फ मार्क्स तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि नई स्किल्स सीखकर खुद को फ्यूचर रेडी भी बनाना चाहते हैं। और इंटरनेट ने स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दी है कि वो अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करें और ट्रेडिशनल करियर ऑप्शन के अलावा भी नए फील्ड्स को समझें। लेकिन हाँ, हर टेक्नोलॉजी की तरह इसके साथ भी कुछ चैलेंजेस हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट के पास इक्वल इंटरनेट एक्सेस या डिजिटल डिवाइस नहीं होते। और ये तो हम सभी जानते हैं कि कई बार ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन भी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। दोस्तों, डिजिटल एजुकेशन तभी असल में सक्सेसफुल होगी जब एसेसिबिलिटी और अवेयरनेस दोनों साथ साथ बढ़े। इसीलिए हमें ज़रूरत है बैलेंस की। हमें इंटरनेट को सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का मीडियम नहीं, बल्कि एम्पावरमेंट का टूल बनाना होगा। जब टेक्नोलॉजी का सही यूज़ होगा तो एजुकेशन सिर्फ डिग्री तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वो कॉन्फिडेंस, अवेयरनेस और अपॉर्चुनिटीज़ का ज़रिया बन जाएगी। तो दोस्तों, इंटरनेट ने एजुकेशन को सिर्फ डिजिटल नहीं बनाया, उसे ज़्यादा इंक्लूसिव, फ्लेक्सिबल और ओपन बनाया है। आज नॉलेज सच में उन सब तक पहुँच सकती है जो सीखना चाहता है। बस जरूरत है क्यूरियोसिटी की, कंसिस्टेंसी की और सही डायरेक्शन की। तो सीखते रहिए और बढ़ते रहिए, क्योंकि नॉलेज जितनी शेयर होती है उतनी ही पावरफुल बन जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं एंटरटेनमेंट की ओर और सुनते हैं ये गीत फिल्म ए दिल है मुश्किल से अरिजीत सिंह की आवाज में।

दोस्तों, एयर 2047 वो साल होगा जब भारत अपने आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा, और इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनाने का विजन रखा गया है विकसित भारत मिशन के ज़रिए। एक ऐसा भारत जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो और एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल हो, और जहाँ हर सिटीज़न को ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज़ के मौके मिले। इसका अर्थ है कि एक ऐसा देश बनाना जहां क्वालिटी एजुकेशन सब तक पहुंच सके, हेल्थ केयर बेटर हो और टेक्नोलॉजी का फ़ायदा हर इंसान तक पहुंचे। आपको पता ही है दोस्तों कि इंडिया दुनिया के सबसे यंग कंट्रीज़ में से एक माना जाता है, और ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारी पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा यूथ है, और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यही यंग जनरेशन विकसित भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है, क्योंकि इनोवेशन, स्टार्टअप्स, डिजिटल स्किल्स और एंटरप्रेन्योरशिप को इस विजन का इम्पॉर्टेंट हिस्सा माना जा रहा है। दोस्तों, आज हम ऑलरेडी कई चेंजेस देख रहे हैं, फिर वो डिजिटल इंडिया हो, बेटर हाईवेज हो, UPI पेमेंट, स्टार्टअप कल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट या स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हों। ये सब सिर्फ अलग अलग स्कीम्स नहीं, बल्कि वो कदम है जो हम एक बड़े फ्यूचर विजन की तरफ बढ़ा रहे हैं। लेकिन हाँ, किसी भी देश का डेवलपमेंट सिर्फ पॉलिसीज से नहीं होता, उसके लिए ज़रूरत होती है सिटीजन्स के पार्टिसिपेशन की, और इसीलिए विकसित भारत भी जन भागीदारी पर फोकस करता है। चाहे वो एजुकेशन हो, इनोवेशन हो या रिस्पॉन्सिबल डिजिटल बिहेवियर, हर छोटा एफर्ट नेशन बिल्डिंग का हिस्सा बन सकता है। विकसित भारत सिर्फ इकोनॉमी का टारगेट नहीं है दोस्तों, बल्कि एक माइंडसेट है प्रोग्रेस का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का और पॉजिटिविटी का। ये विजन हमें ये याद दिलाता है कि देश तभी असल में डेवलप बनेगा जब उसके सिटीजन्स एजुकेटेड, स्किल्ड, हेल्दी और अवेयर होंगे। चलिए अब सुनते हैं ये गीत फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस से चिन्मयी श्रीपदा की आवाज़ में।

दोस्तों, हमारा आज का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं खत द्वारा। हमारा पता है कार्यक्रम युवाणी द्वारा निदेशक कार्यक्रम आकाशवाणी देहरादून हरिद्वार बाईपास रोड निकट रिस्पना पुल देहरादून और हमारा पिन कोड है 248001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है youthddn@gmail.com और आप अपने विचार हमारे व्हाट्सएप नंबर 7088000731 पर भी भेज सकते हैं। अपना ख्याल रखें दोस्तों, और आज के लिए मुझे यानी सोनाली को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 MHz पर। शाम के 5:45 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

कार्यक्रम सुनवाला सभ्य भाई बहनों को नमस्कार शिवसोदे भाई बहनों, आज कार्यक्रम लेके मैं आयो छ मीना मुनियाल। तो स्वागत छ दगड़ियों आप सभी को अपने बोली भाषा के कार्यक्रम ग्राम जगत मा। भगवान बद्र विशाल से सभी की राज खुशी की कामना करना लग्या छा। आप सभ्य घर बोण जके भी वेली सकुटुंबरी राज खुश रहा। दगड़ियों आजकल आप दिखना वेली कि हमारे उत्तराखंड मा पर्यटकों को तां तो लग्यू छ, दूर नहीं जाओ। अगर आप देहरादून की ही हम बात करना छा तो सुबेर और श्याम भगत हम बोला कि चलो ऑफिस आन जान वालों भीड़ लगी थी, लेकिन आज मैं दिखनु छे आई दोपहर में भी बिल्कुल जाम लग्यू छे रिस्पना में। तो कुल मिले के बोलण का मतलब ये हुई कि आजकल भीड़ भड़ाका बंड ही हुई छ। कोई हमारे उत्तराखंड श्रद्धालु श्रद्धा भाव से आना छन और शासन प्रशासन का जो नियम छन उनका भला कर पालन भी करने लग्या छन। पर भे बंदो कत गई मौज मस्ती खाना पीना जगह जगह दिखाना छन, मौज मस्ती करने लग्या छन। और हमारे उत्तराखंड का जो माहौल आप दिखना चाहो यूं उपधेरों को कखे कखे बिगड़ियों बीच। तो सब भे बंदो से अनुरोध कि आप घूमना कौन आवा, हमारे देव दीप्तों का दर्शन करना कौन आवा, आप सभी को स्वागत। पर नियमों का पालन जरूर करें, शांति बने रखें, कूड़ा कड़कट कखी भी नहीं फैलाया। जग भी जया लोग आपता याद राख कि फलन जगह के कितना बढ़िया लोग आया छे, तभी अतिथि देव भव की जो भावना च वह बनी रहे। तो सभियों को आपसी सहयोग बहुत जरूरी च। मैं बंदो आप कार्यक्रम का बारे में आप बता दिन कि गीत संगीत रनते रहे बार सदन एक छन और एक पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता आपा खातिर लई च। विषय च हस्तशिल्प और ग्रामा उद्योग। मेहमान छन डॉक्टर अलका पांडे और यूं का दगड़ छुई बात लगा ल हमर दगड़िया बिने ध्यानी। लेकिन भेंट वार्ता पेटोला हम आपा कोणो घड़ेक माँ पहले आवाज सुनदा नरेंद्र सिंह नेगी का गयु गढ़वल लोकगीत।

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: रंधीरवारों का दगड़ी आपन नरेंद्र सिंह ने कह गयो गढ़वा लोकगीत सुनो। उम्मीद है कि आप तो जरूर भर लगवाल बेबंधु। अजकल रुड़िया दिनों में गांव से लेके शहर बाजारों तक पानी की किल्लत हो जान, ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी च। हमार मुल्क जक गंगा जमुना जानी बड़ी बड़ी नदियों को मैत च गाड़ गदेरा बगना लग्या रंदन यख। जब यखी ये हाल छन तो बड़ा बड़ा शहरों में क्या हाल वाल। कारण डालों का कटान बौण भी खालुया छन, गांव भी खाल वेगेन, नदियों में अतिक्रमण कूड़ा डलन कई कारण छन जैसे आज यह विकट समस्या होनी च और बढ़ दी ही जानी च। पानी तो कुछ भी नीच, पानी तो कुछ नहीं, जीवन भी नीच। तो सोच समझी कन हम सभी होते हैं पानी खर्च करण और पानी का संरक्षण करण बहुत जरूरी च। पानी का सबसे बड़ो स्रोत भेबण बरखा च। पहाड़ों में बरखा को पानी का संरक्षण कुणे चाल खाला बनाना जरूरी छन जो कि पहल छ लेकिन आज नहीं दिखाना छन। जैसे क्या होंगे कि पानी रुकुच और अगल बगल वहाँ एक न्यार द्वार खालों को नमी बनी रहन और डाला बूटा होना रहन। पहले डांडो पुणे खूब चाल खाल रहन छ जैसे बौण हो रहन छ। पानी का स्रोतों पर खूब पानी रहन छाई और तालाबों यानी कि चाल खालों का कारण ही रहन छ। तब गाड़ गदेरों पर बारह महीना पैन बगुण रहन छ। आज जो यह श्रृंखला बनी च यह टूट गई यानी चाल खालों से जंगल और जंगल से पानी का स्रोत और पानी का स्रोत से नदी, आज यह श्रृंखला टूट गई जो दोबारा शुरू करण बहुत जरूरी है। यानी चाल खालों की परंपरा दोबारा बनाना जरूरी है तभी पानी बचल और जीवन बचल। घर की बात कर दो तो हम तेन अपन घर बैठे की पानी की बचत की शुरुआत करन चाहिए। हम तेन नल कते भी खुली हुई रखन चाहो और कखिम टपकुणो च तो वे तय ठीक करे देना। टपकू तू पैन भे बनो बोलन की अशुभ भी होंद और पता ही नहीं चल दू कतना पैन टपक गए। थाड़ चौको की हम धुणा रंधाओ रोज लेकिन रोज नहीं धोणो और जरा जरा पानी से धोण चाहो चो जैसे क्या कि पानी की बचत हो। और अगर हम गमलों की बात कर दा तो हम खूब गमलों में सुबेर भी या श्याम भी पैन डालदा लेकिन गमलों में हमेशा बेखंदो पैन डालन चाहिए जैसे नमी बनी रहेंगे और रात भर उगिल मरन। पानी को आप जानना चाहे कि बहुत कीमती च और सची बोलेगे बल्कि जल ही जीवन च। बिना पानी बल सब सुन तो आवा हम सभ्य मिलकर सौं खा कि पानी शुद्ध नि खतवा चालक खालक बने के अपनी पुरानी परंपराओं थे जीवित करके ई विकट समस्या का समाधान कर सकदा और अपन आने वाली पीढ़ी कुण पानी की कमी नहीं होने दिया। ये यूं बातों का हम तो संकल्प लेन चाहो चो और भेबंदो अभिन करदा कि कार्यक्रम थे अग्नि सरकंदा और आवा सुनदा कुमावनी लोकगीत।

0: रमेश जोशी का गयी चैक कुमावनी लोकगीत और भेवनो आवा अब सुनदा पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता हस्तशिल्प और ग्रामोद्योग हमर मेहमान छन डॉक्टर अलका पांडे और यूं का दगड़ छुई बता लगाना छन हमर दगड़िया विनय ध्यानी तो आवा सुनदा।
1: विनय ध्यानी और सगत मो ये बता मरदगढ़ चन डॉक्टर अलका पांडे। अलका जी बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में।
2: नमस्कार अपू बहुत बहुत धन्यवाद। तो हस्तशिल्प कार्यक्रम में अपूर्ण में आमंत्रित करो। धन्यवाद।
1: तो अब ये हम कन के जना कि साहब हस्तशिल्प हम कह कह था यानी जो अगर वर्गीकरण की बात आंद वो क्या छ।
2: सबों पहली तो मैं श्रोताओं को मेरा नमस्कार। पहली मेरे ख्याल हम यो जान लियो कि हस्तशिल्प के छू। हाथल करी जानी काम हस्तशिल्प अंग्रेजी में जद है हैंडीक्राफ्ट ले कोनी उमें बड़ वृहद हमारे पास आस्पेक्ट छू। हम वो हर काम जो हम हाथल कर सकनू उमें बड़ी बड़ू ले है सकूँ। उमें बुनाई कढ़ाई और सिलाई और पारंपरिक शिल्पक काम जो पुश्तैनी घरों में होना वो सब हस्तशिल्प में आ जा। तो हस्तशिल्प एक तरफ है हमारे जैसे लुप्त जो होना चाहिए और महिला जो छन हमार समाजक वो हस्तशिल्प को बड़ भली के अगिल कहूँ दूसर जनरेशन ले जी कैरी ऑन करनी। पुरुष तो उमें सक्षम ना थन जतु उमें श्रेणी यानी कि स्त्रियां बहुत सक्षम छन। तो महिला जो हमर छन उनर हस्तशिल्प दगर चोली दामनो साथ छु चोली दामनो दगर छु और वो बड़ भली तरीके उनको अघिलू बढ़ू नहीं बड़ बढ़ू छू ऐपणो काम दू अपू देखो ना आजकल ऐपणो काम महिला करनी रंगवाल पिछौड़ छू कुमाऊ में हमर बड़ी है गई हमर आजकल वो हमर पिरूल हूँ जो चीड़ू पेड़ो पात हुनी उल बड़ बड़ी बड़ी बड़ी सामान बढ़ूनी। तो यो हर काम जो महिला अपन हुनर के हाथों पे कर बेर जो प्रस्तुत करनी उको हम हस्तशिल्प।
1: अब अगर हम वर्गीकरण की बात कर ला तो ये माँ चाहे कताई बुनाई से लेके जो नापन बता ऐपन हो सकत बाकी और भी कते धारण छन। अब कहला की खादी ग्रामोद्योग बोर्ड जो छ वो सबसे बड़ो एक इन संस्थान छ जो की हस्तशिल्प ता बढ़ावा देनो छ। तो ये दौरान क्या क्या खास कार्यक्रम छन जो ता की हम सीधा महिला रोजगार से हस्तशिल्प से हम जोड़ना छवा।
2: यह बहुत बड़ा ही सवाल छू अपूंक। हस्तशिल्प में महिलाओं को जोड़न लीजिए हमको के करना छू। सब हूँ पहली तो दिक्कत यह छू कि महिला बात हस्तशिल्प कला तो छू वो करण ले चाह नहीं। समस्या है हमारे दगर फंडे के उनर पा इतू डबल नहीं हूं कि वो अपना काम शुरू कर सको। उनको यो पत्ता नहीं हूं कका अप्रोच करण छू कै दगड़ बात करण छू कसी मको योजना लाभ लेण छू। तो ये एक लीजिए हम के करनू हमर जस जो जो जिला में हमर जिला ग्रामोद्योग अधिकारी छू वो अपन प्रधान माध्यम अल वार्ड पार्षद व्यक्तित्व माध्यम महिला दगड़ मीटिंग कर बेर उनर दगड़ बीट में बैठ बेर बातचीत कर बेर उनको मार्गदर्शन दिबेर बता सकनी कि कसी कसी तुम अपन काम को जोड़ सकता को योजना छन जुनो जनर दगड़ तुम जुड़ बेर एक लाभ ले सकता जिनमें तुमको सब्सिडी लाभ ले मिलो जिनमें तुमको ब्याज छूट ले मिले। और सब बड़ी बात यो छू यो लाभ अलावा के छू तुम जब रजिस्टर है जा खादी बोर्ड में तो जतुले मियल ठहल हुनी हमार उमें अपू पार्टिसिपेट कर सकता
1: स्टॉल लगा सकते
2: हो। अगर तुम उमें इन्वॉल्व है बेर विभाग अगर नहीं जुड़ला तो विभाग लीजिए मुश्किल है जहां अपू को सपोर्ट करना। तो इसी काम करण में कहूं उन्हें रहद मार्ग खुल जानी काम अग। और सबूं ठुल बात यो छू एक महिला जो बहुत भली अपना दबी कुचली तरीकल काम करने चाहिए जब वो कई महिलाओं दगड़ मिले मार्केटिंग करें अपन उत्पाद को लोगों सामने प्रस्तुत करें वो कॉन्फिडेंस लेवल ले बढ़ जा। और वो एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ू वो तरह तरह जाक में जयबिर लोगों दगड़ संपर्क कर बे अगर मार्केटिंग करें हम तो यसले यसले सैनी देख रखी जो इतू स्मार्ट है जानी फिर वो ऑनलाइन ले बेचन भेजानी और दूसरा सामान ले अपन दगड़ बेच देनी। तो यो उनर गाइडेंस उनको ट्रेनिंग दी बेर है सकड़ो वो एक बगैर संभव ना।
1: डॉक्टर अलका एक सवाल और महत्वपूर्ण जो की हमारी बातचीत को केंद्र बिंदु छो वो यो कि हस्तशिल्प से महिला रोजगार था हम कनके जोड़ सका कनके वो स्वावलंबी बन सके ये माँ क्या क्या प्रक्रियाएं छन कनके के हमारे ग्रामीण महिलाएं घरगों की महिलाएं हस्तशिल्प से जुड़े विभिन्न रोजगार कार्यक्रमों से जुड़ सके।
2: या मैं क्यों दोहराए ना कि हस्तशिल्प में महिलाओं योगदान जो छू सब हूँ ठुल योगदान छू। और जैसे कि मैं पहली को समस्या यही छू कामले करण चाहे कामले उनको पर उनको पत्ते नहा कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो छू उनको ये निदान के हॉल

0: उनको हम बतूनू कि भाई हमार विभागक जैसे हमार वहाँ अल्ले वर्तमान में एक MSY छू मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और एक छू PMEGP प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जब मैं हम महिलाओं को जोड़बेर उनर काम शुरू करण में उनर मदद करनू खाली उनर मदद आवेदन भरण में नहीं करण दिक्कत है जे बैंक दगड़ वहां उनको पता ना कि कसी बात करण छू के कौन छू कसी में को अपन प्रोजेक्ट प्रस्तुत करण छू तो हम की करनू हम जब बहुत सारी महिलाएं छन उनमें कुछ यस महिलाएं जो जिजी विशावल छन जो काम करण में तेज छन जनु को काम हो और अपन काम शुरू करण चाहनी हम उनर एक ग्रुप बढ़े दिनों उनर दगड़ एक दो तीन दिन ट्रेनिंग EDP ट्रेनिंग कर दी एक बात उनको समझ में आ जा कि मकई ये काम करण चूंकि लगे ये कन्फ्यूजन ले है जाना मेरे को दो तीन काम होनी अब के करूं मैं वहां ले पहली यहाँ बटी शुरू करण बनू के करला कसी करला कतु डबल जरूरत छू अब डबल जरूरत छू तो कोवाल योजना में हमको तुमको जोड़न छू एक बात सब महत्वपूर्ण बैंक कि लेकिन उनको यो पत्ता ना बैंक मैनेजर दगड़ कस बात करण छू कई बार यस हूँ कि वही मंशा काम करने छू लेकिन वो अपन बात भली के नहीं कह सकने तो बैंक मैनेजर सोचू ना यार ये जो फायद छू वो सब्सिडी में दिखना मैं नहीं दिन तक फिर हम उनको बतूनू और अगर वाले बात नहीं है सकनी तब हम उनर तरफ बे बैंक बैंक से बात कर बे उनर अपन काम शुरू करने में मदद करूं तो यो एक बहुत महत्वपूर्ण बात छू कि महिलान जो हमारे सैनी छन उनको यस EDP प्रोग्राम में भागीदारी करण चाहे समय समय पर विभागों अधिकारी दगड़ मिलन चाहे किले की आप अपू जब स्वयं बात नहीं कर ला दूसर तुम्हारे के नहीं सकर भूख लागला तो रोट मकड़ी खान पड़ा दूसर तक कैबेर के नहीं हो तो बहुत जरूरी छू कि महिलाओं को मुखर है बेर अगिल मुड़ पड़ोल अपना समस्याओं को डिस्कस करण पड़ोल उनर सॉल्यूशन का कैग दगड़ जुड़बेर मिल लो यो देख बाकी सब है जाए
1: बिल्कुल ठीक बोले अपन आप ये खादी ग्राम उद्योग बोर्ड में एक शीर्ष पद पर छन एक लंबो अनुभव छ आपको और हम जो देखना चाहूँ कि एक परंपरागत तौर पर कुछ ही क्षेत्रों में हस्तशिल्प था बढ़ावा दिए जान से हम देखना ये तो घरों की जो हमारा जनन छन वो जैम जेली अचार बनाना छन है ना या फिर डुफरा उफरा बढ़ा देना छन हम वे माँ कुछ और नहीं करने सोचना छो कि नहीं सोचना
0: सोचने है, हम सोचने है, हम उन देहरादून में ले मस्त काम करो आई आई चाल के छू अपू देखना Amazon में वो गोबर एक कंडा जो छन काउ डंक केक कैबेर पांच पांच टिक्की जो छन 300-300 रुपए में बेचड़े तो हम जब ट्रेनिंग करूं ने तो उके एक पैटर्न छू हम जब ट्रेनिंग करूनू हम खाली ट्रेनिंग ये वजह नहीं करूं छू कि तुमको सर्टिफिकेट दूं ने हमारा ट्रेनिंग करूनो मकसद थू सब हूं पहली सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास बढ़ जालो फिर तुमको हम गाइड करूल के काम करण छू अब तुम हम उधर बताओ के करना छा उमे हम तुमको बतूल की भाई यस यस ले कर सकता है सकूं कि तुम्हारे पास सफिशियंट मात्रा में गोबर उपलब्ध छू अब खिड़नो छा तुम गोबर का न खाद बढ़ने न के हूनो दो साल पहली के भाव में यहाँ छी देहरादून हमारे एक NRLM के तैयार जो छन वो नहगी पिथौरागढ़ तो मैं हर्बल कलर खुद बनूनू अरारोटक बिल्कुल प्योर हूनी हूँ मैं जो रंग यूज करनू हम केक में आइसिंग वाल करनू तो आंख में ले लहजो तो के फर्क नहीं पड़े खे लियो केले कर लियो तो कौन लगे कि मैडम यानु को सिखाल मैं को के ने ऑनलाइन में सिखा दियो हम उल सेकंड सैटरडे दिन एक ऑनलाइन रखा मैं 5-6 सैनी NRLM समूह हमारे दगड़ अध्यक्ष जी वो जुड़ गए हम मैल उनको भली का सिखा फिर मैल को तुम एक कुंटल रंग तो बनाओ उकुनई मैडम का सी हॉल नो बिकल लेने मैल को बिक जाता खैर उन्होंने डरम आली 40 किलो बड़ा अब जब बड़ा होला तो बहुत खुश है कि कॉन्फिडेंस बढ़ गो ने लेकिन प्रैक्टिकली जब काम कर छा तो मैं ऐसा कॉन्फिडेंस बढ़ गया अब कॉन्फिडेंस बढ़ाओ तो उनको कौन भेगी मैडम एक मार्केटिंग का सी मैल के ना मैं बतूनू तरीका सी हॉल के कारण ना तुम समूह महिला छा DM मैडम तुम्हार महिला छन CDO साहब छन उनर पास जाओ अपन पैकेजिंग में सामान ले बैठ जाओ उनको बताओ तुम उल के करो अरारोटल बना यो बना यो देखो यो में जो कमी छन हमको बताओ हम अमेंडमेंट कर बे और इम्प्रूवमेंट करूं पहल बात दूसर बात उनुधे कहो हमको के नहीं चाहे तुम उधर बस कैंपस में एक टेबल लगोना अनुमति हमको दी दियो जब मैं हम डिस्प्ले करूं बेचनु कूड़ा नहाने हमको उनको ट्रिक बतून पड़नी यो नहीं कहे कौन छू DM साहबल की दगड़ की मको बेचण छू ना हो एक टेबल दे दियो मको डिस्प्ले करण छू उशेणियाल तसे करो मैडम खुश है गई टेबल लगा 40 किलो रंग उनूल धरो और DM मैडम आई सबों को लीवे रही विकास भवन है DM सर आई मैडम अल फट एक आदेश निकालो जतुले विकास भवन वाल छन सब तनु है बर रंग लेल और ब्याल हूँ 2 घंटे में उन टेबल चट अब उन फोन है मैडम के करू मैल को मैल के आयल छी एक कुंटल बिक जाए तो बस ये मुनी मुनी जो गैप छन है हमार बीच में जो लिंक नहीं होना जैसे तार बटी तार हट जा तो लाइटो कनेक्शन हट जाना उसे हरो दो मुनी तार छुंगा दिलो इतु प्रकाशित है जल ना हमार महिला भाई यो ही गैप जो छू उ जदिन फेल है जल मगर लागणो यस यस प्रोडक्ट निकाल ना मैं

0: আমার যে ছন ইতু অ্যাক্টিভ ইতু এনার্জেটিক ইতু ডেডিকেশন ওয়াল ছন কি ওনকো মোড়ি স্পার্কক জরুরত ছু বাস
1: বস উই ঝেল লগা দিও আপ ইন পেরা কি জান জান আমার মাতা বেড়ো তাই গ্রে বার দিয়া কে বলন চানা ছনা
0: মে ইয়ই কুন চানু সব হু পেলি আমার যে সেনি ছন জনু ইতু जिम्मेदारी अपन कंध में सब चीज ली रखी और भली के वो सब अपन काम करनी कैकल मेर जरूरत पड़ेली पूरे उत्तराखंड में मैं अपन नंबर अपू दगर शेयर कर देने ही कोई ले पूछण कोई क्वेरी छू तुम्हार कोई बातचीत छू कोई गाइडेंस छू कोई काउंसलिंग छू लोकल होला तो मैं तुम्हें निवेदन करूँ कि फेस टू फेस मुलाकात कर लियो लोकल ना था मको फोन करो मैं अपन पर्सनल फोन नंबर आपों को शेयर कर दूँ जहाँ ले भी गाइडेंस की जरूरत हो वहाँ हम उपलब्ध छा हर अपन उस श्रेणी उ चेली उ बेटी उ चल उ भूल जो काम करना चाहो जो स्वावलंबी बनना चाहो जो हस्तशिल्प में काम करो अपन कुटीर उद्योग लगाना चाहो हम जी उपलब्ध छा पूरे उत्तराखंड में कैले मेयर मदद जहाँ का जैले चैल होली मैं अपन नंबर शेयर कर दे अपन दगर मेयर फोन नंबर छू 9410132384 एक बार और रिपीट कर दूंगी मैं अपन नंबर 9410132384 बहुत नंबर नीले उठाओ तो व्हाट्सएप कर दिया यो मेरे व्हाट्सएप नंबर ले छू व्हाट्सएप पर जवाब तुरंत इंस्टेंट मिल जा कबते कबते मीटिंग में हूं तो नंबर न्यूट सकन तो मेरा निवेदन छू यस जन सोचिया फोन न्यूट हो मगर व्हाट्सएप मैसेज अपू ड्रॉप कर सकता अपन समस्या दगड़
1: आपसे बातचीत करी के आपसे बातचीत सुनी की तो बहुत सुंदर लागल डॉक्टर अलका पांडे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद
0: बहुत बहुत आभार नमस्कार
2: अभी अपन सुनिया भेंट वार्ता विषय है हस्तशिल्प और ग्रामोद्योग हमर मेहमान छा डॉक्टर अलका पांडे और यू का दगड़ छुई बद लगाना छे हमर दगड़ बिने ध्यानी विभिन्न कार्यक्रम थे अग्नेश्वर कंदा और आप लिजंदा जौनसार का छुआड़ और सुनदा फकीरा सिंह चौहान का गइयो जौनसारी लोकगीत।

फकीर सिंह चौहान का गयों अभ्यापन सुन यु जौनसारी लोकगीत भे बंदो। रे बार हमार जीवन का अभिन्न अंग हुंदन, हमार लोकगीतों मत चखला पुतला रे बारे बना रेन छे। घुगती कौवा कौ कुण हमार घर गौ पण काण भूले जांद, हिलास आदि चखलों का उल्लेख लोकगीतों में भरपूर छ। भे बंदो कौवा अगर टंकड़ी में काव काव करो छियाई तो बोलन कि मेहमान आण का संदेश कौवा पहले दे दिन, और चखलों का हाव भाव से आण वाला मौसम की जानकारी हमदा मिल जाएंगी। जन की जब वो माटू मा नयादन तो बोलन कि बरखा आण वाल चबल, और जब पानी में गुता मरदन तो घाम होदन। भूकंप आण से पहली किरमला गुरो कीड़ पुटका अपना दूलों बटी बहर निकल जंदन, और गोर बछरा छन भीतर निजंदन। पूर्वा व पछवा चलन से मौसम की जानकारी मिल जान। यूं पूर्ण से पहल भय बनो मौसम शांत हो जान, आप जरूर देखवाल और चखला पुतलों को कक्याता पता नहीं चल दो कुछ जगला पता वाल। फिर पुड़दन यूं मुंडी और कके कके तो खूब डाणो पण जपा जप यूं पण लग जान। ये हमारा परंपरागत ज्ञान पर आधारित हमार पुराना यूं की पहचान भला करी रख छियाई। पर अब भय बनो जो रे बार का कई साधन वे गए न, फोन वे गए न, चिट्ठी पत्र वे गया ही, और अब यहाँ जानकार बहुत कम छन, लेकिन फिर भी रे बार हमार जीवन का अभिनंग छन। और अब कार्यक्रम थे अग्नि सरकाना छा और आपा कुण पटाना छा अंकित का गयु गढ़वा लोकगीत।

बे मैंने यू छाई अंकित कुमार का गयो जौनपुरी गढ़वाल दो गीत, उम्मीद छ कि आप जरूर भल हो गया लगवा लो। और अब बगत होणु च ठीक 6:29 होण वाला छ, यानी कि उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचारों को बगत होण वाल छ। तो बे बंदो आवा सुनदा उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नानकमत्ता में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती समारोह का शुभारंभ किया। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने पौड़ी में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की। आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पिथौरागढ़ पहुंच रहे हैं। स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिल रही नई मजबूती और चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में वट सावित्री पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उधम सिंह नगर जिले के नानकमत्ता में आयोजित वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती समारोह का शुभारंभ किया। साथ ही बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नानकमत्ता साहिब की पावन धरती, जहां गुरुओं का आशीर्वाद सदैव बना रहता है, वहां महाराणा प्रताप जैसे महान राष्ट्रनायक का स्मरण करना गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन त्याग, संघर्ष, साहस और राष्ट्रभक्ति की प्रेरणादायी गाथा है, जो आज भी हर भारतीय को ऊर्जा और गौरव से भर देती है। उन्होंने थारू समाज की परंपराओं, लोकगीतों, लोक नृत्यों और प्रकृति से जुड़ी जीवन शैली को उत्तराखंड की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार जनजातीय समाज के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसके लिए योजनाओं को व्यवहारिक और सरल बनाया जा रहा है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने आज पौड़ी स्थित विकास भवन सभागार में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, खेल, संचार और सामाजिक कल्याण से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। सांसद ने अधिकारियों को जन समस्याओं के समाधान, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ करने के निर्देश दिए।
1: पेयजल विभाग को निर्देश दिया गया कि आने वाले समय में गर्मी के मौसम में किस प्रकार से पेयजल की आपूर्ति को उचित करके रखना है, उस बारे में सबको निर्देश दिया गया है। साथ ही पीडब्ल्यूडी को भी ऐसे जोन है जहां बरसात में आपदा के समय में जहां पर स्लाइड्स आते हैं उनके रखरखाव को किस प्रकार से करना है उसकी तैयारी करनी है। आपदा की तैयारी करने के लिए वो सबको निर्देश दिया। सभी विभागों को कहा गया और सभी से कहा गया है कि जनता के जो समस्याएं हैं, जो आम जन की समस्या है, उसको सब लोग गंभीरता से लिया जाए। अगर लोगों की समस्याओं को जो भी विभाग गंभीरता से नहीं लेगा उसके बारे में सख्त से कार्रवाई की जाए।
0: टिहरी की जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने आज चंबा विकासखंड की बमुंडपट्टी स्थित लावाधार गांव में गेहूं की फसल की क्रॉप कटिंग की। इस दौरान उन्होंने बताया कि क्रॉप कटिंग एक पुरानी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विधि है, जिसके माध्यम से फसलों के उत्पादन का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाता है। जिलाधिकारी ने कहा कि पूरे जिले में चयनित खेतों में नियमित रूप से क्रॉप कटिंग कर कृषि उत्पादन की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा रहा है।
2: एक्सपेरिमेंट जो है वो हमारा काफी पुराना एक हमारी विधि है, जिससे हम लोग जो एक खेत होता है उसकी एक्चुअली एवरेज यील्ड क्या है और उस एक खेत की एवरेज यील्ड से निकाल के जब हम डिफरेंट जगह लिए रैंडमली हम लोग पूरे जिले में खेत सिलेक्ट करते हैं तो उसे पूरे एक जिले की और ऐसे ही हर जिले की निकाल के पूरे प्रदेश की हर हमारी खेत भूमि है कितनी उपजाऊ है, उसका यील्ड कितना है, उस हिसाब से एक मानक निकल के आता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है फॉर प्लानिंग होता है कि हमारे जो खेतों की उपजाऊ वैल्यू है, प्रोडक्टिविटी है, वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यदि वो डिक्रीज हो उसके क्या कारण है, इंक्रीज हो रही है तो हम उसको और बेहतर क्या कर सकते हैं। तो ये सब एक बहुत ही डेटा मैकेनिज्म जो पूरा हमारा करने का है।

0: उन्होंने कहा विभाग द्वारा इस पहल को आगे भी निरंतर जारी रखा जाएगा।
1: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: पहली मई से शुरू हुई आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा में देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पिथौरागढ़ पहुंच रहे हैं। मात्र 16 दिन में ही 10,000 से अधिक श्रद्धालु आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन कर चुके हैं। वहीं यात्रा को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन द्वारा बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, जिससे यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। आदि कैलाश यात्रा से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती मिल रही है। विशेष रूप से होमस्टे, होटल व्यवसाय, स्थानीय उत्पाद, हस्तशिल्प और परिवहन सेवाओं से जुड़े लोगों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। सीमांत क्षेत्रों में संचालित होमस्टे में इस वर्ष विशेष रौनक देखने को मिल रही है, जिससे स्थानीय लोगों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा अब केवल धार्मिक आस्था का ही केंद्र नहीं, बल्कि सीमांत क्षेत्रों के आर्थिक विकास, स्वरोजगार और पर्यटन आधारित आजीविका का एक मजबूत माध्यम बनकर उभर रही है। राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचने से सीमांत क्षेत्र विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में आज वट सावित्री का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। बागेश्वर के बागनाथ मंदिर में सुबह से ही महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी। जिले के दूरदराज क्षेत्रों से पहुंची महिलाओं ने व्रत रखकर मंदिर परिसर में स्थित वट वृक्ष की पूजा अर्चना और पति की दीर्घायु, परिवार की सुख समृद्धि तथा अखंड सौभाग्य की कामना की। श्रद्धालु उमा गुरुरानी ने कहा कि वटवृक्ष की पूजा करने से मन को शांति मिलती है और परिवार की सुख समृद्धि की कामना पूरी होती है।
2: ये वट सावित्री का व्रत साल में एक बार आता है। ये सभी बहनें अपने सौभाग्य प्राप्ति के लिए व्रत की करते हैं। ये व्रत बहुत अनिवार्य माना जाता है और साल भर में अमावस्या के दिन ये व्रत किया जाता है। इस दिन सारी महिलाएं, सुहागिन महिलाएं इस व्रत को करती हैं और माँ से विनती करती हूँ कि सभी बहनें हमारी जो भी हैं सदा सुहागिन रहें, सदा सौभाग्यवती रहें।
0: वहीं पंडित पूरन जोशी ने बताया कि वट सावित्री पर्व का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है।
3: पौराणिक कथा है सत्यवान सावित्री की, जिसमें सावित्री सत्यवान को दोबारा पुनर्जीवित कर देती है। उसी के लिए आज हम ये सत्यवान सावित्री की पूजा करते हैं और अखंड सौभाग्य की करता ये व्रत। जो भी सौभाग्यशाली महिलाएं होती हैं उसके लिए एक बहुत बड़ा वरदान है, बहुत बड़ा व्रत है।
0: उधर चंपावत और पिथौरागढ़ में भी सुबह से ही महिलाओं ने व्रत रखकर मंदिरों और वट वृक्ष की पूजा अर्चना की तथा पति की लंबी उम्र और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। चंपावत जिला सेवायोजन कार्यालय में आज रोजगार मेला आयोजित किया गया। टाटा मोटर्स की सहायक कंपनी की ओर से 900 रिक्तियों के लिए लगातार भर्ती मेले में सैकड़ों बेरोजगार युवाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन किया गया। चयनित अभ्यर्थियों की तैनाती कंपनी के पंतनगर रुद्रपुर प्लांट में की जाएगी। जिला सेवायोजन अधिकारी राजेंद्र प्रसाद पंत ने बताया कि रोजगार मेले में चयनित अभ्यर्थियों को एक सप्ताह के भीतर पंतनगर में नियुक्ति के लिए बुलाया जाएगा।
4: रोजगार मेला आज आयोजित किया गया है। इसमें टाटा मोटर्स के लिए भर्ती की जा रही है और इसमें इंटरमीडिएट, आईटीआई, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सभी के लिए रोजगार के अवसर हैं और बच्चे आज बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ साक्षात्कार दे रहे हैं और साक्षात्कार के बाद अगले हफ्ते ही उनकी ज्वाइनिंग भी है।
0: रोजगार मेले में साक्षात्कार देने वाली सुमन और सूरज ने इसके लिए सरकार का आभार जताया।
5: यहाँ पे टाटा मोटर्स से इंटरव्यू चल रहे हैं जिसमें मैं अभी दे के आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सरकार की तरफ से पहले जो अच्छी है, जो महिलाओं के लिए चल रही है और मेरे साथ और भी लड़कियों ने इंटरव्यू दिए।
6: यहाँ रोजगार मेला है इसके लिए मैं अपना इंटरव्यू देने आया हूँ और उम्मीद है कि मेरा यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नानकमत्ता में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती समारोह का शुभारंभ किया। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने पौड़ी

0: में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की। आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पिथौरागढ़ पहुंच रहे हैं। स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिल रही नई मजबूती और चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में वट सावित्री पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: विभिन्न उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचारों का बाद एक बार फिर से आप सभी को कार्यक्रम में स्वागत। मिछो मीना उनियाल और उम्मीद कनु लग्यू छो कि म्यार दगड़ छन हमार सभ्य सुंदर भेबंदा। विभिन्न आज का समय में ऊर्जा संरक्षण की बहुत जरूरत छ। ऊर्जा का कई स्रोत छन, जैसे कि देश दुनिया का सारा कारोबार चल दो, जन की कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और जल विद्युत, ये सभ्य पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत छन। ये प्रकृति द्वारा हम ते उपहार का रूप में दिया छन और लाखों साल यूं थे बण में लगदन और ये सीमित छन। तो सोच समझी कन प्रयोग करना, जैसे अग्ने आने वाले पीढ़ी कुण ऊर्जा बची रहे। भेबंदो, ऊर्जा का जो दूसरा स्रोत छन वो छन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। यूं सभ्यों का सही से उपयोग करके हम प्राकृतिक ऊर्जा का जो स्रोत छन वहाँ थे हम ऊर्जा का संरक्षण कर सकदा। सबसे पहले हम तेने घर बटे की ही शुरुआत करन चाहें। पेट्रोल डीजल की बजे सौर ऊर्जा या फिर इलेक्ट्रॉनिक जो गाड़ियाँ आजकल चलन छन उनका उपयोग करण, पब्लिक वाहनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करण, और अपन छोटा मोटा काम या तो पैदल का जेकन कर लिया या फिर साइकिल में। हमार तो भेबंदो आदत खराब हुआ छन, हम क्या कर दा कि 10 बार दुकान में जाड़ना और घर पकड़ स्कूटी और गगराड़ के करना, कई बार चीनी लाण, कई बार चापत्ती लाण, कई बार दूध दही, तो सब या सामान एक बार ले दिन और एक बार लाण और अपन घर जो न्यार द्वार दुकानी छन हम तो पैदल जा सकदन। और लाइट, पंखा, बिजली फालतू कत्ते नहीं चलान। सोलर ऊर्जा का प्रयोग करण, पानी की बचत करण और जग तक हुआ पैदल चलने की आधा डलन। आप दिखना वेली है, आप तो पता हुआ कि हमारे पुरानो तो कई किलोमीटर पैदल चलते थे, लेकिन हम अपना आदत खराब कर गए। हम आराम तलब हो गया, जैसे कि आज कि हमारे स्वास्थ्य जल्दी खराब हो, और अगर हम हिटना की आदत बंडी दियोला, अपना छोटा मोटा काम हिटिकन ही कर लीला, तो जैसे कि आज हमारे स्वास्थ्य भी बढ़ रहा और पेट्रोल डीजल भी बचत हुई। तो भेबंदो इन हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखला तो ऊर्जा का संरक्षण करके हम अपन देश का विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता और हमारे जिम्मेदारी भी। तो आप सभ्य आज बटे ही ऊर्जा की बचत करना शुरू कर दिया। और दगड़ में ही भेबंदो अब मैं आप तक सुनाना छो एक गढ़वाली लोकगीत।

फिर बंदो अभी आपन सुनियो गढ़वाली लोकगीत। और अब उत्तराखंड गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों को बगत हो गया तो आवाज सुन दा।

0: सलमा उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटकी गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी मी सविता बर्थवाल। पहली मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली कि वैश्विक चुनौतियों का बीच भारत मजबूत और भरोसेमंद अर्थव्यवस्था का रूप में उभरी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान थे चेतावनी, बोली पाकिस्तान आतंकवादियों थे पनाह देण और भारत का खिलाफ आतंकी गतिविधियों थे बंद करो। राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता 2% से बढ़की 60% करे गया, यू 1 जनवरी 2026 से लागू होलो। प्रदेश सरकार ने श्रमिकों थे न्यूनतम वेतन और वैधानिक सुविधाएं समयबद्ध तरीका से उपलब्ध कराने का निर्देश देनी। और गढ़वाल सांसद अनिल बलून ने पौड़ी में आयोजित दिशा बैठक में जन समस्याओं का त्वरित समाधान की आवश्यकता पर बल दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली कि पहली कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जन चुनौतियों का कारण यू दशक दुनिया खुने की आपदाओं को दशक बन दो जानू च। नीदरलैंड का हेंग में आयोजित कार्यक्रम थे संबोधित करदा उन बोली कि यूं परिस्थितियों में तेजी से सुधार नहीं होल तो पिछला कई दशक की उपलब्धियां प्रभावित हो सकती ने और बड़ी आबादी थे फिर से गरीबी की तरफ धकेले जा सकत।
2: आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। साथियों, ऐसी वैश्विक परिस्थितियों में आज दुनिया रेजिलिएंट सप्लाई चेन की बात कर रही है और तब भारत और नीदरलैंड मिलकर एक ट्रस्टेड, ट्रांसपेरेंट और फ्यूचर रेडी सप्लाई चेन बनाने में जुटे हैं।
1: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान थे कड़ी चेतावनी देंदा बोली कि वे थे आतंकवादियों थे पनाह देण और भारत का खिलाफ गतिविधियां चलान बंद करण होला। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने बोली कि अगर पाकिस्तान भारत का खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रख लो तो वे से एक बड़ो फैसला लेण होलो। सेना प्रमुख की यह टिप्पणी भारत का आतंकवाद का खिलाफ सख्त नीति थे दर्शादो च। राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों थे बड़ी राहत दींदा महंगाई भत्ता वृद्धि करी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार की तर्ज पर महंगाई भत्ता की दर 58% से बढ़े की 60% प्रत्येक महीना करने को मंजूरी दिया। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2000 से प्रभावी होली। ये कदगड़ी ही मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं खुणे की लगभग 50 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान करी। ये मां पुलिस आवास निर्माण और पार्किंग निर्माण से जुड़िया काम शामिल छिन। स्वीकृति योजनाओं का अंतर्गत हल्द्वानी फायर स्टेशन मा आवास निर्माण, चंपावत जिला मा पुलिस आवास निर्माण, अल्मोड़ा और चमोली मा पार्किंग निर्माण कामों के मंजूरी दिया। राज्य में श्रमिकों थे न्यूनतम वेतन और अन्य वैधानिक सुविधाएं समयबद्ध और पारदर्शी तरीका से उपलब्ध कराने का निर्देश दिए गए। देहरादून में प्रमुख सचिव आर के सुधांशु की अध्यक्षता में आयोजित बैठक उद्योग प्रतिनिधियों और अधिकारियों का दगड़ी श्रमिक हितों तथा औद्योगिक शांति थे लेकर चर्चा करे गया। बैठक में श्रमिकों थे न्यूनतम वेतन, ओवर टाइम, बोनस और अन्य सुविधाएं निर्धारित मानकों का अनुरूप उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। प्रमुख सचिव ने अधिकारियों से निर्देश देने की सभी औद्योगिक संस्थान श्रम कानूनों को पालन पूरा करण सुनिश्चित कराया। श्रमिकों का दगड़ी सुनिश्चित नियमित संवाद बनाए रखा। उन संबंधित अधिकारियों से व्यापक स्क्रीनिंग दोबारा करण का निर्देश भी देनी ताकि यू सुनिश्चित किए जा सको कि श्रमिकों से निर्धारित मानकों का अनुसार वेतन और अन्य सुविधाएं मिलनी छिनी।
3: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो जे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
1: गढ़वाल सांसद अलीन बनूनी ने आज पौड़ी स्थित विकास भवन सभागार में आयोजित दिशा की बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाएं और विकास कामों की समीक्षा करी। उन अधिकारियों थे जनसभाओं का समाधान, योजनाओं की प्रभावी क्रियान्वयन तथा जनहित से जुड़िया कामों थे प्राथमिकता देण का दगड़ी संचालित करण का भी निर्देश दीनी। सांसद ने बताया कि गर्मी का मौसम में पेयजल की कमी दूर करण और आने वाली बरसात का दौरान आपदा से निपटन खुणे की आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करण पर जोर दिया।
4: आज हमारे पौड़ी जनपद की दिशा की बैठक हुई है, उसमें तमाम सभी विभागों के प्रमुख लोगों ने भागीदारी की है और सभी लोगों से जो पिछली बैठक थी उसके फीडबैक भी लिया गया है, वो कामों पे कितनी प्रगति है उस बारे में पूछा गया है, साथ आने वाले समय के लिए क्या क्या तैयारियां उस पर भी चर्चा हुई है। पेयजल विभाग को निर्देश दिया गया है कि आने वाले समय में गर्मी के मौसम में किस प्रकार से पेयजल की आपूर्ति को उचित करके रखना है, इस बारे में सबको निर्देश दिया गया है। साथ ही PWD को भी ऐसे जोन है जहाँ बरसात में आपदा के समय में जहाँ पर स्लाइड्स आते हैं उनके रख रखाव को किस प्रकार से करना है उसकी तैयारी करनी है, आपदा की तैयारी करने के लिए भी सबको निर्देश दिया गया।
1: बैठक में मानव वन्यजीव संघर्ष और बाघ का हमलों की घटनाओं पर भी चर्चा करी। सांसदन प्रभावित परिवारों थे त्वरित राहत उपलब्ध कराने का आवश्यक कार्रवाई में तेज लाने का निर्देश देनी। चारधाम यात्रा पूरा उत्सव और श्रद्धा का दगड़ी होनी चाहिए। चारधाम यात्रा के अंतर्गत बद्रीनाथ धाम में भगवान नारायण का दर्शन खुणे की श्रद्धालुओं को सैलाब उमड़न च। प्रसिद्ध आध्यात्मिक प्रवक्ता और कथावाचक देवी चित्रलेखा ने श्री बद्रीनाथ धाम का दर्शन करें। दर्शन का बाद उन धाम मां करेंगे व्यवस्थाओं की सराहना करी।
5: राधे राधे, जय बद्री विशाल। आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि आज श्री बद्रीनाथ धाम में आकर के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये उनकी कृपा ही है कि उनके चरणों तक कोई पहुँच पाता है और उस दर्शन के लिए माध्यम बनने के लिए यहाँ जो भी पुलिस डिपार्टमेंट है उन्होंने खूब सेवा करी, सहयोग किया।
1: वकी चारधाम यात्रा थे लेके कुमाऊं मंडल में परिवहन विभाग पूरी तरह से सतर्क नजर आने च। यात्रियों की सुविधाओं ते ध्यान में रखदा व्यवसायिक गाड़ियों खुणे के ग्रीन कार्ड अनिवार्य करेगी ने। कुमाऊं संभाग का परिवहन अधिकारी गुरुदेव सिंह ने बताया कि रुद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वानी और टनकपुर RTO कार्यालयों में अब तक 498 ग्रीन कार्ड जारी करेगी ने। उन बताया कि कहीं भी गाड़ी थे यात्रा पर जाने से पहले निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करण अनिवार्य होली।
6: चारधाम यात्रा के लिए व्यावसायिक वाहनों में सवारी गाड़ी के लिए ग्रीन कार्ड होना आवश्यक है। ग्रीन कार्ड जारी करने से पूर्व वाहन का परीक्षण किया जाता है। वाहन के परीक्षण होने और वाहन के प्रपत्र कंप्लीट होने के उपरांत और चालक का लाइसेंस व्हील एंडोर्समेंट होने के पश्चात उसको ग्रीन कार्ड जारी किया जाता है। हल्द्वानी संभाग के अंतर्गत जो 5 ऑफिस है उसमें जो वर्तमान समय तक 498 जो है ग्रीन कार्ड जारी किए जाते हैं।
1: प्रदेश में जनगणना को पहलू चरण को काम तेजी से अग्ने बढ़नु च। राज्य में मकानों की सूचीकरण और आवास जनगणना का लगभग 70% काम पूरा हो गया। अब तक जनगणना टीमों ने 19,00,000 घरों तक पहुंची की लगभग 46,00,000 लोगों को डाटा इकट्ठा करे ली। भारत में महा रजिस्टर और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायणन प्रमुख सचिव RK सुधांशु का दगड़ी वर्चुअल बैठक कर जनगणना कामों की समीक्षा करी। बैठक में जिलाधिकारी और नगर आयुक्त से प्रगति की जानकारी भी ले। अधिकारियों ने बताया कि शेष 10 दिनों में निर्धारित लक्ष्य पूर्ण होने की संभावना च। बैठक में जनगणना आयुक्त ने बोली कि आंकड़ों की गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण च, किले की ये का आधार पर भविष्य की योजनाएं और परिसीमन तय होलू। उन सभी अधिकारियों थे डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने का निर्देश देने। आखिर में मुख्य समाचार एकदा फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत मजबूत और भरोसेमंद अर्थव्यवस्था का रूप में उभरी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान थे चेतावनी, बोली कि पाकिस्तान आतंकवादियों थे पनाह देण और भारत का खिलाफ आतंकी गतिविधियों थे बंद करूं। राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता 2% से बढ़की 60% करे गया, यू 1 जनवरी 2026 से लागू होलो। प्रदेश सरकार ने श्रमिकों थे न्यूनतम वेतन और वैधानिक सुविधाएं समयबद्ध तरीका से उपलब्ध कराने का निर्देश देने। और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने पौड़ी में आयोजित दिशा बैठक में जन समस्याओं का त्वरित समाधान की आवश्यकता पर बल दिया। ये कदगड़ी ही गढ़वाली में

0: समाचारों के अंक समाप्त हों। नमस्कार।
1: भिवनो उत्तराखंड के गढ़वल में प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी कार्यक्रम ग्राम जगत बटवाल की मीना उन्याल थे आज्ञा दिया। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 MHz पर। अब किसान साथी सुनेंगे कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को प्रतिभा नेथानी का नमस्कार। किसान साथियों, आज है शनिवार और आज हम आपके लिए लेकर आते हैं हेलो लोकमंच कार्यक्रम। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में अपने मनपसंद लोकगीत एवं रागनियां सुनने के लिए आप हमें कॉल करते हैं प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 1:30 से 2 बजे तक। आज लोकमंजरी में लोकगीत सुनवाने से पहले आइए एक छोटी सी जानकारी आपको दे दें। यह जानकारी है धान की नर्सरी के बारे में। किसान साथियों, धान की नर्सरी तैयार करने का सबसे उपयुक्त समय है 15 से 20 मई तक। एक एकड़ खेत की रोपाई के लिए लगभग 10-12 किलो बीज को 20-25 गुंठा जमीन में बोएं। बुआई से पहले बीजों को 24 घंटे पानी में भिगोकर अंकुरित करें और बीज उपचार जरूर करें। बीज चयन और उपचार, अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों को चुनें। खराब और हल्के बीजों को हटाने के लिए नमक के पानी का घोल बनाएं। बीजों को 2 ग्राम बावस्टीन 3 ग्राम सफ प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। बीज को अंकुरित करने के लिए 15-20 घंटे पानी में भिगोएं, फिर बोरी में बांधकर 24 घंटे के लिए गर्म स्थान पर रखें। नर्सरी के लिए उपजाऊ भुरभुरी और समतल मिट्टी चुनें। मिट्टी की 2-3 बार गहरी जुताई अवश्य करें। प्रति एकड़ के लिए लगभग 10-12 गाड़ी सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाएं। मिट्टी में 10-10 किलो नाइट्रोजन, फास्फोरस और जिंक सल्फेट प्रति एकड़ की दर से मिलाएं। उसके बाद क्यारी में 3 से 5 सेंटीमीटर पानी का भराव करें। अंकुरित बीजों को समान रूप से छिड़कें। बुआई के बाद बीजों को या मिट्टी की पतली परत से ढक दें। पक्षियों से बचाने के लिए शुरुआती 2-3 दिनों तक क्यारी को ढककर रखें और नर्सरी में 15-20 दिनों तक पानी की व्यवस्था रखें। हेलो
1: हेलो
0: जी, कौन बोल रहे हैं आप?
1: जी, मेरा नाम नीरज नथानी है
0: जी,
1: मैं श्रीनगर गढ़वाल से बोल रहा हूँ।
0: तो नीरज जी, आप रेडियो सुनते हैं?
1: जी, कभी कभी।
0: अच्छा, क्या क्या सुनते हैं आप रेडियो में?
1: मैं गाने सुनता हूँ, जो लोकगीत पसंद है।
0: अच्छा,
1: वार्ताएं भी सुनता हूँ, कहानी भी सुनता हूँ
0: जी। तो बताइए कि आप अपनी पसंद का कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मैं एक बढ़िया सा कोई पहाड़ी लोकगीत सुनना चाहता हूँ, पहाड़ी धुन के साथ, उत्तराखंड की जिसमें सब कुछ की झलक हो। आप मुझे ऐसा गीत सुना सकती हैं?
0: हाँ हाँ बिल्कुल, हम आपको आपकी पसंद का गीत सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। तो जो ये चार धाम यात्रा है उसके बारे में कुछ बताइए, कैसी चल रही है
1: यात्रा? बहुत अच्छी चल रही है। पूरे देश के कोने कोने से, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, लगभग उत्तर भारत की जो स्थान से यात्री आ रहे हैं, और चूंकि व्यवस्थाएं ठीक है, मौसम ठीक है, रोड ब्लॉक नहीं है
0: जी,
1: तो निर्बाध रूप से यात्रा हो रही है। लोग दर्शन करने जा रहे हैं, मंदिरों में जयकारे गूंज रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पर अपनी क्लिप्स भी डाल रहे हैं, सेल्फी भी डाल रहे हैं
0: जी जी।
1: इसे देखकर लग रहा है कि यात्रा जो है अपनी सर्वोत्कृष्ट ओर अग्रसर है।
0: अच्छा, तो आज आपने हमें कॉल किया, हम आपके बहुत आभारी हैं।

0: आपने कॉल किया है हेलो लोक मंजरी कार्यक्रम में।
1: हाँ जी हाँ जी, मेरा नाम वत्सल है और मैं काफी खुश हूँ आपने मेरी कॉल उठाई।
0: जी, तो इसका मतलब आप रेडियो सुनते हैं।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: वत्सल, क्या करते हैं आप?
1: मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ,
0: अच्छा, कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं आप?
1: डून यूनिवर्सिटी। मैं इंग्लिश ऑनर्स कर रहा हूँ, मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है अभी करेंटली। हाँ
0: अच्छा
1: जी,
0: ठीक है, तो ये बताइए कि रेडियो में आप कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं?
1: वैसे तो मुझे ज्यादा समय मिलता नहीं है सुनने के लिए, बट युवाणी जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं सुनने का कोशिश करता हूँ।
0: अच्छा, तो आज आपने कॉल किया है लोक मंजरी में, कोई खास गीत
1: जी,
0: सुनना चाहते हैं आप?
1: कोई स्पेसिफिक गाना तो नहीं है, पर अगर आप कुछ नरेंद्र सिंह नेगी जी के द्वारा बजा सकते हैं तो अच्छा लगेगा मुझे काफी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और हमें ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि आजकल के जो नौजवान बच्चे हैं वो भी हमारे पहाड़ी गीतों को इतना पसंद करते हैं, और हम आपकी पसंद का गाना जरूर सुनाएंगे। आपने हमारे कार्यक्रम में कॉल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: हेलो
4: हेलो,
3: हाँ जी, हेलो लोक मंजरी कार्यक्रम में आपने कॉल की है।
4: जी मैम, मैं एक रागिनी सुनना चाह रहा था मैडम।
3: जी अच्छा, हम आपको आपकी पसंद की रागिनी सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये भी तो जान ले कि कौन बोल रहे हैं आप।
4: मेरा नाम प्रेम सिंह नेगी है
3: जी,
4: मैं देवांचल बिहार का निवासी हूँ मैडम।
3: अच्छा, क्या करते हैं आप?
4: मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ।
3: अच्छा, रेडियो सुनते हैं आप?
4: बहुत ज्यादा तो नहीं, पर थोड़ा बहुत सुनता हूँ मैम।
3: अच्छा, तो इस थोड़ा बहुत में आप क्या क्या सुनते हैं?
4: जो लोकगीत होते हैं ये हरियाणा, जो उत्तर, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश वगैरह में जो गाए जाते हैं, इस तरह के रागिनी।
3: अच्छा,
4: इस तरह के गाने पसंद करता हूँ मैम।
3: जी, तो रागिनी में आपको क्या अच्छा लगता है?
4: किस सेंस में मैम? जैसे ये तो जैसे लोक कथाओं का होता है इसमें, प्रेम प्रसंगों और सामाजिक मुद्दों पे भी लोग इसमें रागिनी बनाते हैं, गाते हैं।
3: जी जी जी, तो और बताइए और क्या क्या करते हैं आप?
4: बाकी हम सभी कुछ करते हैं, जो नित्य प्रतिदिन किए जाने वाली एक्टिविटीज होती हैं, स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड रहते हैं।
3: अच्छा,
4: और बाकी फैमिली के टेक केयर करना, और बाकी थोड़ा बहुत सामाजिक कार्यों में प्रतिभाग करना।
3: अच्छा,
4: इस तरह के कार्यों में इंटरेस्टेड रहते हैं मैडम।
3: तो कुछ बताइए कि सामाजिक कार्यों में किस तरह के काम?
4: जैसे कई लोगों के एनजीओ हैं, उसमें किसी प्रकार

0: का जैसे उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना, फिजिकली कंट्रीब्यूट करना या किसी को आर्थिक रूप से मदद करना,
1: हाँ जी।
0: इस तरह के जो सामाजिक कार्य होते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, वृद्धावस्था जो ये वृद्धाश्रम वगैरह होते हैं, इस तरह की कोई हेल्प है, या कोई जो किसी भी प्रकार की सोशल हेल्प होती है, जैसे कोई लोग मांगते हैं हमारे ग्रुप में है, दोस्त लोग जो जुड़े हैं उनके
1: जी
0: साथ मिलके हम लोग इस तरह के कार्य करते हैं।
1: जी जी जी तो जो आपका ग्रुप है उसमें भी लोगों को बताइए कि आकाशवाणी देहरादून से कार्यक्रम आता है हेलो लोक मंजरी, जिसमें कॉल
0: ओके
1: करके
0: ओके
1: वो सब अपनी पसंद के लोकगीत या रागनियां सुन सकते हैं। तो नेगी जी, आज आपने हमें कॉल किया, हमें बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इसी तरह से जुड़े रहिए हेलो लोक मंजरी से।
0: धन्यवाद मैडम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।

0: 20 से अधिक वर्षों का अनुभव, 20 से अधिक देशों में आयुर्वेद सेवा,
1: नाड़ी परीक्षण, पंचकर्म चिकित्सा, नेत्र रोग, यूरेथरल स्ट्रक्चर और अल्सराइटिव कोलाइटिस का विशेष उपचार,
0: स्वनिर्मित आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ।
1: व्हाट्सएप 7895372936।
0: पूर्ण उपचार चाहिए तो मिलिए नाड़ी वैद्य राहुल गुप्ता से। श्री विश्व प्रांगण आयुर्वेद, पुराना शिव मंदिर, मुखानी चौराहा, हल्द्वानी। शनिवार छोड़कर पूरे सप्ताह उपलब्ध।
2: हेलो,
3: मैं झारखंड से बोल रहा हूँ, देवेश
2: जी। मुझे लगता है आपसे पहले भी बात हुई है।
3: जी हाँ जी हाँ, एक बार मैं और मैंने किया था।
2: जी जी, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है ये जानकर कि हमारा कार्यक्रम झारखंड में भी सुना जाता है।
3: जी बिल्कुल।
2: अच्छा, तो ऐसा लग रहा है कि आप रेडियो के नियमित श्रोता हैं।
3: नियमित नहीं कहा जा सकता, बट मैं सुनता हूँ।
2: अच्छा, कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं?
3: रेडियो, चूंकि हमारे पास समय कम होता है, यात्रा में रहता हूँ तो रेडियो सुन लेता हूँ।
2: अच्छा, यात्रा में रहते हैं आप, क्या काम करते हैं आप?
3: मैं तो पुलिस में हूँ, मगर एरिया में घूमना होता है। अभी पेट्रोलिंग ही कर रहा हूँ, तो रात में तो FM लगा दिया या कुछ लगा दिया, तो अपना दोनों काम हो गया।
2: अच्छा, तो वैसे भी माना यही जाता है कि पुलिस की जो नौकरी है वो काफी नीरस मानी जाती है, तो ऐसे में आपने रेडियो को अपना साथी बनाया है, ये जानकर हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है।
3: नहीं, रेडियो तो हमारा पहले से भी, जब मैं पढ़ता था उस समय से साथी रहा है। मैं खूब सुनता था।
2: अच्छा,
3: ये उस समय शायद आपको याद हो, रेडियो सिलोन आया करता था, श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन।
2: जी जी बिल्कुल।
3: उनके हर हिंदी प्रोग्राम का मुझे मुझे याद था, किस समय होना है उसका, हिंदी गाने आने हैं या फिर समाचार आने हैं।
2: जी जी।
3: FM तो नहीं हुआ करता था, मगर और सब जो रेडियो स्टेशन थे।
2: हाँ जी हाँ जी।
3: उनके सारे में याद रखता था, वॉइस ऑफ अमेरिका, BBC, इसी माहौल में पला बड़ा हूँ, इसलिए रेडियो पहला प्यार है।
2: तो आपको मैं एक जानकारी देती हूँ कि इसी 8 मई को रेडियो ने 90 वर्ष पूरे किए अपनी स्थापना के। 8 मई 1936 को ये शुरू हुआ था और आज भी ये बिल्कुल वैसे ही चल रहा है कि आप जैसे श्रोता इसे इतना प्यार दे रहे हैं, इसको इस तरह से सुनते हैं। तो आज आपने
3: संयोग भी है मेरा, क्या पता नहीं। उसी दिन मैं भी पैदा हुआ था, 8 मई को।
2: अच्छा, तो रेडियो के साथ तो ये बड़ा सुखद संयोग है आपका।
3: जी इस बार आप अपनी पसंद के भोजपुरी, मैथिली या और भी अंगिका, जो हमारे यहाँ बिहार झारखंड में जो लोक भाषाएं हैं, उनमें से कोई एक बढ़िया से चुनकर सुना दिया गया।
2: जी बिल्कुल।

किसान साथियों, इसके साथ ही हमारा आज का हेलो लोकमंजरी कार्यक्रम समाप्त होता है। साथियों, यदि आप भी अपनी पसंद के गीत सुनना चाहते हैं तो प्रत्येक शुक्रवार 1:30 से 2 बजे के बीच आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7088001382। इसके साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। प्रतिभा नैथानी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी किसान साथी सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 MHz पर। शाम के 7:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कुमाऊनी प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटे कुमाऊनी प्रादेशिक समाचार नुगदगढ़ मीछू श्रुति शर्मा। पहली मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि वैश्विक चुनौतियों के बीच मां भारत मजबूत और भरोसेमंद अर्थव्यवस्था के रूप मां उभरनो। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी पाकिस्तान के चेतावनी को पाकिस्तान आतंकवादियों के पनाह दृण और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए बंद करो। राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्त 2% बढ़े बेर 60% करीगो। यो 1 जनवरी 2026 बटे लागू होल। प्रदेश सरकार श्रमिकों के न्यूनतम वेतन और वैधानिक सुविधाओं के टेमल और तरीकल उपलब्ध करुणक निर्देश दें। और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी पौड़ी में आयोजित दिशा बैठक में जन समस्याओं जल्द सुलटौणक जरूरत पे बल दे। अब समाचार विस्तारल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि पहली कोविड महामारी वी बात युद्ध और अब ऊर्जा संकट जस चुनौतियों कारण यो दशक दुनिया के लीजी आपदाओं दशक बढ़ते जनो। नीदरलैंड के हेग में आयोजित कार्यक्रम के संबोधित करते हुए उन्होंने को कि यो परिस्थितियों में तेजी सुधार नहीं होल तब तलक बीती कई दशकों की उपलब्धि प्रभावित है सकूं और ठूल आबादी गरीबी ओर ले जा सकूं।
2: आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। साथियों, ऐसी वैश्विक परिस्थितियों में आज दुनिया रेजिलिएंट सप्लाई चेन की बात कर रही है और तब भारत और नीदरलैंड मिलकर एक ट्रस्टेड, ट्रांसपेरेंट और फ्यूचर रेडी सप्लाई चेन बनाने में जुटे हैं।
1: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी पाकिस्तान के चेतावनी देते हुए कहो कि उके आतंकवादियों के पनाह देण और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के चलून बंद करण हल। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी कहो कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां करते रहल तो एक ठुल फैसल लिण पड़ल। सेना प्रमुख हल यो टिप्पणी भारत आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति के लिए दर्शू। राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के ठुल राहत देते हुए महंगाई भत्ता वृद्धि करी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील केंद्र सरकार तर्ज पर महंगाई भत्ता दर 58% है बढ़े बेर 60% प्रतिमाह करणक मंजूरी देहली। यो बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 बटे प्रभावी होली। यह कदगढ़ ही मुख्यमंत्री विभिन्न विकास योजनाओं के लिए लगभग 50 करोड़ रुपए वित्तीय स्वीकृति ले प्रदान करी। यमे पुलिस आवास निर्माण और पार्किंग निर्माण से जुड़ी काम शामिल छन। स्वीकृत योजनाओं के अंतर्गत हल्द्वानी फायर स्टेशन में आवास निर्माण, चंपावत जिले में पुलिस आवास निर्माण और यह कदगढ़ अलमड़ चमोली में पार्किंग निर्माण के लिए मंजूरी दी गई छू। राज्य में श्रमिकों न्यूनतम वेतन और अन्य वैधानिक सुविधाओं का टैम पर और पारदर्शी तरीकल उपलब्ध करने का निर्देश दें। देहरादून में प्रमुख सचिव आर के सुधांशु अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उद्योग प्रतिनिधियों और अधिकारियों दगर श्रमिक हितों और औद्योगिक शांति के लिबेर चर्चा करी गई। बैठक में श्रमिकों के न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम, बोनस और सुविधाओं के निर्धारित मानकों के अनुरूप उपलब्ध करुण पर ले जोर दी गो। प्रमुख सचिव अधिकारियों के निर्देश दी कि सभ्य औद्योगिक संस्थान श्रम कानून पुर पालन सुनिश्चित करो और श्रमिकों के दगड़ नियमित संवाद बढ़ाई जाओ। उन्हें संबंधित अधिकारियों के व्यापक स्क्रीनिंग दोबारा करने के लिए निर्देश दें। जैक वजल यह सुनिश्चित करी जा सकल कि श्रमिकों के निर्धारित मानकों के अनुरूप वेतन

0: दल बता कि गर्मी के मौसम में पेयजल कमी के दूर करनक और ऊण वाल बरखा ऋतु दौरान आपदा है निपटनक लीजी जरूरी तैयारियों पुर करण पहले जोर दी गो।
1: आज हमारे पौड़ी जनपद की दिशा की बैठक हुई, उसमें तमाम सभी विभागों के प्रमुख लोगों ने भागीदारी की है और सभी लोगों से जो पिछली बैठक थी उसके का फीडबैक भी लिया गया है, वो कामों पे कितनी प्रगति है उस बारे में पूछा गया है, साथ आने वाले समय के लिए क्या क्या तैयारियां उस पर भी चर्चा हुई है। पेयजल विभाग को निर्देश दिया गया है कि आने वाले समय में गर्मी के मौसम में किस प्रकार से पेयजल की आपूर्ति को उचित करके रखना है, उस बारे में सबको निर्देश दिया गया है। साथ ही PWD को भी ऐसे जोन है जहां बरसात में आपदा के समय में जहां पर स्लाइड्स आते हैं उनके रखरखाव को किस प्रकार से करना है उसकी तैयारी करनी है, आपदा की तैयारी करने के लिए भी सबको निर्देश दिया गया।
0: बैठक में वन्यजीव संघर्ष और गुलदारक हमलों घटना पर ले चर्चा करी गई। सांसद दल प्रभावित परिवारों के त्वरित राहत दिनक और जरूरी कार्रवाई में तेजी लूणक ले निर्देश दें। चारधाम यात्रा पुरोत्साहक और श्रद्धाक दगर चलने, चारधाम यात्रा के अंतर्गत बद्रीनाथ धाम में भगवान नारायण के दर्शनक लीजी श्रद्धालुओं के सैलाब उमड़नो। प्रसिद्ध आध्यात्मिक प्रवक्ता और कथावाचक देवी चित्रलेखा ले श्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन करी, दर्शन बाद उन्हें धाम में करी गई व्यवस्थाओं के लिए सराहना करी।
2: राधे राधे, जय बद्री विशाल। आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि आज श्री बद्रीनाथ धाम में आकर के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये उनकी कृपा ही है कि उनके चरणों तक कोई पहुंच पाता है और उस दर्शन के लिए माध्यम बनने के लिए यहाँ जो भी पुलिस डिपार्टमेंट है उन्होंने खूब सेवा करी, सहयोग किया।
0: दूहर तरफ चारधाम यात्रा के लिए बेर कुमाऊं मंडल परिवहन विभाग ले सतर्क नजर उन्होंने यात्रियों सुरक्षा के ध्यान में धरते हुए व्यावसायिक वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य करी गई छू। कुमाऊं संभागक परिवहन अधिकारी गुरदेव सिंहल बता कि रुद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वान और टनकपुर RTO कार्यालय बटेक अब तक 498 ग्रीन कार्ड जारी करी गई छन। उन्होंने बता कि कै प्रकारक ले वाहन के यात्रा पर जान है पहली निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करण जरूरी हुआ।
3: चारधाम यात्रा के लिए व्यावसायिक वाहनों में सवारी गाड़ी के लिए ग्रीन कार्ड होना आवश्यक है। ग्रीन कार्ड जारी करने से पूर्व वाहन का परीक्षण किया जाता है। वाहन के परीक्षण होने और वाहन के प्रपत्र कंप्लीट होने के उपरांत और चालक का लाइसेंस व्हील एंडोर्समेंट होने के पश्चात उसको ग्रीन कार्ड जारी किया जाता है। हल्द्वानी संभाग के अंतर्गत जो 5 ऑफिस है उसमें जो वर्तमान समय तक 498 जो है ग्रीन कार्ड जारी किए जाते हैं।
0: प्रदेश में जनगणना पहली चरण काम तेजी है अखिल बढ़नो। राज्य में मकानों की सूची और आवास जनगणना लगभग 70% काम पूर कर ली गई छू। अब तलक जनगणना टीमों 29 लाख घरों तलक पुछ बेर लगभग 86 लाख लोगों का डेटा जम कर हेलो। भारतक महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण, प्रमुख सचिव RK सुधांशु दगर वर्चुअल बैठक कर जनगणना कार्य समीक्षा करी। बैठक में जिलाधिकारियों और नगर आयुक्तों दे प्रगति की जानकारी ले ली गई। अधिकारियों और बताया कि बची 10 दिन में निर्धारित लक्ष्य के लिए पूर करणक संभावना छू। बैठक में जनगणना आयुक्त को कि आंकड़ों गुणवत्ता सभी महत्वपूर्ण छू, एक वजल भविष्य की योजनाओं और परिसीमन तय होल। उन्हें सभ्य अधिकारियों के डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दें। कुमाऊं प्रसिद्ध आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए देशभर बटिक ज्यादा संख्या में श्रद्धालु पिथौरगढ़ पुज नहीं। मात्र 16 दिनन में ही 10,000 है अधिक श्रद्धालु आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन कर चुकी छन। आदि कैलाश यात्रा दे स्थानीय व्यवस्था के लिए मजबूती मिलल। विशेष रूपल होम स्टे, होटल व्यवसाय, स्थानीय उत्पाद, हस्तशिल्प और परिवहन सेवाओं से जुड़ी लोगन के यो सिद्ध फैद मिलल। सीमांत क्षेत्रों में संचालित होम स्टे में यो बरस विशेष रौनक देखण हु मिलने। जैक विजल स्थानीय लोगनक आय में उल्लेखनीय वृद्धि ले हुने। आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा अब केवल धार्मिक आस्था केंद्र नैती बल्कि सीमांत क्षेत्रों का आर्थिक विकास, स्वरोजगार और पर्यटन आधारित आजीविका के लिए मजबूत माध्यम बनने। सरकार योजना लाभ अंतिम छोर तलक पुजनक वजल सीमांत क्षेत्र विकास और आत्मनिर्भरता दिशा में ले अखिल बढ़नो। अंत में मुख्य समाचार एक बार आई सुनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत

0: एक मजबूत और भरोसेमंद अर्थव्यवस्था रूप में उभरनो। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी पाकिस्तान के चेतावनी कहो कि पाकिस्तान आतंकवादियों के पनाह दृण और भारत खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए बंद करो। राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्त 2% बढ़े बेर 60% करीगो। यो 1 जनवरी 2026 बटिक लागू हल। प्रदेश सरकार और श्रमिकों के न्यूनतम वेतन और वैधानिक सुविधाओं के टैम और तरीकल उपलब्ध करने के निर्देश दें। और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी पौड़ी में आयोजित दिशा बैठक में जन समस्याओं जल्द सुलटोने की आवश्यकता पर जोर दे। यह कदगढ़ कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की अंक यही समाप्त हूँ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 MHz पर। शाम के 7:41 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

शंकर महादेवन और कविता कृष्णमूर्ति के स्वरों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म पुकार का ये गीत। संगीत AR रहमान का था और शब्द रचना मसरूह सुल्तानपुरी की। और अब फिल्म संगीत का ये अंतिम गीत सुनिए, महालक्ष्मी शंकर महादेवन और शान की आवाजों में, संगीत शंकर एहसान का है। फिल्म का नाम है कभी अलविदा ना कहना।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.5 MHz पर। शाम के 7:50 हुए हैं। लीजिए सुनिए आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश का विशेष कार्यक्रम योजना संवाद।
1: श्रोतो नमस्कार, आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओ, हमारे विशेष कार्यक्रम योजना संवाद के आज के अंक में हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य से जुड़े एक खास विषय की। श्रोताओ, उत्तराखंड के युवा ऊर्जा, उम्मीद और नए सपनों की पहचान है। एक ऐसा राज्य जहां पहाड़ों की ऊंचाई जितनी बड़ी चुनौती है, उतने ही बड़े कई अवसर भी हैं। बदलते दौर में अब यहाँ का युवा केवल नौकरी की तलाश में नहीं, बल्कि अपने हुनर से नए रास्ते बनाने की ओर आगे बढ़ रहा है। इसी नई सोच को मजबूती देने के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार कई प्रयास कर रही है, जो युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ाती है। कौशल विकास के क्षेत्र में राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के माध्यम से युवाओं को आधुनिक तकनीकों और रोजगार परक प्रशिक्षणों से जोड़ा जा रहा है, ताकि वे न सिर्फ देश की बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बना सकें। वहीं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जैसी योजनाएं युवाओं को आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान कर रही हैं। आज का उत्तराखंड बदल रहा है, जहां पहाड़ों से पलायन की जगह अब संभावनाओं का विस्तार हो रहा है। छोटे छोटे गाँव से निकलकर युवा अपने स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। पर्यटन, कृषि और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। तो आइए हमारी सहयोगी गीता नेगी से जानते हैं कि कैसे उत्तराखंड सरकार की ये पहलें युवाओं के सपनों को नई उड़ान दे रही हैं और कैसे ये योजनाएं राज्य के भविष्य को नई दिशा प्रदान कर रही हैं।
2: श्रोताओं नमस्कार, आकाशवाणी समाचार देहरादून के विशेष कार्यक्रम योजना संवाद में मैं गीता नेगी आपका स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज के इस अंक में हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड सरकार की उन महत्वपूर्ण पहलों की, जिनका उद्देश्य राज्य के युवाओं को कौशल, रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में सशक्त बनाना है। पर्वतीय राज्य होने के कारण उत्तराखंड के सामने रोजगार और पलायन एक बड़ी चुनौती रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में सरकार ने कौशल विकास और स्वरोजगार को केंद्र में रखकर कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनका सीधा लाभ युवाओं को मिल रहा है। और इन्हीं प्रयासों की एक प्रमुख कड़ी रही है उत्तराखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन। इस मिशन का उद्देश्य युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षित करना है, ताकि वो सिर्फ डिग्री धारक ना रहें, बल्कि व्यावहारिक कौशल से लैस होकर रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें। और राज्य में विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से होटल मैनेजमेंट, पर्यटन, IT, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, रिटेल, ब्यूटी एंड वेलनेस, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे अनेक क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खास बात यह है कि प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को व्यावहारिक अनुभव भी कराया जाता है, जिससे वो सीधे उद्योगों में काम करने के लिए तैयार हो सकें। और इस मिशन के अंतर्गत हजारों युवाओं को अब तक प्रशिक्षित और प्लेसमेंट का लाभ मिला है। इस मिशन के अंतर्गत हजारों युवाओं को अब तक प्रशिक्षण और प्लेसमेंट भी मिला है। ग्रामीण युवाओं के लिए एक और महत्वपूर्ण योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। और ये योजना विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और ग्रामीण पृष्ठभूमि के युवाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसके तहत युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण, आवास, भोजन और प्लेसमेंट सहायता प्रदान की जाती है। राज्य के दूरस्थ इलाकों में रहने वाले युवाओं के लिए ये योजना एक नई उम्मीद बनकर उभरी है। प्रशिक्षण के बाद कई युवाओं ने देश के बड़े शहरों में नौकरी के अवसर भी प्राप्त किए हैं, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। रोजगार के अवसरों को युवाओं तक सीधे पहुंचाने के लिए सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी सहारा लिया है और इसी दिशा में शुरू किया गया है रोजगार प्रयाग पोर्टल, जो राज्य के युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्र की नौकरियों की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है। इसके साथ ही युवा उत्तराखंड ऐप के माध्यम से भी युवाओं को भर्ती सूचना, परीक्षा तिथियां और आवेदन संबंधी जानकारी आसानी से मिल रही है। डिजिटल माध्यमों के कारण अब युवाओं को रोजगार समाचार के लिए भटकना नहीं पड़ता, बल्कि मोबाइल पर ही आवश्यक जानकारी प्राप्त हो जाती है। कौशल विकास की इन योजनाओं का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य स्वरोजगार को भी बढ़ावा देना है और सरकार युवाओं को उद्यमिता की ओर प्रेरित कर रही है, ताकि वो नौकरी तलाशने की बजाय नौकरी देने वाले बने। विभिन्न विभागों के माध्यम से युवाओं को लोन, सब्सिडी और प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। हैं, विशेष रूप से पर्यटन, कृषि आधारित उद्योग, हस्तशिल्प, होम स्टे और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों पर आधारित रोजगार सृजन से पलायन रोकने में भी मदद मिल रही है। इन योजनाओं की खास बात यह है कि इनमें महिलाओं और दिव्यांग युवाओं को भी प्राथमिकता दी जा रही है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं ताकि वो भी आत्मनिर्भर बन सकें। इसके अलावा उद्योगों के साथ साझेदारी कर प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित की जाती है, जिससे प्रशिक्षित युवाओं को सीधे रोजगार के अवसर मिलते हैं। उत्तराखंड सरकार का ये प्रयास केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करना भी इसका उद्देश्य है। कौशल विकास के माध्यम से युवा अपने राज्य में ही सम्मानजनक जीवन यापन कर सकें, यही इस पहल का मूल मंत्र है। अंततः कहा जा सकता है कि कौशल विकास और रोजगार की ये योजनाएं उत्तराखंड के युवाओं के लिए नई दिशा और नई आशा लेकर आई हैं। यदि युवा इन अवसरों का सही उपयोग करे तो न केवल उनका भविष्य सुरक्षित होगा बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था भी सशक्त होगी। तो श्रोताओं, ये हुई बात युवाओं की, चलिए अब जरा बात करते हैं महिलाओं की। तो राज्य सरकार क्या कुछ खास कर रही है? श्रोताओं, बात करते हैं उत्तराखंड सरकार की उस महत्वपूर्ण पहल की जिसने राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक नई रोशनी दी है। ये योजना है लखपति दीदी योजना। उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में महिलाओं की भूमिका हमेशा से परिवार और समाज की रीढ़ के रूप में रही है। खेतों से लेकर घर तक और पशुपालन से लेकर स्थानीय हस्तशिल्प तक हर क्षेत्र में महिलाओं का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन लंबे समय तक उनका ये श्रम आर्थिक पहचान से वंचित रहा। और इस स्थिति को बदलने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा है। लखपति दीदी योजना का मुख्य उद्देश्य है कि स्वयं सहायता समूहों में कार्यरत महिलाएं सालाना कम से कम 1,00,000 रुपए की आय अर्जित कर सकें। और इसके लिए सरकार महिलाओं को केवल वित्तीय सहायता ही नहीं बल्कि कौशल प्रशिक्षण, मार्केटिंग सपोर्ट और बैंक से जोड़ने की सुविधा भी प्रदान कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज हजारों महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से दुग्ध उत्पादन, मशरूम खेती, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन, मसाला निर्माण, रेडीमेड वस्त्र निर्माण और स्थानीय उत्पादों की पैकेजिंग जैसे कार्यों से जुड़ रही हैं। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें बाजार से सीधे जोड़ा जा रहा है। पहले जहां ग्रामीण उत्पादन केवल स्थानीय हाट बाजार तक सीमित रहते थे, अब उन्हें राज्य और देश के बड़े बाजारों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म और मेलों के माध्यम से उनके उत्पादों को पहचान मिल रही है। इससे महिलाओं की आय में वृद्धि हो रही है और उनके आत्मविश्वास में भी जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा रही है। सरकार द्वारा प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से महिलाओं को आधुनिक तकनीक और वित्तीय प्रबंधन की जानकारी भी दी जा रही है। उन्हें बताया जाता है कि किस प्रकार छोटे निवेश से बड़ा लाभ कमाया जा सकता है और किस तरह ब्रांडिंग और पैकेजिंग से उत्पाद की कीमत बढ़ाई जा सकती है, बैंकिंग प्रणाली का सही उपयोग कैसे किया जाए, स्वयं सहायता समूहों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है जिससे वो अपने कार्य का विस्तार कर सकें। लखपति दीदी योजना का एक सामाजिक प्रभाव भी है। जब एक महिला आर्थिक रूप से मजबूत होती है तो पूरा परिवार सशक्त होता है, बच्चों की शिक्षा, परिवार का स्वास्थ्य और जीवन स्तर स्वतः बेहतर होने लगता है। गांव में महिलाओं की भागीदारी पंचायत और सामाजिक निर्णयों में भी बढ़ रही है। ये योजना केवल आय बढ़ाने का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का भी आधार बन रही है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में अधिक से अधिक महिलाओं को इस योजना से जोड़ा जाए और उन्हें स्थायी आय का स्रोत उपलब्ध कराया जाए। विशेष रूप से पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों की महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि पलायन की समस्या को कम किया जा सके और स्थानीय संसाधनों पर आधारित रोजगार के अवसर महिलाओं को अपने घर परिवार के साथ रहकर आय अर्जित करने का अवसर दे रहे हैं। अंततः कहा जा सकता है कि लखपति दीदी योजना उत्तराखंड की महिलाओं के लिए आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में एक सशक्त कदम है। ये योजना साबित कर रही है कि जब अवसर और समर्थन मिलता है तो महिलाएं न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज की तस्वीर बदल सकती है। इस सकारात्मक संदेश के साथ ही ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। गीता नेगी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश का विशेष कार्यक्रम योजना संवाद सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 8 बजे अब श्रोता सुनेंगे अपने पत्रों के उत्तर कार्यक्रम आपका पत्र मिला में।

0: कार्यक्रम आपका पत्र मिला के सभी श्रोताओं को नमस्कार। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ कल्पना पंकज
1: और मैं रमेश चंद्रा। और कल्पना जी, मैं देख रहा हूँ प्यारे प्यारे पत्र हैं और कुछ मैसेज भी आए हुए हैं। क्यों ना श्रोताओं के इन मैसेज और पत्रों को पढ़ने का जो सिलसिला है वो शुरू करें आप।
0: जी बिल्कुल। और देखिए, हम कार्यक्रम में अपने श्रोताओं के मैसेज लेंगे, उनके पत्रों को भी शामिल करेंगे। लेकिन जैसे कि हमारे श्रोता जानते हैं कि 8 मई से लेकर 8 जून तक आकाशवाणी के 90 वर्ष के अवसर पर बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें चाहे वॉकथन हो, चाहे हमारी कंसर्ट हो या फिर दूसरे तरह के कार्यक्रम, बहुत सारे कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं। और जिसमें हमारे रेडियो कर्मियों का, जिनका एक लंबा अनुभव रहा है, रेडियो के साथ जुड़ा है उनका अनुभव, चाहे हमारे श्रोता हो, सभी लोगों के अनुभव को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और निश्चित ही आप भी उन कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें सुन रहे होंगे।
1: और अगर हमारे श्रोता चाहते हैं तो अपने अनुभव भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारे सभी श्रोता का स्वागत है। अनुभव साझा करने के तरीके वही हैं कि आप व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से हमें अपने मैसेज भेज सकते हैं या अपनी जो बाइट्स हैं वो भी रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हमारे आने वाले कार्यक्रमों में उन चीजों को शामिल किया जाए।
0: जी, इस अवसर पर बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, साथ ही आयोजित भी होने हैं। तो इस संबंध में आपसे ही कहना चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहें और कार्यक्रमों को सुनते रहें और साथ में मैसेज भी लिखते रहें कि कार्यक्रम आपको कैसे लग रहे हैं। कार्यक्रम में पहला मैसेज श्रोता लिखते हैं, आप हैं शेरकोट जिला बिजनौर से, नदिम्बा की, कलिम्बा की, अलिम्बा की, अजिम्बा की और साथ में इनके परिवारजन। लिखते हैं कि हम आपके सभी कार्यक्रम सुनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। आप हमारे मैसेज का ख्याल रखिएगा क्योंकि हम अपनी पसंद का फिल्मी गीत सुनना चाहते हैं।
1: शेरकोट बिजनौर से नजीम बाकी जी, कलीम बाकी जी और आपके जो परिवारी जन हैं, इन्होंने हमें एक प्यारा सा मैसेज लिखा है कि हमारे सभी कार्यक्रम आकाशवाणी देहरादून द्वारा प्रसारित सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और जहाँ तक आपने अपने मैसेज को लेकर लिखा है कि इसका ख्याल रखें, तो निश्चय ही देखिए आपका मैसेज हमारे कार्यक्रम में शामिल हो गया है और आपने ये मैसेज हमें लिखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आगे जब आप हमें मैसेज लिखें तो थोड़ा विस्तार से और समीक्षात्मक मैसेज लिखेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। नदीम बाकी जी और आपके परिवारजनों को एक बार फिर से धन्यवाद।
0: कार्यक्रम में अगला पत्र हमारे श्रोता लिखते हैं, नाज रेडियो क्लब करेली जिला बरेली से, निसार अहमद अंसारी, महजबी निसार अंसारी, बेटी नुजत फातिमा अबरार अहमद अंसारी। लिखते हैं चंद पंक्तियां, खुशबू की तरह आसपास बिखर जाएंगे, खुशबू की तरह आसपास बिखर जाएंगे, सुकून बनकर दिल में उतर जाएंगे। महसूस करने की कोशिश कीजिएगा, महसूस करने की कोशिश कीजिएगा, दूर होकर भी आपके पास नजर आएंगे। और लिखते हैं कि आपका पत्र मिला कार्यक्रम प्रस्तुत करने वालों को हमारी ओर से नमस्कार। लिखते हैं कि आकाशवाणी देहरादून केंद्र के सभी कार्यक्रम हमें पसंद आ रहे हैं, जैसे कि बच्चों का कार्यक्रम बाल मंडल, महिलाओं का कार्यक्रम महिला जगत, युवाणी कार्यक्रम, बड़सा फरमाइश कार्यक्रम, सभी बहुत अच्छे लगते हैं। लिखते हैं कि पिछले सप्ताह आपका पत्र मिला कार्यक्रम सुना, बहुत ही अच्छे जवाब दिए गए। रमेश सर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही आपसे एक शिकायत भी है। लिखते हैं कि आप हमें नजरअंदाज कर रहे हैं व्हाट्सएप कार्यक्रम में, अभी भी ऐसा ही हो रहा है कि मैं रोज उसमें मैसेज करता हूं मगर कार्यक्रम में मैसेज शामिल नहीं किए जाते हैं। अब हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ आपका पत्र मिला कार्यक्रम में ही हम मैसेज किया करें और किसी कार्यक्रम में नहीं किया करें।
1: नाज रेडियो क्लब बरेली से निसार अहमद अंसारी जी, महजबी निसार अंसारी जी और आपके जो परिवारजन है निसार जी, इन्होंने सबसे पहले तो आपने एक हमें बहुत ही प्यारा सा शेर लिखा है, खुशबू की तरह आसपास बिखर जाएंगे, सुकून बनकर दिल में उतर जाएंगे। तो ये लाइनें तो हमें लगता है हमारा जो आकाशवाणी देहरादून है उस पर ज्यादा फिट बैठती हैं। जब हमारे श्रोता आकाशवाणी देहरादून के कार्यक्रम सुनते हैं तो वो खुशबू की तरह बनकर हमारे श्रोताओं के दिल में उतर जाते हैं। और जब जब आप महसूस करेंगे उन कार्यक्रमों को, तो जहाँ भी आप होंगे वहाँ पर हमारे कार्यक्रमों की जो खुशबू है वो नजर आएगी, जैसा कि आपने लिखा है, दूर होकर भी आपके पास नजर आएंगे। तो ये तो हमारे कार्यक्रम ही हैं, जहाँ भी आप होंगे वहाँ आपको सुनाई पड़ेंगे। और आपने आपका पत्र मिला कार्यक्रम पेश करने वालों को आदाब लिखा है, तो हमारी ओर से भी आपको आदाब। और आपने लिखा है कि हमारे आकाशवाणी केंद्र के कार्यक्रम आपको बहुत अच्छे लगते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने हमारे महिलाओं के कार्यक्रम, बच्चों के कार्यक्रम, युववाणी कार्यक्रम, व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम के बारे में लिखा है कि आपने ये सुने, आपका पत्र मिला कार्यक्रम आपने सुना, आपको बहुत अच्छा लगा, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और आपने जो एक शिकायत लिखी है कि व्हाट्सएप कार्यक्रम में आपके मैसेजेस को कभी कभी नज़रअंदाज कर दिया जाता है, ऐसा नहीं है निसार जी, हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी श्रोता हमें अपने मैसेज भेजते हैं सारे मैसेज शामिल हो जाएं, लेकिन किसी कारणवश अगर रह जाते हैं तो अगले कार्यक्रम में भेजिएगा। और हमारा हर श्रोता हमारे लिए बहुत ही खास है, हम पूरी पूरी कोशिश करते हैं उन सभी श्रोताओं के मैसेज कार्यक्रम में शामिल हो जाएं जो हमें भेजे जाते हैं।
0: जी।
1: और देखिए आपका पत्र मिला कार्यक्रम में तो आपका मैसेज शामिल हो ही गया है, और आपने लिखा है कि इसी कार्यक्रम में, मतलब आपका पत्र मिला कार्यक्रम में ही केवल केवल मैसेज भेजें क्योंकि इसी में शामिल होते हैं, तो ऐसा नहीं है, आपके मैसेज अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे, बस भेजते रहिएगा।
0: जी
1: और फिर हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि इसी तरह से अपना जो प्यार है, स्नेह है, आकाशवाणी देहरादून को देते रहिएगा। आपने एक प्यारा सा मैसेज हमें लिखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी। और साथ में अगर व्हाट्सएप फरमाइश में दिन में 11 बजे आपका मैसेज शामिल नहीं हो पाता है तो रात को भी हमारे केंद्र से आपकी फरमाइश कार्यक्रम प्रसारित होता है, उसमें भी अपना मैसेज हमें।
1: समय क्या है उस कार्यक्रम का?
0: उसका समय है रात्रि 10 बजे और मंगलवार के दिन रात को 10:30 पर प्रसारित किया जाता है और शुक्रवार को प्रसारित किया जाता है हेलो फरमाइश कार्यक्रम। उसके लिए आप हमें गुरुवार को शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच फ़ोन करके अपनी पसंद का फिल्मी गीत सुन सकते हैं। उसके लिए फ़ोन नंबर अगर आपको नहीं पता है तो चलिए मैं आपको नोट करवा देती हूँ। हेलो फरमाइश कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए फ़ोन नंबर है 7088001382। फ़ोन नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए 7088001382। और अब कार्यक्रम में अगला पत्र लें,
1: शामिल करें।
0: कार्यक्रम में अगला मैसेज श्रोता लिखते हैं, आप हैं, इन्होंने शुरू में आपका पत्र मिला लिखा है, उसके बाद लिखते हैं वार्ली नबई से नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अजहर खान और अजीम खान। इन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि एनी सॉन्ग। अब बताइए इसका जवाब आप कैसे देंगे?
1: वार्ली नबई से जो नवाब खान जी और आपके जो परिवारीजन हैं, आपने आपका पत्र मिला कार्यक्रम में लिखा है और मुझे लगता है आपने एक फरमाइश की है एनी सॉन्ग के लिए, तो हम कोशिश करेंगे कि किसी अन्य कार्यक्रम में आपको कोई गीत सुनवा दिया जाए। लेकिन आपका पत्र मिला में हमारे जो श्रोता हैं वो अपनी शिकायतें, अपने सुझाव हमारे साथ साझा करते हैं,
0: जी।
1: तो नवाब खान जी, इशरत जहां और आपके जो परिवारीजन हैं उनसे हमें यही गुजारिश करें
0: फरमाइश का गीत सुनने के लिए आप हमें व्हाट्सएप फरमाइश में या आपकी फरमाइश कार्यक्रम में पत्र लिखें। सिर्फ आपका पत्र मिला कार्यक्रम में समीक्षात्मक पत्र ही शामिल किए जाते हैं
1: जी। और नवाब खान जी, आपने जो भी मैसेज लिखा है इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: कार्यक्रम में अगला पत्र हमारे श्रोता लिखते हैं, आप हैं, ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री मोहम्मद मुनाजिर अंसारी। पहले तो एक शेर लिखा है इन्होंने, बेकार है आंखें अगर नूर नहीं है, तू मुझसे जुदा हो मुझे मंजूर नहीं है, एक बार तुझे देख लूं हसरत है दिल की, आजा अगर आने से मजबूर नहीं है। और साथ ही आप लिखते हैं, कार्यक्रम पेश करने वालों को हमारी ओर से नमस्कार, लिखते हैं कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद। पत्र मिला कार्यक्रम में चंद्रा जी ने सभी पत्रों के जवाब पिछली बार बहुत अच्छे से दिए हैं आपका पत्र मिला कार्यक्रम में, और लिखते हैं कि कार्यक्रम में पत्रों को भी बड़ी खूबसूरत अंदाज में पढ़ा गया है, और लिखते हैं कि 15 तारीख को सदाबहार गीत में जो गीत सुनवाए गए वो बहुत ही अच्छे लगे, और इसी दिन का अनुभव कार्यक्रम में इवा श्रीवास्तव से संकल्प मिश्रा जी की बातचीत सुनी अच्छी लगी। आपसे गुजारिश है कि बच्चों के कार्यक्रम में आप बाल नाटिका और बाल कहानियां भी सुनाया करें तो अच्छा रहेगा, और युववाणी कार्यक्रम में संगीत पहेली नाम से कार्यक्रम शुरू कर दें तो आपकी मेहरबानी होगी, और इसमें फिल्मी गीतों से सवाल भी पूछे जाएं।
1: लाल मोहम्मद अंसारी जी, लालू मिस्त्री अंसारी जी और आपके जो परिवारीजन हैं, इन्होंने एक बहुत ही विस्तार से समीक्षात्मक मैसेज हमें लिखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने एक शेर से शुरुआत की है, बेकार हैं आँखें अगर नूर नहीं है, तू मुझसे जुदा हो मुझे मंजूर नहीं है, तो हम तो यही कहते हैं, हमारा आकाशवाणी देहरादून केंद्र जो है वो कहाँ हमारे किसी श्रोता से दूर है। जब भी आप उसे ट्यून करेंगे तो आप आकाशवाणी देहरादून को अपने दिल के करीब पाएंगे। और जहाँ तक रही बात देखने की, जैसा कि आपने लिखा है, एक बार तुझे देख लूँ हसरत है दिल की, आजा अगर आने से मजबूर नहीं है, तो आकाशवाणी के जो कार्यक्रम है वो आप सुन सकते हैं। और अगर देखने की बात है तो इसके लिए तो आपको आकाशवाणी देहरादून आना ही होगा। भाई लाल मोहम्मद अंसारी जी, तो आपका स्वागत है। जैसा कि पहले भी हमारे कई श्रोता आकाशवाणी के देहरादून आ चुके हैं, आप भी आ सकते हैं। और आपने कार्यक्रमों को लेकर लिखा है कि 90 वर्ष पूर्ण होने पर कई कार्यक्रम आकाशवाणी देहरादून द्वारा किए गए, और आपने मुबारकबाद भी लिखी है आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुक्रिया। आकाशवाणी के जो 90 वर्ष हैं वो 8 जून को पूरे हो रहे हैं, और आपने लिखा है कि आपका पत्र मिला कार्यक्रम में जो पत्रों के जवाब हैं वो अच्छे से दिए गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको हमारा जवाब देने का वो आपको पसंद आया, और पत्र पढ़े जाने का भी आपने लिखा है बहुत अच्छे से पढ़े गए। तो कल्पना जी, आप जानते ही हैं, बहुत ही वरिष्ठ उद्घोषिका हैं, तो निश्चय ही उनका अंदाज बहुत ही अद्भुत है, निराला है, और हमारे श्रोताओं को उनके प्रस्तुत किए हुए कार्यक्रम पसंद आते हैं। और आपने हमारे कार्यक्रमों को लेके लिखा है कि 15 तारीख को सदाभार गीत कार्यक्रम में जो गीत सुनाए गए आपको अच्छे लगे, अनुभव कार्यक्रम में ईवा श्रीवास्तव जी से जो संकल्प मिश्रा जी की बातचीत थी वो आपको बहुत अच्छी लगी
0: जी।
1: और आपने एक गुजारिश की है कि बाल वाटिका कार्यक्रम में बाल कहानियां सुना दिया करें, तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी ही प्रत्येक बाल वाटिका कार्यक्रम में आपको कोई न कोई कहानी सुनने को मिले,
0: सुनाई जाती
1: है। और कभी कभी तो हम सुनाते ही हैं, हर बार ऐसा नहीं हो पाता है, लेकिन कभी कभी तो हम,
0: और कई बार जानकारी भी बहुत जरूरी होती है, उनको भी शामिल किया जाता है।
1: और आपने युवाणी कार्यक्रम को लेकर लिखा है कि संगीत पहली नाम से एक कार्यक्रम शुरू कर दें तो आपको अच्छा लगेगा, और इसमें फिल्मी गीतों से सवाल पूछा जाए, आपका सुझाव काबिले तारीफ है लाल मोहम्मद अंसारी जी। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि बहुत ही जल्दी जो आपने सुझाव दिया है संगीत पहली नाम से कार्यक्रम का, तो युवाणी कार्यक्रम में ये सेगमेंट जल्दी शुरू हो। और आपने एक प्यारा सा मैसेज हमें लिखा लाल मोहम्मद अंसारी जी, इसके लिए आपका और आपके परिवारी जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने सभी श्रोताओं से यही निवेदन करेंगे, आगे भी इसी तरह से अपने मैसेज, अपने पत्र और अपना प्यार हमें इसी तरह देते रहे।
0: कार्यक्रम में अगला पत्र हमें लिख भेजा है आप हैं विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से डॉक्टर दिनेश काले। लिखते हैं कि नियमित रूप से आपका कार्यक्रम मैं सुनता हूं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आपका पत्र मिला कार्यक्रम में व्हाट्सएप नंबर तो हमारे पास है और आपका पत्र मिला कार्यक्रम पता भी है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमें ईमेल अपना एड्रेस बताएं तो हम आपको इस तरह से भी आपका पत्र मिला कार्यक्रम में अपने पत्र भेज सकते हैं।
1: जलगांव से जो दिनेश काले जी हैं उन्होंने हमें एक मैसेज लिखा है, और इस मैसेज में आपने लिखा है कि हम अपना एक ईमेल एड्रेस आपको बता दें ताकि ईमेल एड्रेस पर भी आप हमें आपका पत्र मिला कार्यक्रम के बारे में लिख भेज सकें। तो निश्चय ही हम अगले कार्यक्रम में वो ईमेल आईडी जरूर जरूर शेयर करेंगे। भाई दिनेश काले जी, आपने ये जो सुझाव हमें दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके साथ हम अपने सभी श्रोताओं से यही गुजारिश करेंगे कि इस तरह के सुझाव, शिकायतें निसंकोच, क्योंकि आकाशवाणी केंद्र देहरादून आपका अपना केंद्र है, तो साझा कीजिएगा और इसी तरह हमारे कार्यक्रमों का आनंद लीजिएगा। कल्पना जी, क्यों ना आप कार्यक्रम के समापन में आप हमारे श्रोताओं को मैसेज और पत्र भेजने का पता बता दीजिएगा।
0: हमारे श्रोता पता नोट करें, कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून, और पिन है 2480001। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपने मैसेज लिख सकते हैं कार्यक्रम आपका पत्र मिला में, व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। और अब इसी के साथ आज का कार्यक्रम संपन्न करने की कल्पना पंकज
1: और रमेश चंद्रा को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार, नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे एक कार्यक्रम आपका पत्र मिला। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 7.5 MHz पर। लीजिए सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए विविध कलाकारों की गाए भजन। कार्यक्रम का पहला भजन निर्दोष की रचना हरिओम शरण के स्वर में।

विविध कलाकारों के गाए भजन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। अगला भजन लीजिए, सुनिए डीवी पलुस्कर के स्वर में।

भजनों का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी के 13 तून केंद्र से। लीजिए, जतिका रॉय के स्वर में सुनिए ये भजन, रचना मीराबाई की है।

0: केएल सहगल के स्वर में लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला और अंतिम भजन।
1: सुनो सुनो है कृष्ण काला, सुनो सुनो है कृष्ण काला, आई तुम रे द्वार, सुनो मेरी पुकार, अब सुन ले।

अब कासे कहूँ दुख सारा, सुनो सुनो है कृष्ण काला, मेरे पाँव तो हो और

जैसी चाहे जो बातें उड़ाए, मैं तो बोल सकूं मुँह न खोल सकूं, प्रभु जब भी तो अब लाना।

0: अभी आप विविध कलाकारों के गाए भजन सुगम संगीत के अंतर्गत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 8:45 हुए हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
2: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्र पत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्र पत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
3: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
4: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
3: And also infrastructure development that has happened.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
2: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
3: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितंबर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और योग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
1: साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन।

0: नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के मई महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक, मदर्स डे पर विशेष लघु रूपक मेरे पास माँ है,
1: मेरे पास माँ है,
0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ।
2: जिंदगी कैसी है पहेली,
0: और स्मृति शेष में नमन अभिनेता और निर्माता सुदेश कुमार को।
3: सारंगा तेरी याद में।
0: सबसे पहले संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। सिनेमा हमेशा से ही नई कहानियों की तलाश में रहता है। कभी वो ताजा तरीन घटनाओं से प्रेरणा लेता है तो कभी किताबों से। सिनेमा की प्रेरणा की एक और धारा रही है और वो है दूसरी भाषाओं के सिनेमा का हिंदी रूपांतरण या रीमेक। दिलचस्प बात यह है कि हिंदी सिनेमा ने दुनिया की तमाम भाषाओं की फिल्मों से प्रेरणा ली है, अंग्रेजी से भी और अन्य विदेशी भाषाओं की फिल्मों से भी। पर आज हम उन फिल्मों की बातें करेंगे जो क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों से प्रेरित हैं या उनका हिंदी रीमेक है। चूंकि हम मुंबई महाराष्ट्र से इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले उन फिल्मों की बातें जो मराठी से हिंदी में रीमेक की गई हैं। अगर हम इतिहास की ओर झांकें तो पाएंगे कि जाने माने निर्देशक वी शांताराम ने नारायण हरि आप्टे के उपन्यास ना पटनारी गोष्ठ पर आधारित एक मराठी फिल्म बनाई कुंकू। इसी फिल्म को हिंदी में उन्होंने दुनिया ना माने के नाम से बनाया। ऐसी ही एक और मिसाल थी वी शांताराम की फिल्म शेजारी, जो हिंदी में पड़ोसी के नाम से बनाई गई थी। मराठी फिल्मों के हिंदी रीमेक की परंपरा में कई ऐसी फिल्मों के नाम आते हैं जो आपको हैरत में डाल दें, जैसे राज खोसला की फिल्म मेरा साया। सन 1966 में आई ये फिल्म असल में 1964 में आई राजा परांजपे की मराठी फिल्म पाठ लाग का हिंदी रीमेक थी। मराठी फिल्म के मुख्य कलाकार थे काशीनाथ घाणेकर और भावना। इस फिल्म को जीडी माडगुलकर ने लिखा था। यहाँ एक दिलचस्प बात, पाठलाग जयंत देवकोड़े के उपन्यास आशा परत येते पर आधारित थी। इस फिल्म ने मराठी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सन 2009 में आई श्याम बेनेगल की फिल्म वेल डन अब्बा अभय कीर्ति की एक मराठी फिल्म का रीमेक थी। इसी तरह से नागराज मंजुले की फिल्म सैराट 2016 में आई थी, इसका हिंदी रीमेक धड़क के नाम से बना। कृति सैनन की कामयाब फिल्म मीमी साल 2011 में आई मराठी फिल्म मला आई वाईचाय का हिंदी रीमेक थी। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि तमिल फिल्मों के हिंदी रीमेक का सिलसिला काफी पुराना है। सन 1951 एम वी रमन ने एक फिल्म बनाई बहार, जिसके जरिए अभिनेत्री वैजयंती माला ने हिंदी सिनेमा में अपना पहला कदम रखा था। ये फिल्म एवी मैयप्पन की तमिल फिल्म वजकई का रीमेक थी। चूंकि हम तमिल से हिंदी में बनी फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं तो अब यहाँ जिक्र कर लिया जाए सन 1955 में आई फिल्म आजाद का। दिलीप कुमार और मीना कुमारी के अभिनय वाली ये फिल्म एस एम श्री रामुलु नायडू की तमिल फिल्म मलयक्कालन का हिंदी रीमेक थी।

0: खबर सन 1957 में आई एलवी प्रसाद की फिल्म मिस मैरी के कलाकार थे मीना कुमारी और किशोर कुमार, पर असल में ये फिल्म प्रसाद की ही तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में बनी फिल्म मसीमा अम्मा का हिंदी रीमेक थी। सामाजिक फिल्मों का दौर था, तमिल से धड़ाधड़ हिंदी रीमेक बन रहे थे। 1963 में आई फिल्म दिल एक मंदिर सी वी श्रीधर की तमिल फिल्म मनिंजिल और आलयम का हिंदी रीमेक थी। कलाकार थे राजेंद्र कुमार, राजकुमार और मीना कुमारी। संगीत शंकर जयकिशन का था।
1: दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है।
0: इसी तरह सन 1965 में आई फिल्म खानदान तमिल फिल्म भागा पिरिविनाई का हिंदी रीमेक थी।
1: तुम ही

दक्षिण की भाषाओं में मलयालम से भी हिंदी में कई फिल्में बनी हैं। सन 1974 में आई जे ओम प्रकाश की फिल्म आपकी कसम असल में मलयालम फिल्म वाजवे मायम का हिंदी रिमेक थी। मलयालम में इसे के एस सेतु माधवन ने बनाया।

0: चूंकि जिक्र के एस सेतु माधवन का चला है तो आपको बता दें कि सन 1975 में उन्होंने अपनी ही मलयालम फिल्म चट्टकारी का हिंदी रीमेक बनाया जिसका नाम था जूली।
1: जूली, आई लव यू।
0: सन 1970 में आई फिल्म द ट्रेन 1967 में आई मलयालम फिल्म कुचीन एक्सप्रेस का हिंदी रीमेक थी। नए दौर को देखें तो प्रियदर्शन की फिल्म भूल भुलैया सन 1993 में आई मलयालम फिल्म मणिचित्र तजू का हिंदी रीमेक थी। मलयालम से अब चलते हैं तेलुगु सिनेमा की तरफ। सन 1967 में आई जितेंद्र और बबीता की अभिनय वाली फिल्म फर्ज।

फिल्म फर्ज के निर्देशक थे रविकांत नाकाइच। ये फिल्म 1966 में आई तेलुगु फिल्म गुडचरी 116 का हिंदी रीमेक थी। तेलुगु से हिंदी में बनी एक बहुचर्चित फिल्म है

0: सन 1981 में आई इस फिल्म के निर्देशक थे के बालचंदर। ये फिल्म उन्हीं की तेलुगु फिल्म मारो चरित्र पर आधारित थी। इस फिल्म के जरिए अभिनेता कमल हासन ने हिंदी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था। सिनेमा हमेशा से ही कहानियों की तलाश में रहता है और नई कहानियां खोजना कोई आसान काम नहीं है। जाहिर है कहानियों की तलाश में फिल्मकार सारी दुनिया की फिल्में देखते हैं और अगर कोई फिल्म उन्हें लुभाती है तो वे अधिकार लेकर अपनी भाषा में अपने तरीके से उसे बनाना चाहते हैं। हिंदी फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने बांग्ला की कई फिल्मों को हिंदी में बनाया। सन 1957 में आई कृष्ण पंजू की फिल्म भाभी बांग्ला फिल्म भांगा गारा का हिंदी रीमेक थी। इसी तरह सन 1958 में आई राजखोसला की फिल्म काला पानी। देवानंद मधुबाला और नलिनी जयवंत इस फिल्म के कलाकार थे। ये फिल्म अग्रदूत के निर्देशन में बनी बांग्ला फिल्म सबर उपरे का हिंदी रीमेक थी। बांग्ला से हिंदी में बनी प्रमुख फिल्मों में एक है छोटी सी मुलाकात। बांग्ला में इसे अग्रदूत ने अग्नि परीक्षा के नाम से बनाया था और ये बांग्ला फिल्म आशापूर्णा देवी के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई।
0: सन 1966 निर्देशक असित सेन ने एक फिल्म बनाई ममता। इस फिल्म के कलाकार थे सुचित्रा सेन, धर्मेंद्र और अशोक कुमार। ये फिल्म बांग्ला फिल्म उत्तर फाल्गुनी का हिंदी रीमेक थी।

0: क्या आप जानते हैं कि 1968 में आई चर्चित कॉमेडी फिल्म पड़ोसन भी एक बांग्ला फिल्म का रीमेक थी। सन 1952 में आई ये बांग्ला फिल्म थी पाशेरबाड़ी, जो अरुण चौधरी की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। सन 1969 में आई फिल्म खामोशी के निर्देशक थे असित सेन, कलाकार थे वहीदा रहमान और राजेश खन्ना। दरअसल असित सेन ने अपनी ही बांग्ला फिल्म दीप ज्वेले जाई को हिंदी में दोबारा बनाया था और इस फिल्म ने कल्ट फिल्म का दर्जा हासिल किया।
1: वो शाम कुछ अजीब थी।
0: बांग्ला से हिंदी में आई कई ऐसी फिल्में हैं जो कल्ट फिल्मों का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। सन 1970 में आई फिल्म निशी पद्मा को शक्ति सामंत ने बनाया था और इसे नाम दिया अमर प्रेम। इसी तरह 1975 में आई गुलजार की फिल्म खुशबू बांग्ला फिल्म पंडित मोशाय का हिंदी रीमेक है। कुल मिलाकर

0: कहानियों की अपनी यात्रा होती है। विश्व सिनेमा के इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि एक ही कहानी पर न जाने कितनी भाषाओं में अपने अपने तरीके से फिल्में बनी हैं। ठीक यही बात भारत के बारे में भी है। इतनी सारी क्षेत्रीय भाषाएं, उनका अपना साहित्य और सिनेमा, इसलिए कहानियां भाषाओं का पुल पार करके इधर से उधर और उधर से इधर आती रहती हैं। ये था संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। जैसा कि आप जानते हैं, आकाशवाणी अब अपने 90 वर्ष की ओर अग्रसर है। इस गौरवशाली यात्रा को शुभकामनाएं देते हुए जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह ने ये बातें कही।
1: एक ऐसे युग की कहानी जिसका नाम है आकाशवाणी, और जिसने वो हवाएं देखी, वो रातें देखी, वो दिन देखे, वो तूफान देखे, लेकिन उसके बाद भी मैं खड़ी हूं क्योंकि मैं आकाशवाणी हूं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस आकाशवाणी को जिसने पूरे 90 साल पूरे कर लिए हैं, और आगे बहुत सी जनरेशन में इसका नाम सुनना और बाकी रहेगा। धन्यवाद।
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के मौके पर ये थे जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह के उद्गार। मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। इस बरस 10 मई को मदर्स डे था। इस दिन पूरी दुनिया में मातृशक्ति को नमन किया जाता है, इसलिए चित्र भारती के इस अंक में हम लेकर आए हैं विशेष लघु रूपक, मेरे पास माँ है।
2: मेरे पास माँ।
0: हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार हमेशा से ही बड़ा अहम रहा है। अगर आप पुराने जमाने की फिल्में देखें तो पाएंगे कि माँ सफेद साड़ी में लिपटी दुखियारी स्त्री हुआ करती थी। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दुनिया भर के दुख सहती है। लीला चिटनीस, निरूपा राय, दुर्गा खोटे, सुलोचना, अचला सचदेव जैसी अभिनेत्रियों ने इस तरह की मां के किरदार खूब निभाए। फिल्म शहीद में कामिनी कौशल ने निभाया था शहीद भगत सिंह की मां का सशक्त किरदार।
3: तू न रोना के तू है

0: घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं।
1: फिल्म मदर इंडिया महबूब खान ने बनाई थी। ये फिल्म सन 1957 में आई थी। इस फिल्म में अभिनेत्री नरगिस ने माँ राधा का अमर किरदार निभाया था। एक ऐसी माँ जो अपने उसूलों के लिए अपने बेटे को गोली तक मार देती है। नरगिस मदर इंडिया में एक त्यागमयी माँ ही है। वो अपने बच्चों के लिए दुनिया का हर दुख

पर उनका किरदार तब ज्यादा सशक्त बनता है जब वो नैतिकता और संस्कारों को अपनी बेटी से ज्यादा महत्व देती हैं। वो गलत रास्तों का साथ नहीं देती। हिंदी सिनेमा में माँ हमेशा त्याग की मूर्ति रही है। वो अमूमन अपने बेटे के लिए गाना गाती है, जैसे फिल्म मुझे जीने दो में वहीदा रहमान का किरदार।

0: पर माँ के सशक्त किरदार भी बीच बीच में आते रहे हैं। फिल्म मुगले आजम में माँ यानी जोधाबाई का किरदार निभाया दुर्गा खोटे ने। ये किरदार अनमोल है। जोधाबाई अपने उसूलों पर अडिग हैं और वो अपने बेटे का विरोध करती हैं।
1: एक बेरहम शहंशाह के कैदखाने में सलीम की अनारकली दम नहीं तोड़ेगी। मुझे इस परवाने आजादी पे उनकी मोहर चाहिए।
2: अनारकली आजाद नहीं की जाएगी।
1: क्यों नहीं की जाएगी?
2: खामोश, एक शहजादे को अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए।
0: निरूपा राय ने फिल्म दीवार में माँ का एक ऐसा किरदार निभाया जिसने हिंदी सिनेमा का इतिहास ही बदल दिया। इस फिल्म का एक संवाद है, मेरे पास माँ है। जिंदगी की राहों पर गलत मोड़ पर मुड़ चुके एक बेटे के साथ रहना इस माँ को मंजूर नहीं है। वो अपने उसूलों के तहत उस बेटे के साथ रहती है जो पुलिस वाला है।
3: ये बंगला, ये गाड़ी, ये रुपया पैसा, ये सब तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हें मुझे छोड़ के जा रही हो।
2: विजय, बड़ा सौदागर बन गया है रे। मगर एक बात बोलूं, अपनी माँ को खरीदने की कोशिश मत कर। तू अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा कि अपनी माँ को खरीद सके।
0: इसके साथ ही सख्त अनुशासन वाली माँ का किरदार भी कुछ फिल्मों में आया है, जैसे फिल्म खूबसूरत में दीना पाठक का किरदार। उनके नियम कायदे इतने कठोर हैं कि उनके खिलाफ बगावत हो जाती है।
4: सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो।
0: फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के जरिए ये परिदृश्य बदला। फरीदा जलाल ने इस फिल्म में एक आजाद ख्याल माँ का किरदार निभाया था। वो अपनी बेटी की दोस्त ज्यादा है, एक ऐसी माँ जो अपनी बेटी का हौसला बढ़ाती है कि वो अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी का चुनाव करे। आगे चलकर सन 2012 में हिंदी सिनेमा और भी बदल गया, जब श्रीदेवी ने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अपनी बेटी के साथ रिश्ता बेहतर बनाने के लिए अंग्रेजी सीखती है। नए सिरे से अपनी

2018 में आई बधाई हो। इस फिल्म में नीना गुप्ता ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अधेड़ उम्र में माँ बनती है। हिंदी सिनेमा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये एक क्रांतिकारी किरदार था। हिंदी सिनेमा में माँ पर बहुत सारे गाने भी लिखे गए हैं, एक से बढ़कर एक गाने। फिल्म राजा और रंक।

0: 90 के दशक के बाद हिंदी सिनेमा में माँ का रूप बदला है। अब वो दुखियारी नहीं रही, वो मॉडर्न हो गई है। वो अपने बच्चों के जज्बात को समझती है, वो उनका साथ भी निभाती है। फिल्म नील बटे सन्नाटा में स्वरा भास्कर ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया था जो अपनी बेटी का पढ़ाई में हौसला बढ़ाने के लिए उसके ही स्कूल में एडमिशन लेती है। नए जमाने की माँ ज्यादा फैशनेबल और कंटेम्प्ररी है, वो जमाने के साथ चलती है, वो नई पीढ़ी की उम्मीदों को समझती है और उनका साथ निभाने की पूरी कोशिश करती है। नए जमाने की फिल्मों में भी कुछ बेमिसाल गाने आए हैं जो माँ को समर्पित हैं। फिल्म तारे जमी पर।
1: मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं।
0: फिल्म ABCD2।
2: जब जब मुझे पे उठा सवाल मारी तेरी चुनरिया लहरा।
0: जमाना बदल रहा है और इसी तरह बदल रहा है हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार।
3: मेरे पास माँ है।
0: ये था लघु रूपक मेरे पास माँ है, रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ। 29 मई को होता है उनकी याद का दिन।

0: संगीतकार योगेश का जन्म 19 मार्च 1943 को हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1962 में फिल्म सखी रॉबिन के जरिए शुरू किया था।
1: तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए।
0: सन 1971 में फिल्म आनंद में उन्होंने लिखा ये गाना।

0: मुकेश ललित हिंदी वाले अपने गानों के लिए जाने जाते हैं। 29 मई 2020 को योगेश इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए। विविध भारती के संग्रहालय से हम आपके लिए लेकर आए हैं उनकी एक अनमोल रिकॉर्डिंग के अंश।
1: दादा आप लखनऊ चले गए, मतलब ये सोच लिया कि गीतकारी अब नहीं करनी है?
2: हाँ, कुछ होगा, अच्छा होगा तभी, नहीं तो नहीं, क्या क्या करेंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो बस उसके बाद अचानक जो है वो एक टेलीग्राम आया अपना सविता चौधरी जी का कि योगेश कहाँ हो तुम, फौरन आओ। तो फिर हम यहाँ पर आए तो पता लगा कि वो दो गाने जो हैं वो एलबी लक्ष्मण जी ने खरीद लिए और वो अन्नदाता पिक्चर बना रहे हैं, और अन्नदाता में उनको वही राइटर चाहिए जिसने ये गाना लिखा है, नयन हमारे सांस सकारे कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
1: ओहो,
2: और ऋषिदा ने भी वो गाने, ऋषिदा अमिताभ जी ऐसा सुना मैंने, दादा बता रहे थे, और राजेश खन्ना, ये तीनों कहीं मीटिंग थी, आनंद का चल रहा था, जो कुछ भी, तो इन लोगों को दोनों गाने ऋषिदा को चाहिए थे, कहीं दूर जब दिन ढल जाए और नैन हमारे। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि नैन हमारे तो हम एक गाना कोई भी ले लो। तो मैं सेट पे जब जाता था तो राजेश खन्ना हमेशा मुझे बोलता था, योगेश जी दूसरा गाना भी दिलवाइए ना, ऐसा करके बोलता मैं ना, मेरे मेरे हाथ में किधर है।
1: जी जी।
2: तो फिर अन्नदाता पिक्चर मैंने पूरी लिखी।

0: मुझे खुद भी बड़ा ताज्जुब है इस बात का कि मुझे दादा के साथ कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई उस टाइम पे, ना टेप रिकॉर्डर ना कुछ। और दादा ने बोला कि कल ही मुझे पूरा मुखड़ा योगेश तू लिख करके दे, और मैंने उन्होंने ट्यून मुझे दी, और मैं ट्यून लेकर के पेडर रोड से बस में बैठा, और मैं भगवान से मना रहा था कि कहीं पे लाउड स्पीकर पे कोई हिट गाना ना बज जाए कि मैं ट्यून भूल जाऊं।
1: बहुत अच्छी बात है।
0: और मैं चला जा रहा हूं, और जैसे ही मैं गोरेगांव घर पे आया तो एक मुखड़ा बना, मैंने जल्दी से उसको जाकर के लिखा, मैंने दादा आप कल की बात कर रहे थे मुखड़ा आप देख लो दादा ये कैसा है क्या है, कितनी बड़ी ट्यून, कितना कॉम्प्लिकेटेड मुखड़ा लोग बोलते थे, मगर आप देखिए गुजर जाए दिन दिन दिन के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन, गुजर जाए दिन दिन, इतना बड़ा मुखड़ा मुझे पता नहीं कैसे क्यों या कैसे याद हो जाता था दादा के साथ मालूम नहीं।

0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें इस श्रृंखला में अभी आपने सुनी गीतकार योगेश की ये अनमोल रिकॉर्डिंग। स्मृति शेष एक मई को गुजरे जमाने के अभिनेता सुदेश कुमार का निधन हो गया। 17 मार्च 1931 को पेशावर में सुदेश कुमार का जन्म हुआ था। जब वो बहुत छोटे थे तब परिवार मुंबई आ गया था। पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, लेकिन सुदेश कुछ और चाहते थे। सुदेश कुमार का कपूर खानदान से पुराना नाता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद पृथ्वीराज कपूर के थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए सुदेश कुमार। उनकी शुरुआती फिल्मों में पृथ्वीराज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म पैसा शामिल है, जो सन 1957 में आई। इसके बाद सुदेश कुमार ने कई फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं की, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1959 में आई फिल्म छोटी बहन के जरिए। सन 1961 में आई फिल्म सारंगा, इस फिल्म में सुदेश कुमार हीरो थे।
1: सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन।
0: आगे चलकर फिल्मों में कई सहायक भूमिकाएं निभाई सुदेश कुमार ने। 70 के दशक में वो बन गए प्रोड्यूसर। उन्होंने जो फिल्में बनाई उनके नाम हैं मन मंदिर, उलझन, बदलते रिश्ते और जान हथेली पे। 1 मई 2026 को 95 बरस की उम्र में सुदेश कुमार ने आखिरी सांस ली। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का मई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्टूडियोज में किया गया है।

0: ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में हम आपको सुनाएंगे पंडित कैवल्य कुमार गुरव का गायन। पंडित कैवल्य कुमार गुरव सुप्रसिद्ध संगीत तज्ञ पंडित संगमेश्वर गुरव के सुपुत्र हैं। उन्होंने अपने संगीत की शुरुआत 15 वर्ष की आयु में मराठी नाट्य संगीत से किया। इसके उपरांत उन्होंने ख्याल गायकी के ओर रुख किया और अपने पिता एवं गुरु पंडित संगमेश्वर गुरु के मार्गदर्शन तथा वर्षों की कठिन एवं निरंतर साधना के माध्यम से किराना घराने की परंपरा को आत्मसात किया। उनकी संगीत साधना केवल एक घराने तक सीमित नहीं रही, उन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा कर विभिन्न घरानों की शैली, तकनीक और भावधारा का गहन अध्ययन किया तथा उसे अपने गायन में सफलतापूर्वक समाहित किया। उनकी इसी विशिष्ट साधना के परिणाम स्वरूप उन्हें 32 वर्ष की आयु में भारत सरकार द्वारा टॉप ग्रेड कलाकार का सम्मान प्राप्त हुआ है। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, बीकॉम, संगीत में बीए तथा कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ से संगीत में एमए स्वर्ण पदक के साथ प्राप्त किया है और आपको कर्नाटक सरकार का राज्य पुरस्कार, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी राष्ट्रीय सम्मान ऐसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप देश और विदेश में कई प्रमुख मंचों पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुके हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ वोकल रिसाइटल बाय पंडित कैवल्य कुमार गुरव। पंडित

0: अब तक आप सुन रहे थे राग दुर्गा। पंडित कैवल्य कुमार गौरव जी अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग आभोगी। इसमें दो रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल ले हो तुम, ध्रुत तीन ताल आ रंगीला आ।
1: दैट वॉज राग दुर्गा। नाउ यू विल लिसन टू राग अभोगी। रूपक ताल ले हो तुम, ध्रुत तीन ताल आ रंगीला आ।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग आभोगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब संपन्न होता है, जिसमें आप सुन रहे थे पंडित कैवल्य कुमार गुरव का गायन। आपके साथ तबले पर पंडित जडेश हुगार और हारमोनियम पर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी साथ दे रहे थे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया गया।
1: That was Raag Abhogi. With that, we come to the end of tonight's national program of music, in which you were listening to a vocal recital by Pandit Kaivalya Kumar Gurav. He was accompanied on the tabla by Pandit Jadesh Hugar and on the harmonium by Dr. Sudhamshu Kulkarni. This program was recorded earlier in the studios of Akashvani Dharwad and relayed from Akashvani Delhi.
2: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 MHz पर।

0: यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया है कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच करनी होगी। विशेष लोक अभियोजक नीतू गुप्ता सीबीआई की ओर से पेश हुई और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani. The news read by Purnima Samant Kadakoti. Prime Minister Narendra Modi today said that India and the Netherlands are working together to build a trusted, transparent and future-ready supply chain to address global disruptions amid what he described as a decade of disasters marked by multiple crises. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, PM Modi said, "The world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts and an emerging energy crisis." He cautioned that failure to address these challenges swiftly could reverse global development gains and push large sections of the population into poverty. Prime Minister Narendra Modi also underlined India's growing global role, describing the country as land of opportunities in the 21st century that is driven by both technology and human values.
2: 21st sadi ka Bharat avsaron ki bhumi hai. Bharat technology driven bhi hai aur humanity driven bhi hai. Bharat jitna ancient hai utna hi modern ban raha hai. और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
3: Prime Minister Modi said the warmth and enthusiasm of the gathering made him feel he is attending a festival in India. He described The Hague as a living symbol of India-Netherlands friendship and noted that Dutch leaders consistently praised the contribution of the Indian diaspora. Later, Prime Minister Narendra Modi met King Willem-Alexander and Queen Maxima of Netherlands during the second leg of his five-nation visit. Prime Minister Narendra Modi was today presented with the historic 11th century Chola copper plates by authorities of Leiden University during his official visit to the Netherlands. The return of the priceless artifacts marks a landmark moment in India-Netherlands cultural cooperation and heritage restitution. The Prime Minister reached the Netherlands last night on the second leg of his five-nation tour. After concluding his visit to the Netherlands, Mr. Modi will travel to Sweden tomorrow. India and Sweden share a legacy of trade and people-to-people ties spanning over a century, rooted in mutual respect, peaceful coexistence and the principle of ahimsa. Today, this relationship is evolving from its cultural foundation into a robust industrial and economic partnership. In a conversation with Akashvani, the Ambassador of India to Sweden, Anurag Bhushan, emphasizes that the Prime Minister's upcoming visit is set to further cement the ties between the two nations. Head of Engineering and Product Development at Artifacts in Sweden, Per Stenfeldt, expressed optimism about stronger industrial collaboration and greater business opportunities between India and Europe arising from the India-European Union Free Trade Agreement. Electronics manufacturing company Tata Electronics and Dutch semiconductor equipment major ASML have joined hands to enable chip manufacturing in India. The pact was announced during Prime Minister Narendra Modi's visit to the Netherlands. ASML is known for having a monopoly in a category of lithography equipment which is critical for production of advanced small-size semiconductors. A Delhi court today sent the prime suspect in the NEET paper leak case PV Kulkarni and another accused Manisha Wagmare to CBI custody for 10 days. Special CBI judge Ajay Gupta ordered the remand after the probe agency submitted that the DO needed to be taken outside the national capital for further investigation and that the larger conspiracy had to be investigated. In IPL cricket, chasing a target of 248 runs, Gujarat Titans were 177 for 1 in 16 overs against Kolkata Knight Riders in Kolkata when reports last came in. Put into bat first, Kolkata Knight Riders posted 245 for 2 in the stipulated 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
0: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है।